श्रोताओं, संवेद स्वर में अभी आपने सुना ये मातृवंदना, और अब लीजिए सुनिए SP बाला सुब्रमण्यम का गाया ये भजन।

0: श्रोताओं, मोहम्मद शैफ़ी नियाज़ी कव्वाल और साथियों के गाए इस नात के साथ ही भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना अब यहीं समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 5:55 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम एग्री टिप्स।
1: किसान भाइयों, आइए आज हम कुछ बातें करें बागान

0: फसलों में काट छांट के संदर्भ में। हमारे द्वीप समूह की जलवायु व मिट्टी बागानी फसलों के लिए काफी उपयुक्त है, फिर भी यहां पर ज्यादातर फल मुख्य भूमि से आयात किए जाते हैं। हमारे भोजन में फलों का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि फलों में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, वसा, विटामिन, खनिज लवण आदि मिलते हैं, जो कि एक व्यक्ति के अच्छे स्वास्थ्य और बढ़वार के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारे यहाँ पर प्रति व्यक्ति फल का उपयोग बहुत ही कम है। इसका मुख्य कारण यह है कि हमारे यहाँ पर फलों का उत्पादन इतना अधिक नहीं हो पाता। इसी कारण बाजार में फलों के जो भाव होते हैं वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। फलों से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए बहुत सारी बातों पर ध्यान देना होता है, जिसमें से एक प्रमुख बात है फल वृक्षों की काट छांट। पौधे के अंदर उनकी वृद्धि एवं स्वास्थ्य तथा फल उत्पादन में एक संतुलन कायम रखने के उद्देश्य से काट छांट की क्रिया की जाती है। बहुत से फल वाले वृक्षों में अगर काट छांट की क्रिया ना की जाए तो जंगली पौधों की तरह वे बढ़ने लगते हैं तथा उन पर कोई फल भी नहीं लगता। आम व सपोटा में काट छांट की क्रिया में केवल मरी या सूखी हुई शाखाओं को ही काटते हैं। नींबू प्रजाति के फल, अनार तथा अमरूद में प्रारंभिक काट छांट की क्रिया अंदर की शाखाओं को अच्छी आकृति देने के उद्देश्य से की जाती है। अलंकृत पौधे में काट छांट की क्रिया उसकी सुंदरता को बढ़ाने के लिए किया जाता है। किसान भाइयों, फल वृक्षों में यह क्रिया केवल अच्छे फल उत्पादन के लिए ही किया जाता है। फल वृक्षों की छोटी अवस्था में काट छांट करें, जिससे उनके अधिक शक्तिशाली ढांचे बनकर तैयार हो जाएं और वे तेज हवा, आंधी तूफान आदि को आसानी से सह सकें और इस तरह की परिस्थितियों में सुगमता से न टूटें। बहुत से फल वाले पौधे ऐसे होते हैं जिसमें फल नई निकली हुई शाखाओं पर ही लगते हैं। फलों की तुड़ाई के बाद ऐसी शाखाओं को काट दें, जिससे कि अगले फलन के लिए अच्छी शाखाओं की वृद्धि हो सके। घने फल वृक्षों की शाखाओं को काट छांट कर पौधों को खोल दें, जिससे कि हवा और प्रकाश की अधिक मात्रा पौधों के अंदर प्रविष्ट हो सके। काट छांट द्वारा पौधों को छोटा बना दिया जाता है, जिससे कि छिड़काव और बुरकाव आदि में कम खर्च लगता है और साथ ही फलों की तुड़ाई में भी समय व खर्च में कमी आती है। पौधों के ऐसे हिस्सों को काट छांट कर अलग कर देते हैं जिन पर कि कीड़ों का प्रकोप हो या जो कि रोग ग्रसित हो। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये आगे बढ़कर पूरे पौधे को नुकसान ना कर सके। कम उत्पादन करने वाली या बेकार की शाखाओं को काट छांट कर पोषक तत्वों को खाद्य पदार्थ उत्पन्न करने वाली शाखाओं की तरफ अग्रसर किया जाता है, जिससे कि फल बड़े आकार के व अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं। जब फल वृक्षों में कलियां अधिक घनी पैदा होती हैं, तो बीच बीच से कुछ कलियों को निकाल देते हैं या फिर गुच्छे के नीचे से कुछ फलों को तोड़कर अलग कर देते हैं जबकि वे छोटे होते हैं। ऐसा करने से फलों का आकार बढ़ जाता है। किसान भाइयों को चाहिए कि वे अपने फल वृक्षों की सभी अनावश्यक सूखी एवं मरी हुई शाखाओं को काटकर अलग कर दें। पौधे की एक दूसरे पर चढ़ी हुई शाखाओं को काटकर पौधे को खुला बना दें। जो शाखाएं जमीन के बहुत संपर्क में हैं, उन्हें काट दें। शेष बची हुई शाखाओं या उनके कुछ हिस्सों को इस प्रकार काटना चाहिए कि फलन साफ एवं सीधे हो तथा शाखा के ऊपर की कलियां बाहर की तरफ रहे। काट छांट के बाद कटे हुए भाग पर बोड़ो पेस्ट लगा दें। अगर पौधे में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी से फलन कम होती है तो जड़ों का क्रंदन कुछ मात्रा में कर दें। इसके लिए पौधे के गोलाई के बाहरी किनारे पर 75 से 90 सेंटीमीटर गहरी खाई खोद लें तथा इसको पार करने वाली जड़ों को काट दें। इस क्रिया के कुछ समय बाद खाई को ताजी मिट्टी तथा गोबर की सड़ी खाद के मिश्रण से भर दें और फिर बाद में पहले हल्की तथा बाद में गहरी सिंचाई करें। ऐसा करने से पौधे में नई पत्तियां निकल आती हैं तथा कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा बढ़ जाने से पौधे में फूल भी अधिक आने लगते हैं। किसान भाइयों, कुल मिलाकर यदि आप बागानी फसलों में सोच समझ कर काट छांट की क्रिया करेंगे तो इससे आपको अच्छा फायदा होगा और फल उत्पादन में आप इजाफा कर पाएंगे।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुना कार्यक्रम एग्री टिप्स, विषय था बागानी फसलों में काट छांट। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 6 बजे हिंदी में समाचार और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। इससे पहले फ्रांस के एवियों में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान श्री मोदी ने विभिन्न सत्रों में हिस्सा लिया तथा कई विश्व नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें की। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि सम्मेलन में वैश्विक शासन, आर्थिक विकास और ग्लोबल साउथ के देशों से जुड़े मुद्दों पर भारत का पक्ष रखा गया। उन्होंने विकासशील देशों की आर्थिक मजबूती और वैश्विक संपर्क बढ़ाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर, यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लोद्योमिर जेलेंस्की, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ट्ज, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्ता और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फोन डेर लेयन, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी सहित कई नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर बल दिया।
1: मैरिटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। इसके साथ ही दोगुने अंशदान से संबंधित सामाजिक सुरक्षा समझौता भी प्रभावी हो जाएगा। इससे भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी। वस्त्र, चमड़ा, समुद्री उत्पाद, इंजीनियरिंग और प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र को विशेष फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और ओडिशा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगी। राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगी। झारखंड से राज्यसभा की 2 सीटों के लिए आज मतदान होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वैद्यनाथ राम, कांग्रेस उम्मीदवार प्रणब झा और निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नथवानी चुनाव लड़ रहे हैं। झारखंड विधानसभा में मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक होगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने नीदरलैंड्स को 95 रन से हरा दिया। स्मृति मंधाना को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। टूर्नामेंट में अब भारत का मैच 21 जून को दक्षिण अफ्रीका से होगा। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने अपने पहले मैच में क्रोएशिया को 4-2 से हरा दिया। कप्तान हैरी केन ने 2 गोल किए। ग्रुप के में पुर्तगाल और कांगो

का मैच एक एक से ड्रॉ रहा। इस मैच के साथ क्रिस्टियानो रोनाल्डो विश्व कप खेलने वाले सबसे उम्रदराज आउटफील्ड खिलाड़ी बन गए। अर्जेंटीना ने अल्जीरिया को 3-0 से हराया। लियोनेल मेसी ने हैट्रिक लगाकर विश्व कप में 16 गोल पूरे किए और मिरोस्लाव क्लोजे के कीर्तिमान की बराबरी की। ऑस्ट्रिया ने जॉर्डन को 3-1 और नॉर्वे ने इराक को 4-1 से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जहाँ स्थानीय सेवा निदेशालय से प्राप्त सूचना के अनुसार MV बाराटान आज दिन में 11 बजे शहीद दीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और ये जलयान दोपहर बाद 1 बजे शहीद दीप से स्वराज दीप जाएगा तथा ये जलयान आज ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज दीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। MV स्ट्रेट आइलैंड आज दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा तथा ये जलयान आज ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा करेगा। MV रानी लक्ष्मी आज दोपहर बाद 2:30 पर शहीद द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और ये जलयान आज ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। स्वराज द्वीप की यात्रा पर MV कमोटा आज शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा ये जलयान कल सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर MV जॉली बॉय कल यानी शुक्रवार 19 तारीख को सुबह 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा इस जलयान की रंगत से चलकर लॉन्ग आइलैंड और स्वराजदीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए वापसी यात्रा होगी कल ही दोपहर बाद 1 बजे। MV बाराटान कल सुबह 6:15 पर श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप जाएगा। जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम लौटेगा। MV स्ट्रेट आइलैंड कल सुबह 6:15 पर स्वराज द्वीप की यात्रा पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा ये जलयान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। MV नॉर्थ पैसेज कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप और दोपहर बाद 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप के लिए छूटेगा और ये जलयान कल ही दोपहर बाद 2:30 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा आरंभ करेगा। MV रानी लक्ष्मी कल दिन में 11:30 पर श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा तथा ये जलयान कल ही दोपहर बाद 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। शहीद द्वीप की यात्रा पर MV हटबे कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से रवाना होगा तथा ये जलयान कल ही शाम 4:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा आरंभ करेगा। MV बाराटान कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से स्वराज द्वीप की यात्रा पर छूटेगा और ये जलयान अगले दिन यानी शनिवार 20 तारीख को सुबह 5:30 पर स्वराज द्वीप से छूटकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम लौटेगा। MV रानी जंगा कल 19 तारीख को सुबह 7 बजे मायाबंदर होते हुए डिगलीपुर की यात्रा पर श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा ये जलयान अगले दिन यानी शनिवार 20 तारीख को सुबह 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायाबंदर होते हुए श्री विजयपुरम के लिए अपनी वापसी यात्रा करेगा। लिटिल अंडमान की यात्रा पर MV सेंटिनल कल 19 तारीख को रात 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा तथा ये जलयान अगले दिन यानी शनिवार 20 तारीख को सुबह 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए

0: वापसी यात्रा आरंभ करेगा। अभी आप जलयानों का यात्रा कार्यक्रम सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के समय 6:15 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम इंद्रधनुष।
1: इंद्रधनुष।

इंद्रधनुष कार्यक्रम में मैं दीपिका आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारा आज का विषय है घबराना। इश्क की राह में धड़कनों का तेज हो जाना स्वाभाविक है, मगर मोहब्बत का अपना तर्क है। जब दिल किसी को सौंप ही दिया तो फिर घबराना कैसा।

कभी कभी जीवन ऐसे मोड़ पर ले आता है जहाँ चारों ओर चुनौतियाँ ही चुनौतियाँ दिखाई देती हैं, लेकिन ऐसे समय में हौसला ही हमारा सबसे बड़ा साथी बनता है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि दुख चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि मन में साहस और उम्मीद का दीप जलता रहे तो दुख से कैसा घबराना।

दुनिया का राजा बनाना चाहती है और उसकी एक बेचैनी से खुद बेचैन हो उठती है। ऐसी एक माँ भी अपने बच्चे की सुरक्षा को लेकर घबराई फिरती है।

0: श्रोताओं, घबराना मंजिल की रुकावट नहीं बल्कि आगे बढ़ने का एक पड़ाव है। इसे स्वीकार करें, समझें और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। इसी संदेश के साथ मैं दीपिका कार्यक्रम इंद्रधनुष से अब लेना चाहूंगी इजाजत। नमस्कार।
1: इंद्रधनुष।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम इंद्रधनुष। विषय था घबराना और प्रस्तुत कर रही थी दीपिका। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र

से बोल रहे हैं। सुबह के समय 6:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए रामचरितमानस गान की 273वीं कड़ी, गायक कलाकार ए हरिहरन और श्रीकांत पारगांवकर।

स्त्री तथा राज्य पाकर सुग्रीव विषय भोग में ऐसा रत हुआ कि उसे अपने उद्धारकर्ता के अनुरोध की भी सुधि न रही। राम का क्षोभ देख लक्ष्मण कुपित होकर पूरी किष्किंधा नगरी को जलाकर राख कर देने को उद्यत होते हैं। हनुमान से अपनी विस्मृति की बात सुनकर सुग्रीव भयभीत हो जाते हैं। वानर सैनिकों को बुलाकर 15 दिनों की अवधि के भीतर जनक नंदिनी सीता की खोज खबर लाने का आदेश देते हैं। क्रुद्ध लक्ष्मण के सम्मुख सिर नवाकर बालीपुत्र अंगद अपने राजा की निष्क्रियता के लिए क्षमा याचना करते हैं।

श्रोताओं, अभी आप रामचरित मानस गान की 273वीं कड़ी सुन रहे थे। गायक कलाकार थे ए हरिहरण और श्रीकांत पारगांवकर, तथा संगीत संयोजक थे सतीश भाटिया। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के समय 6:40 हुए हैं। श्रोताओं, अब लीजिए सुनिए वतन के गीत।

श्रोताओं, अभी आप वतन के गीत सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के समय 6:50 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण। पहले सुनिए मौसम का हाल। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार जनसेवाओं और मछुआरों के लिए कोई विशेष चेतावनी नहीं है। वहीं कल सुबह तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीपों के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी।

अब सुनिए हमारे केंद्र से आज के शेष प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। अब से कुछ ही क्षणों के बाद यानी सुबह 7 बजे आप सुनेंगे जन सूचनाएं। 7:15 पर सुनिएगा कार्यक्रम देश रागनी। ठीक उसी समय FM 100.9 MHz पर विविध भारती मुंबई केंद्र से हम रिले करेंगे प्रायोजित कार्यक्रम भूले बिसरे गीत। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम 7:30 पर, जिसके अंतर्गत पर्यावरण कार्यक्रम में आज आप श्री राजा राम की वार्ता सुनेंगे। विषय होगा पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य। 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप विभिन्न कलाकारों को सुन पाएंगे। फिल्म गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने सुबह 9 बजे आप सुन सकते हैं। नौ बजकर 30 मिनट पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज आप नामगिरी पिट्टई कृष्णा का नादस्वरम वादन सुनेंगे। फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम SMS माई चॉइस सुबह 10 बजे आप सुन सकते हैं। दिन में 11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT प्रसारित की जाएगी। फिल्मी गीतों से सजा कार्यक्रम भूले बिसरे गीत 11:30 पर आप सुन सकेंगे। दोपहर 12 बजे तेलुगु में सुपरहिट गीतों का आनंद लीजिएगा। 12:30 पर मलयालम में एक ही फिल्म के गीत आपको सुनवाएंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप चित्रा सिंह को सुन पाएंगे 1:10 पर। 1:30 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। 2:30 पर मौसम की जानकारी के साथ प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर स्थानीय सभा जारी रहेगा, जिसमें आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नॉन स्टॉप म्यूजिक। 3:30 पर फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम सुनिएगा यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी शाम 4 बजे निकोबारी कार्यक्रम के साथ, जिसमें सूचनाओं के अलावा एरोंग गांव के सदस्यों द्वारा प्रस्तुत गीत आपको सुनवाएंगे। 4:30 पर प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 12वीं कड़ी प्रसारित की जाएगी। कार्यक्रमों का विवरण आपको दिया जाएगा 4:40 पर। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम 4:45 पर आप सुन सकते हैं। शाम 5 बजे तमिल में कार्यक्रम होगा वेलण उलगम। बांग्ला कार्यक्रम शाम 5:30 पर, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे कार्यक्रम चिरंतनी। शाम 6 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में आप डॉलीगंज के एक पशुपालक श्री सीताराम यादव से की गई बातचीत आप सुन पाएंगे। 6:30 पर योगेंद्र टिक्कू द्वारा लिखित झलके आप सुनेंगे, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं आपको दी जाएगी 7:15 पर। 7:20 पर सुनिएगा फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया। 7:30 पर युवाओं के लिए कार्यक्रम आप सुनेंगे युववाणी, जिसके तहत पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार। आठ बजकर 35 मिनट पर रोजगार समाचार, उसके पश्चात गौरवगान प्रसारित की जाएगी। रात्रि 10 बजे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आप सुनेंगे संदेशे आते हैं। इन कार्यक्रमों के अलावा 8 बजे दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइड और 9:45 पर इनसाइट्स कार्यक्रम हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। श्रोताओं, सुबह के 6:55 होने वाले हैं। अब संस्कृत में समाचार हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्स और FM 100.9 MHz पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। जन सूचनाएं।

पहले सुनिए मौसम की जानकारी। आज सुबह 5:30 बजे स्थानीय मौसम कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार श्रीविजयपुरम और आसपास के क्षेत्रों में 1.0 मिलीमीटर वर्षा हुई। सापेक्ष आर्द्रता 95% रहा और न्यूनतम तापमान 25.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल श्रीविजयपुरम का अधिकतम तापमान रहा 32 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्योदय 5:56 पर हुआ और सूर्यास्त का समय रहेगा 5:45। ये थी मौसम की जानकारी। अब सुनिए आज के विमान उड़ान संबंधी जानकारी। एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली से आ रहा यात्री विमान संख्या 2937 आज दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम पहुंचेगा और विमान संख्या 2936 आज ही दिन में 11:40 पर श्री विजयपुरम से दिल्ली के लिए वापसी उड़ान भरेगा। अभी आप एयर इंडिया से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज के विमान उड़ान संबंधी जानकारी सुन रहे थे।

श्रोताओं, आज सुबह 7:30 पर गुड मॉर्निंग अंडमान के तहत पर्यावरण कार्यक्रम में आप श्री राजाराम की वार्ता सुन पाएंगे। विषय होगा पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य।

फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम SMS माई चॉइस सुबह 10 बजे आप सुन पाएंगे। इस कार्यक्रम में आप अपने पसंद के गीत सुन सकते हैं, जिसके लिए आपको हमें SMS करना होगा हमारे इस नंबर पर। नंबर है 9474234000, जिसमें आप फिल्म का नाम, गीत के बोल, अपना पता और सुनने वाले श्रोताओं के नाम टाइप करके हमें SMS कर दीजिए हमारे इसी नंबर पर। नंबर आपको पुनः बता देते हैं, 9474234000।

0: जन सूचनाएं समाप्त हुई। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सुबह के 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार बुलेटिन।
1: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य सचिव डॉ. चंद्रभूषण कुमार ने कल स्पाइस प्रवाह 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नागरिकों से नशा मुक्ति मित्र के रूप में पंजीकरण करने की अपील की है। उन्नत कॉर्प प्रजनन एवं मत्स्य बीज उत्पादन तकनीकों के प्रसार के लिए 25 जून को मत्स्य हैचरी इकाई में फील्ड डे का आयोजन किया जाएगा और जहाज यात्रियों की मासिक पास नवीनीकरण और दैनिक टिकट बुकिंग के लिए ऑनलाइन

सुबह के समाचारों के साथ मैं पूजा सिंह। मुख्य सचिव डॉक्टर चंद्रभूषण कुमार ने कल छोलदारी में स्पाइस प्रवाह 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत स्थापित कस्टम हायरिंग सेंटर का भी उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त पूर्वा गर्ग, कृषि सचिव पल्लवी सरकार और कृषि निदेशक देवव्रत बसंतिया सहित पंचायत प्रतिनिधि और प्रगतिशील किसान उपस्थित थे। इस अभियान का लक्ष्य द्वीपों में मसालों की खेती का विस्तार करना और सतत कृषि विकास को बढ़ावा देना है। इस मिशन के तहत 5 उच्च मूल्य वाली मसाला फसलों को खेती के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अवसर पर मुख्य सचिव ने कहा कि इस मिशन का लक्ष्य द्वीप समूह को वर्ष 2030 तक एक प्रमुख मसाला उत्पादक क्षेत्र में बदलना है। इसके तहत स्थानीय स्तर पर उगाए जाने वाले मसालों की ब्रांडिंग, मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए द्वीप सुगंध ब्रांड को बढ़ावा दिया जा रहा है। उन्होंने कृषि विभाग द्वारा तैयार की गई स्पाइस प्रवाह पुस्तिका और खेती मार्गदर्शिका का भी विमोचन किया। साथ ही किसानों को किराए पर आधुनिक कृषि मशीनरी और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए कस्टम हायरिंग सेंटर की शुरुआत की, जिससे खेती की लागत कम होगी। इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम के अलावा द्वीपों के विभिन्न क्षेत्रों में भी इस अभियान की शुरुआत की गई है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत देश के युवाओं, छात्रों, स्वयंसेवकों और आम नागरिकों से नशा मुक्ति मित्र के रूप में पंजीकरण करने की अपील की है। इस पहल का उद्देश्य एक नशा मुक्त भारत के निर्माण में लोगों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। इच्छुक नागरिक आधिकारिक पोस्टर में दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना पंजीकरण कर सकते हैं। पंजीकरण के पूरा होने पर प्रतिभागियों के इस सामाजिक कार्य में उनके योगदान को मान्यता देने के लिए एक प्रमाण पत्र और बैज भी प्रदान किया जाएगा। पिछले 12 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने कई ऐतिहासिक पहल की है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्षण जनवरी 2024 में आया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में भव्य श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की। पारंपरिक नागर शैली में निर्मित ये मंदिर आस्था, श्रद्धा और भारत की स्थापत्य कला की उत्कृष्टता का प्रतीक है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक परियोजना के प्रथम चरण को अक्टूबर 2022 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। भव्य कॉरिडोर में भगवान शिव से जुड़ी कथाओं को दर्शाने वाली आकर्षक मूर्तियां, भित्ति चित्र और स्थापत्य कला के अद्भुत उदाहरण देखने को मिलते हैं। वहीं वाराणसी में दिसंबर 2021 में समर्पित काशी विश्वनाथ कॉरिडोर ने तीर्थयात्रियों के अनुभव को पूरी तरह बदल दिया है। ये परियोजना काशी विश्वनाथ मंदिर को सीधे गंगा नदी से जोड़ती है। सूचना प्रचार एवं पर्यटन निदेशालय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के सहयोग से मानव विज्ञान सर्वेक्षण विभाग में चलचित्र अंडमान निकोबार फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कर रहा है। ये फिल्म महोत्सव 21 जून तक चलेगा। इस कड़ी में 19 जून शाम 5:30 बजे से रुदाली, 20 जून सुबह 11 बजे से आगंतुक और शाम 5:30 बजे से सरदार उद्धम का प्रदर्शन किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख है फील्ड डे का आयोजन और जहाजरानी सुविधा। आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला ये प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ FM 100.9 MHz पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस FM रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान के मत्स्य विभाग प्रभाग ने भारतीय प्रमुख कॉर्प मछलियों के प्रेरित प्रजनन कार्यक्रमों की एक श्रृंखला को सफलतापूर्वक संपन्न किया। इन कार्यक्रमों के माध्यम से लगभग 6 लाख निषेचित अंडों एवं कॉर्प स्पॉन का उत्पादन किया गया है, जिन्हें द्वीपों के मत्स्य किसानों को वितरित किया जाएगा। क्यारी के निदेशक डॉक्टर जयसुंदर ने बताया कि ये मत्स्य प्रजनन पहले संस्थान के उन सतत प्रयासों का हिस्सा है

जिनका उद्देश्य गुणवत्तापूर्ण मत्स्य बीज एवं रोपण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर एम मुरुगानंदम ने कहा कि उन्नत कॉर्प प्रजनन एवं मत्स्य बीज उत्पादन तकनीकों के प्रसार तथा मत्स्य बीज आपूर्ति एवं मत्स्य उत्पादन को गति देने के लिए 25 जून को ग्यारहचर्मा अनुसंधान फॉर्म के मत्स्य हैचरी इकाई में फील्ड डे का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान प्रेरित कॉर्प प्रजनन, हैचरी प्रबंधन, नर्सरी पालन तथा वैज्ञानिक मत्स्य बीज उत्पादन तकनीकों का प्रदर्शन किया जाएगा। विभाग ने सभी इच्छुक किसानों, उद्यमियों, हितधारकों, विद्यार्थियों एवं शोधकर्ताओं से इन पहलों का लाभ उठाने को कहा है। जहाजरानी सेवा निदेशालय की ओर से जहाज यात्रियों की मासिक पास नवीनीकरण और दैनिक टिकट बुकिंग के लिए ऑनलाइन सुविधा लागू कर दी गई है। इस डिजिटल पहल से यात्री अपने घर या कार्यस्थल से टिकट सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। अब तक कुल 11,126 मासिक पास नवीनीकरण ऑनलाइन माध्यम से किए जा चुके हैं। इसके अलावा ई टिकटिंग पोर्टल पर ऑनलाइन टिकटिंग सुविधा भी जारी है। यात्रियों की सुविधा के लिए सीधे पोर्टल से जोड़ने वाला QR कोड भी उपलब्ध है। समग्र क्षेत्रीय केंद्र ने कल कार्यालय परिसर में अग्नि एवं आपातकालीन सेवा के सहयोग से अग्नि एवं सुरक्षा जागरूकता और प्रदर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य आग से बचाव, आपातकालीन तैयारियों और आग से जुड़ी आपात स्थितियों के दौरान उचित प्रतिक्रिया देने के बारे में जानकारी देना था। इस अवसर पर ग्यारहचर्मा अग्निशमन केंद्र के सब इंस्पेक्टर इक्तेदार बख्श और सब इंस्पेक्टर इस्माइल ने प्रदर्शन सत्र का संचालन किया। CRC की निदेशक समिता मौल ने शैक्षणिक और पुनर्वास संस्थानों में सुरक्षा जागरूकता और तत्परता के महत्व पर जोर दिया। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन कार्यरत समग्र क्षेत्रीय केंद्र ने आयुष विभाग के सहयोग से कल स्वस्थ वृद्धावस्था के लिए योग विषय के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया। इस कार्यक्रम में दिव्यांगजनों, उनके अभिभावकों, देखभाल करने वालों, कार्यालय सदस्यों और इंटर्न ने भाग लिया। इस अवसर पर CRC की निदेशक सुमिता मौल ने शारीरिक तंदुरुस्ती, मानसिक कल्याण, भावनात्मक लचीलेपन और सामाजिक समावेश को बढ़ावा देने में योग के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों, विशेषकर दिव्यांगजनों के समग्र स्वास्थ्य और जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए योग को जीवन शैली के रूप में अपनाने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। सामुदायिक स्तर पर स्वस्थ जीवन शैली और पोषण संबंधी जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कल आयुष्मान आरोग्य मंदिर हैडो में ANM ट्रेनिंग स्कूल के छात्रों द्वारा हर उम्र के लिए पोषण विषय पर स्वस्थ भोजन प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान संतुलित पोषण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए विभिन्न आयु समूहों के लिए उपयुक्त पौष्टिक खाद्य पदार्थों को बनाने और उनके उपयोग और नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन भी किया गया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य सचिव डॉ. चंद्रभूषण कुमार ने कल स्पाइस प्रवाह 2.0 के दूसरे चरण का शुभारंभ किया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने नागरिकों से नशा मुक्ति मित्र के रूप में पंजीकरण करने की अपील की है। उन्नत कॉर्प प्रजनन एवं मत्स्य बीज उत्पादन तकनीकों के प्रसार के लिए 25 जून को मत्स्य हैचरी इकाई में फील्ड डे का आयोजन किया जाएगा और जहाज यात्रियों की मासिक पास नवीनीकरण और दैनिक टिकट बुकिंग के लिए ऑनलाइन सुविधा लागू की गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के समय 7:15 हुए हैं और अब श्रोताओं लीजिए सुनिए कार्यक्रम देश रागनी।

देश प्रेम एक महान भावना है। हमारे देश के सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिक राष्ट्र के सच्चे प्रहरी हैं। वे दिन रात गर्मी सर्दी और कठिन परिस्थितियों में भी अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। देश की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी पीछे नहीं हटते। उनका बलिदान हमें यह सिखाता है कि राष्ट्रहित सबसे ऊपर है। इनके त्याग और साहस के कारण ही हम अपने घरों में सुरक्षित जीवन जीते हैं।

5000 वर्ष पहले हमारे देशवासी इसी वेद मंत्र का उच्चारण करके परम पिता परमात्मा से याचना करते थे, सबका भला करो भगवान, सबको सुख और शांति हो। और 500 वर्ष पहले भक्ति मार्ग के दर्शक गुरु नानक देव ने इसी बात को सरल भाषा में दोहराया, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वतदा भला।

परंतु सबके लिए सुख और शांति मांगने वाले हिंदुस्तानी क्या खुद शांति से रह सके? रहते भी तो कैसे? उनकी धरती का दूसरा नाम सोने की चिड़िया है, जिसकी मिट्टी में सोना और जंगलों में चंदन है। शायद इसीलिए प्रकृति ने इसकी सुरक्षा के लिए उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में थार का रेगिस्तान बना दिया था।

प्रेम महान भावना है। इसका अर्थ केवल देश की प्रशंसा करना नहीं है, बल्कि अपने देश के विकास और सम्मान के लिए कार्य करना भी है। एक सच्चा देशभक्त अपने कर्तव्यों का ईमानदारी से पालन करता है, कानून का सम्मान करता है और समाज में भाईचारे तथा सद्भावना को बढ़ावा देता है।

देश की एकता, सैनिकों का बलिदान और देश प्रेम एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। जब नागरिक देश के प्रति समर्पित होते हैं और सैनिक सीमा पर देश की रक्षा करते हैं, तब राष्ट्र मजबूत और समृद्ध बनता है। प्रत्येक देशवासी अपना अपना कर्तव्य को ईमानदारी से निभाए और निभाए तो देश का भविष्य उज्जवल और शक्तिशाली बनता है।

0: देश रागिनी
1: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के समय 7:30 हुए हैं। अब लीजिए सुनिए कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान।
2: गुड मॉर्निंग अंडमान।

0: दोस्तों, किसी ने बहुत खूब कहा है, फूलों से सीखिए सबके जीवन में रंग भरना, पेड़ों से सीखिए ऊंचाइयों को छूना, कलियों से सीखिए मुस्कुरा कर जीना, कांटों से सीखिए कष्टों से उबरना, पत्तों से सीखिए मस्ती में झूमते रहना और टहनियों से सीखिए दूसरों को सहारा देना। जी हाँ श्रोताओं, इन्हीं विचारों के साथ आइए अब रुख करते हैं पर्यावरण कार्यक्रम की ओर और आपको सुनवाते हैं श्री राजा राम की ये वार्ता। विषय है पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य।
1: मनुष्य और पर्यावरण के बीच एक स्थायी संबंध है। जिस वातावरण में हम रहते हैं और काम करते हैं वह हमारे स्वास्थ्य और सेहत को निर्धारित करता है। पर्यावरण प्रत्येक जीवित प्राणी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बिना कोई भी जीवित नहीं रह सकता, क्योंकि पृथ्वी ग्रह ही मनुष्य का एकमात्र घर है, जो भोजन, हवा, पानी और लाखों अन्य चीज़ें प्रदान करता है। मानवता की संपूर्ण जीवन समर्थन प्रणाली पूरी तरह से पृथ्वी पर रहने वाले सभी प्रजातियों की भलाई पर निर्भर करती है। मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण स्थानीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर अटूट रूप से जुड़े हुए हैं। प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन, अत्यधिक गर्मी की घटनाएं और खराब पानी की गुणवत्ता जैसे पर्यावरणीय मुद्दों के संपर्क में आने से मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अलग अलग आबादी और समूह पर्यावरणीय गिरावट, जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक गर्मी की घटनाओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता में भिन्न होते हैं, जो अक्सर उम्र की, जनसांख्यिकी और सामाजिक आर्थिक असमानताओं के परिणाम स्वरूप होता है। पर्यावरण और स्वास्थ्य का एक विशिष्ट संयोजन है। जो कुछ भी हमारे चारों ओर है वह हवा, पानी, मिट्टी आदि हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालते हैं। इसीलिए हम पर्यावरण को समझे बिना मानव स्वास्थ्य समस्याओं की अनदेखी नहीं कर सकते। मानव अपने जीवन की उत्पत्ति से ही पर्यावरण से संबंधित रहा है। मानव पर्यावरण का संबंध मनुष्य के लिए अपेक्षाकृत अधिक लाभकारी रहा है। पिछली 4 शताब्दियों में मानव की गतिविधियों के कारण पृथ्वी के मूल तत्वों जैसे हवा, पानी, मिट्टी तथा रासायनिक संगठन में परिवर्तन हुआ है, जिसके कारण पृथ्वी के भौतिक और रासायनिक विशेषताओं में तेजी से रूपांतरण हुआ है। इस रूपांतरण के कारण बड़े पैमाने पर पर्यावरण प्रदूषण फैला है, जिसके परिणाम स्वरूप लोगों के जीवन पर अत्यधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वे सारे कारक जो मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं वह मानव जनित गतिविधियों द्वारा ही उत्पन्न पर्यावरण प्रदूषण का परिणाम है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने स्वास्थ्य को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक खुशहाली के रूप में परिभाषित करने पर जोर दिया है। WHO 2014 के अनुसार स्वास्थ्य का संबंध केवल बीमारी या कमजोरी से नहीं, बल्कि इसका संबंध मानव जीवन के संपूर्ण भौतिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण या खुशहाली की स्थिति है। पर्यावरण हमारी पृथ्वी पर जीवन का आधार है, जो न केवल मानव अपितु सभी चेतन, अचेतन प्राणियों एवं वनस्पतियों के उद्भव, विकास तथा अस्तित्व का आधार है। पर्यावरण का निर्माण हमारे चारों तरफ विद्यमान जैविक, अजैविक तत्वों द्वारा होता है। इनमें पारस्परिक संबंध एवं संतुलन एक स्वच्छ पर्यावरण का निर्माण करते हैं। सभ्यता के विकास से वर्तमान समय तक मानव ने जो भी प्रगति की है उसमें पर्यावरण का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इस सृष्टि में जितनी भी सभ्यताएं और संस्कृतियां विकसित हुई हैं वे मानव पर्यावरण के सामंजस्य का परिणाम है। यही कारण है कि प्राचीन सभ्यताएं प्रतिकूल पर्यावरण के कारण कालांतर में नष्ट हो गईं। मानव के भौतिक सुखों की पूर्ति के लिए वैश्विक स्तर पर पर्यावरण का अनियंत्रित दोहन किया जा रहा है, जिसके फलस्वरूप अनेक पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न हो गए हैं, जिसका दुष्परिणाम यह हुआ कि मानव का स्वास्थ्य इससे अत्यधिक प्रभावित हुआ है। यह तो अविवादित सत्य है कि आज के बढ़ते औद्योगिकरण और तकनीकी विकास ने इंसान को ऐसी अति आधुनिक सुख सुविधाएं प्रदान की हैं जिनके कारण उसका जीवन अप्रत्याशित रूप से सरल और सहज बन गया है। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि बढ़ते औद्योगिकरण और उन्नत औद्योगिकी के कारण पृथ्वी के प्राकृतिक वातावरण में व्यवधान उत्पन्न हो गए हैं। इस व्यवधान ने प्रकृति के स्वाभाविक सामंजस्य को असंतुलित कर दिया है, और चूंकि मानव जीवन प्रकृति का अभिन्न अंग है इसलिए बढ़ते प्राकृतिक

संतुलन ने इंसान के जीवन को भी असंतुलित कर दिया है। फलस्वरूप आज का बिगड़ा पर्यावरण मनुष्य के स्वास्थ्य को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। आज औद्योगिकरण के इस युग में पर्यावरण दूषित है, तो हम स्वच्छ भोजन, जल और वायु की कल्पना कैसे कर सकते हैं? परिणाम स्वरूप मनुष्य में अनेक बीमारियां जन्म ले चुकी है। कारखानों का दूषित जल नदी नालों में मिलकर जल को अत्यधिक प्रदूषित करता है। प्रदूषित पानी पीने से अनेक बीमारियों को बढ़ावा मिलता है। हवा में अवांछित गैसों की उपस्थिति के कारण कारखानों और मोटर गाड़ियों से निकलने वाले धुएं सांस लेने में दिक्कत पैदा कर रहे हैं। इस प्रकार वायु प्रदूषण लाइलाज बीमारियों को जन्म देते हैं। मनुष्य का स्वास्थ्य निसंदेह उसकी बड़ी पूंजी है, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ विचारों का वास होता है। मनुष्य का अच्छा स्वास्थ्य न केवल उसके लिए बल्कि उसके परिवार, देश, समाज सभी के लिए बहुत अहमियत रखता है। इसलिए मनुष्य के स्वास्थ्य पर पर्यावरण का कुप्रभाव निश्चय ही चिंता का विषय है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वैश्विक बीमारी के बोझ के एक बड़े हिस्से को रोकने के लिए स्वस्थ वातावरण बनाने के महत्व पर जोर देता रहा है। WHO के अनुसार पर्यावरणीय जोखिम हर साल लाखों मौतों का कारण बनते हैं, जिनमें गैर संचारी रोग जैसे हृदय रोग और श्वसन रोग सबसे आम होते हैं। इन पर्यावरणीय स्वास्थ्य समस्याओं के समाधान के प्रयासों में प्रदूषकों पर नजर रखना, प्रदूषण को कम करने के लिए कानून और नीतियों को लागू करना और पर्यावरणीय स्वास्थ्य के महत्व के बारे में सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाना शामिल है। इसके अतिरिक्त स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, जैसे खतरनाक पदार्थों के संपर्क को कम करना और स्वच्छता में सुधार करना, इन मुद्दों से निपटने में महत्वपूर्ण रणनीतियां हैं। प्रकृति में कोई भी जीव अकेला जीवित नहीं रह सकता। प्राकृतिक शक्ति के प्रभाव से विभिन्न प्रकार के जीवन प्रकृति में एक साथ रहते हैं। प्राणी मात्र के जीवन के लिए संतुलित पर्यावरण की आवश्यकता होती है, और एक स्वच्छ तथा संतुलित पर्यावरण ही उसके स्वस्थ जीवन की कसौटी है। संतुलित पर्यावरण में प्रत्येक जैविक घटक निश्चित मात्रा एवं अनुपात में उपस्थित रहते हैं, परंतु कभी कभी वातावरण में एक तथा अनेक घटकों की मात्रा एवं अनुपात या तो आवश्यकता से अधिक हो जाती है अथवा उनमें हानिकारक घटकों का प्रवेश हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप पर्यावरण प्रदूषित हो जाता है, जो कि मानव के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। पर्यावरण प्रदूषण के कारण प्रत्येक 5 में से 4 व्यक्ति स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से घिरे हुए हैं, जैसे सांस की तकलीफ, हृदय रोग, बहरापन, अंधापन, सरदर्द, तनाव, अनिद्रा, घबराहट, कैंसर और कोरोना जैसी महामारियां हैं। संसार में मनुष्य के अतिरिक्त अन्य प्राणी भी इससे अछूते नहीं है। प्रदूषित पर्यावरण ने उन्हें भी अपनी चपेट में ले रखा है। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि आज पर्यावरण कितना प्रदूषित हो गया है। वैज्ञानिक दृष्टि से प्रदूषण वायु, जल एवं मृदा की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक विशेषताओं का वह अवांछनीय परिवर्तन है जो मनुष्य और उसके लिए लाभदायक अन्य जंतुओं, पौधों, कच्चे माल तथा उद्योग आदि को किसी न किसी प्रकार हानि पहुंचाता है। जहां मनुष्य इस प्रदूषण का सर्वाधिक भुक्तभोगी है, वही विडंबना यह है कि वह इस प्रदूषण के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी भी है। पृथ्वी के पर्यावरण को प्रदूषित करने में मनुष्य ने अहम भूमिका निभाई है। अपने स्वास्थ्य और भोगवादी लिप्सा के कारण मनुष्य ने प्रकृति में तबाही मचा दी है। वृक्षों, वनों एवं वनस्पतियों की व्यापक स्तर पर अंधाधुंध कटाई और उसकी भरपाई ना होने की स्थिति में पर्यावरण असंतुलित हो गया। अतः अब पर्यावरण असंतुलन तथा उससे उपजे स्वास्थ्य संबंधी परिस्थितियां मानव जाति के भावी अस्तित्व के साथ जुड़ गई हैं। दुर्भाग्य से दुनिया का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जो पर्यावरणीय क्षति से मुक्त हो, यहाँ तक कि ध्रुवीय क्षेत्र भी नहीं। मानव अपशिष्ट, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि अपवाह और सादे पुराने डंपिंग क्षेत्र सभी देशों में पारिस्थिति के साथ कहर ढा रहे हैं। पिछले दशकों में यूरोपीय देशों ने भारी धातु और नाइट्रेट जैसे खतरनाक कचरे को बिना किसी योजना या एहतियात के फेंक दिया था। परिणाम भूजल और सतही जल बुरी तरह से दूषित हो गए और मिट्टी की गुणवत्ता निचले स्तर पर चली गई। जलवायु परिवर्तन मानव जीवन और स्वास्थ्य को कई तरह से प्रभावित कर रहा है। यह अच्छे स्वास्थ्य के लिए जरूरी तत्वों जैसे हवा, सुरक्षित पेयजल, पौष्टिक खाद्य आपूर्ति और सुरक्षित आश्रय को खतरे में डालता है और वैश्विक स्वास्थ्य में दशकों की प्रगति को कमजोर कर सकता है। WHO के अनुसार कमजोर स्वास्थ्य ढांचे वाले क्षेत्र, ज्यादातर विकासशील देश, बिना तैयारी और प्रतिक्रिया के कारण जलवायु लचीले स्वास्थ्य प्रणालियों के निर्माण और

जलवायु परिवर्तन से स्वास्थ्य की रक्षा में राष्ट्रीय प्रगति पर नजर रखने में सबसे कम सक्षम होंगे। 2030 और 2050 के बीच जलवायु परिवर्तन के कारण कुपोषण, मलेरिया, डायरिया और गर्मी के कारण होने वाले तनाव से हर साल लगभग 2.5 लाख अतिरिक्त मौतें होने की आशंका है। पर्यावरण प्रदूषण एवं मानव स्वास्थ्य एक वैश्विक मुद्दा है जिसका मनुष्य के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इसके लिए सरकार, उद्योगों, समुदायों और व्यक्तियों से ठोस प्रयास की आवश्यकता है। हम कड़ी नीतियां, तकनीकी नवाचार

0: इसका मनुष्य के जीवन पर दूरगामी प्रभाव पड़ता है। इसके लिए सरकार, उद्योगों, समुदायों और व्यक्तियों से ठोस प्रयास की आवश्यकता है। हम कड़ी नीतियां, तकनीकी नवाचार, सार्वजनिक जागरूकता और सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से एक स्वस्थ पर्यावरण और परिणाम स्वरूप एक स्वस्थ आबादी की दिशा में काम कर सकते हैं। आइए प्रतिदिन प्रदूषण को कम करने के लिए प्रतिबद्ध हों और एक स्वच्छ स्वस्थ ग्रह की ओर ले जाने वाले परिवर्तनों की वकालत करें। पर्यावरण संरक्षण न केवल सरकार की जिम्मेदारी है, बल्कि ये हम में से प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि हम अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण अनुकूल कार्य करें और इस पृथ्वी पर जीवन को सरल और सक्षम बनाने में अपना योगदान दें।
1: श्रोताओं, अभी आप पर्यावरण कार्यक्रम के तहत श्री राजाराम की वार्ता सुन रहे थे। विषय था पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य। और अब श्रोताओं, कार्यक्रम का रुख करते हैं गीत संगीत की ओर। सबसे पहले लीजिए सुनिए दबंग 3 फिल्म का ये गाना, जावेद अली।

0: दोस्तों, गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहे हमारे साथ।
1: मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फिसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-11-2356 पर कॉल करें या मिस कॉल दें 0112-209-01701 पर।
2: बदलो बदलो, आदत बदलो।
3: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
2: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAT 2 of 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
5: पता है, लगभग पूरे जर्मनी की जनसंख्या के बराबर तो सिर्फ किसान क्रेडिट कार्ड दे चुकी है भारत सरकार 8 करोड़ किसानों को। तभी तो किसान कहता है कि बीज से बाजार तक देश उनके साथ है।
6: हमारा छोटा किसान बाजार से महंगे ब्याज पर ऋण लेने के लिए मजबूर था। हमने ऐसे करोड़ों छोटे किसानों को भी किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से जोड़ा।
5: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
7: जानते हो दोस्तों, जिसे हम सिर्फ चिलचिलाती धूप कहते थे, आज उसी धूप से हम अपनी छतों पर ऊर्जा बना लेते हैं। तभी तो आज लगभग 37 लाख घर PM सूर्य घर बने हैं, जिससे देश का बिजली बिल घटा है और आत्मविश्वास बढ़ा है।
6: 1 दशक पहले भारत सोलर पावर के मामले में बहुत पीछे था, लेकिन आज सोलर पावर के मामले में भारत दुनिया के टॉप 5 देशों में आ गया।
7: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
0: अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम गुड मॉर्निंग अंडमान में। और अब श्रोताओं, कार्यक्रम को जारी रखते हुए आपको सुनवाते हैं पागलपंती फिल्म का ये गाना, आशीष कौर और जुबिन नौटियाल की आवाजों में शब्बीर अहमद के शब्दों को संगीत से सजाया तनिष्क बागची ने।

शुभ मंगल ज्यादा सावधान। श्रोताओं, इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं आयुष्मान खुराना की आवाज़ में। वायु के बोल हैं व तनिष्क बागची व वायु का संगीत।

0: सलीम मर्चेंट के गाए लव ब्रेकअप्स जिंदगी इस फिल्म के गीत के साथ ही गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम अब यहीं समाप्त होता है।
1: गुड मॉर्निंग अंडमान।
0: हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। सुबह के 8 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा जिसे हम अपनी दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: ठाकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
1: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
0: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। श्री मोदी फ्रांस की राजधानी में प्रवासी भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम की 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ 14 सूत्रीय शांति समझौते पर हस्ताक्षर किये। और पुरुष क्रिकेट में भारत ने दूसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हराकर श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बनाई। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। होटल पहुंचने पर प्रवासी भारतीय समुदाय ने श्री मोदी का स्वागत किया।
1: हम बहुत खुश हैं कि मोदी जी हमारे घर आए, हमारे पेरिस में आए।
2: मोदी जी हमारी शान है, हमको ये अभिमान है।
0: प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवा टेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। ये प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का सबसे बड़ा आयोजन है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत करेंगे।
3: आज प्रधानमंत्री द्विपक्षीय व्यापार और नवाचार साझेदारी को और मजबूत करने के उद्देश्य से एक बेहद व्यस्त कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगे। वह फ्रांस और यूरोप के शीर्ष व्यापारिक नेताओं के साथ एक विशेष गोलमेज बैठक की अध्यक्षता करेंगे, जिसका मुख्य फोकस भारत के बढ़ते औद्योगिक और तकनीकी क्षेत्रों में रणनीतिक निवेश को बढ़ावा देना है। इस दौरे का मुख्य आकर्षण विवाटेक सम्मेलन है, जो यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप इवेंट है। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ इस शिखर सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय सत्रों में भाग लेंगे। इसके बाद वह एक बहुप्रतीक्षित मुख्य भाषण देंगे, जिसमें भारत के तेजी से बढ़ते वैश्विक डिजिटल कदमों को रेखांकित किया जाएगा। यह गहन राजनयिक यात्रा एक बड़े सामुदायिक संपर्क कार्यक्रम के साथ संपन्न होगी। प्रधानमंत्री एक शानदार सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल होंगे, जिसमें भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित किया जाएगा। महेश चोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: G7 के संपर्क सत्र में प्रधानमंत्री मोदी ने कल G7 देशों, भारत और ग्लोबल साउथ की ताकतों को मिलाकर संपर्क और व्यापार को बढ़ाने की रूपरेखा का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि विकासशील देशों पर पश्चिमी एशिया संकट का दीर्घकालिक असर पड़ेगा। शिखर सम्मेलन से अलग प्रधानमंत्री ने अमरीका, ब्रिटेन, यूक्रेन, जर्मनी, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा, यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के नेताओं से मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति ट्रंप के साथ द्विपक्षीय बैठक में ईरान के साथ समझौते के दौरान नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने पर भी बल दिया।
4: मैरीटाइम ट्रेड की दुनिया में भारत के लाखों सी फेरर दुनिया के अलग अलग समुद्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, विश्व की प्रगति में बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं और मैं समझता हूं कि उनकी सुरक्षा भी उतना ही महत्वपूर्ण है। मुझे पूरा विश्वास है कि समझौते में सी फेरर की सुरक्षा भी सुनिश्चित होगी और उसको प्राथमिकता मिलेगी।
0: G7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सुरक्षित, समावेशी और मानव केंद्रित विकास का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि AI की असली सफलता मशीनों की क्षमता में नहीं बल्कि आम लोगों को सशक्त बनाने में है। फ्रांस के एवियो में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान नेताओं ने संतुलित आर्थिक विकास, महत्वपूर्ण खनिज आपूर्ति श्रृंखला और बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल वातावरण से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण घोषणाएं अपनाई। बच्चों के लिए सुरक्षित डिजिटल माहौल संबंधी का भारत सहित ब्राजील, मिस्र और दक्षिण अफ्रीका जैसे कई देशों ने समर्थन किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से मध्य प्रदेश और उड़ीसा के 5 दिन के दौरे पर रहेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति आज मध्य प्रदेश के बैतूल में आध्यात्मिक जागृति के माध्यम से आदिवासी समाज के सशक्तिकरण पर आयोजित कार्यक्रम में भाग लेंगे।
5: 19 जून को राष्ट्रपति अंतर्राष्ट्रीय सीकल सेल अनीमिया दिवस के कार्यक्रम में शामिल होंगी। इसके बाद वे पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा के लिए प्रस्थान करेंगी। वहीं 21 जून को राष्ट्रपति मुर्मू जबलपुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के 36वें दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल

0: शामिल होंगी। इसके बाद राष्ट्रपति कूनो नेशनल पार्क का भ्रमण करेंगी और 22 जून को दिल्ली लौट आएंगी। राष्ट्रपति के बैतूल दौरे को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर डॉक्टर सौरभ संजय सोनवाने ने सुरक्षा व्यवस्था के तहत प्रतिबंध लगाए हैं। इसमें आज ड्रोन के उड़ान संचालन पर रोक रहेगी और भारी वाहनों की आवाजाही पर भी नियंत्रण शामिल है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
1: झारखंड से राज्यसभा की 2 और मिजोरम से 1 सीट के लिए आज मतदान होगा। मतदान सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे शुरू होगी और उसके बाद परिणाम घोषित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के प्रस्तुत कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्वपूर्ण प्रयासों की।
2: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन स्टॉर्म के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
3: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
4: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
2: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
5: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
2: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1,761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। आज नक्सल मुक्त भारत की कहानी लोकतंत्र, विकास और संविधान की ताकत की जीत का प्रतीक मानी जा रही है, जिसने दशकों से चली आ रही हिंसा पर विजय प्राप्त की है। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इस बीच झारखंड में नक्सल उन्मूलन अभियान को बड़ी सफलता मिली है। 10 लाख रुपए की इनामी महिला माओवादी पुष्पा महतो ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता CETA इस वर्ष 15 जुलाई से लागू होगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि इस समझौते से भारत को ब्रिटेन के बाजार में 99% वस्तुओं पर तत्काल शुल्क मुक्त पहुंच मिलेगी।
6: हमारे पास ऐसे काबिल और महत्वाकांक्षी लोग हैं जो अपने और अपने परिवारों के लिए बेहतर भविष्य की तलाश में हैं। हर साल हमारे विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान से विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित में 14 लाख विद्यार्थी स्नातक डिग्री प्राप्त करते हैं। हमारे पास 140 करोड़ लोगों की ओर से सामान, सेवाओं और डेटा की भी मांग है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये समझौता लागू होने के बाद भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और निवेश को नई गति मिलेगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ईरान के राष्ट्रपति मसूद फिजिस्कियन ने पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए शांति समझौते पर डिजिटल हस्ताक्षर किए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अमेरिका ने समझौते का आधिकारिक प्रारूप जारी कर दिया है।

0: 14 सूत्रीय समझौते में लेबनान सहित सभी क्षेत्रों में सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से रोकने का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही दोनों देशों ने 60 दिनों के भीतर अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने का लक्ष्य तय किया है। समझौते के अंतर्गत अमेरिका अपनी नौसैनिक नाकेबंदी और उससे जुड़े प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया शुरू करेगा। वहीं ईरान शुरुआती 60 दिनों तक होर्मुज जलडमरू मध्य से गुजरने वाले वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित और निःशुल्क आवाजाही सुनिश्चित करेगा। दस्तावेज में ईरान पर लगे प्रतिबंधों में चरणबद्ध ढंग से ढील देने और ईरानी तेल निर्यात के लिए विशेष अमरीकी छूट का भी प्रावधान किया गया है। अमरीका के समर्थन से ईरान में कम से कम 300 अरब डॉलर के पुनर्निर्माण और आर्थिक विकास कार्यक्रम की योजना भी शामिल है। समझौते में ईरान ने एक बार फिर स्पष्ट किया है कि वह परमाणु हथियार न तो विकसित करेगा और न ही उन्हें हासिल करने का प्रयास करेगा। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रख्यात बौद्ध विद्वान रॉबर्ट एएफ थर्मन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पुरुष क्रिकेट में भारत ने लखनऊ में दूसरे एक दिवसीय मैच में अफगानिस्तान को 170 रन से हरा दिया। इसके साथ ही भारत ने तीन मैचों की श्रृंखला में 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है।

श्रृंखला का तीसरा और अंतिम मैच शनिवार को चेन्नई में खेला जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.

0: newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियां
1: प्रकाशित की है। हिंदुस्तान लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौते के बहुत समीप, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने दी जानकारी। दैनिक है, लोकसभा स्पीकर को पत्र सौंपकर अलग गुट के रूप में मान्यता देने की मांग की। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में स्कूलों का होगा सुरक्षा अंकेक्षण, पॉक्सो कानून के पालन में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधु ने दिए निर्देश, जनसत्ता की खबर। दैनिक भास्कर ने फीफा विश्व कप में फुटबॉलर मेसी के इतिहास रचने का समाचार सचित्र दिया है। पत्र लिखता है, हैट्रिक एक, रिकॉर्ड 10, उम्र बढ़ने के साथ मेसी ने खेल की बदली शैली। टेलीग्राम ने प्रतिबंध आदेश को दी चुनौती, केंद्र को नोटिस, देशबंधु सहित सभी अखबारों की सुर्खी है। दैनिक जागरण के शब्द हैं, टेलीग्राम को लेकर आईआईटी निदेशक से तर्क वितर्क, केंद्र सरकार ने कहा टेलीग्राम पर हो रही हैरान करने वाली गतिविधियां। राजस्थान पत्रिका ने लाहौल स्पीति में सैलानियों की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, वादियों में फुर्सत के पल, स्पीति में दिखी बर्फ, सैलानी हुए खुश।

सत्य ने अपने संपादकीय पन्ने पर देश में प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने पर छात्रों के मनोबल टूटने पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है

जाएंगे। तो सबसे पहले पेश है ये नज़्म, तुम हमारे नहीं तो क्या गम है, तुम हमारे नहीं तो क्या गम है, हम तुम्हारे तो है ये क्या कम है।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के समय 9 बजे हैं और अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम तराने सुहाने। श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले आपको सुनवा रहे हैं राम लखन फिल्म का ये गाना, मनहर उदास और अनुराधा पौडवाल की आवाज़ों में। गीतकार आनंद बख्शी और संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

0: तराने सुहाने कार्यक्रम में लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। आप बने रहे हमारे साथ, अंतराल के उस पार जारी रहेंगे बाकी के गीत।
1: नमस्ते कविता, अच्छा लगा कि आप आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सर्विकल कैंसर की जांच के लिए आईं।
2: अरे दीदी, मेरी बेटी ने मुझे प्रोत्साहित किया।
1: आपकी बेटी तो बहुत समझदार है। बेटा, तुम कितने साल की हो?
2: मैं 14 साल की हूँ।
1: अब आपको अपनी बेटी को सर्विकल कैंसर से बचाने के लिए टीका लगवाने लाना होगा।
2: क्या कैंसर के लिए भी टीका होता है?
1: हाँ, ये एक ऐसा कैंसर है जिससे HPV की वैक्सीन के जरिए बचाव किया जा सकता है।
2: धन्यवाद दीदी।
1: जरूर, अपनी बेटी को HPV का टीका लगवाने के लिए वैक्सीन पोर्टल UWIN पर रजिस्टर करना मत भूलना।
3: भारत सरकार ने सर्विकल कैंसर से बचाव के लिए 14 साल की लड़कियों के टीकाकरण को सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर निशुल्क उपलब्ध किया है। आज ही www.uwin.mohfw.gov.in पे जाके HPV वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर करवाएं। ये संदेश भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
4: हेलो, मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं आपका दोस्त बनकर आपके शरीर में घुसकर आपको बीमार कर सकता हूँ। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक चार मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित माँ से उसके बच्चे को। इसलिए मुझे वो लोग बिल्कुल अच्छे नहीं लगते जो मुझसे दूर रहने के लिए हर बार कॉन्डम का इस्तेमाल करते हैं, नशा करते वक्त सुई व सिरिंज शेयर नहीं करते हैं। और देखो जरा, जब खून चढ़वाने की जरूरत पड़ती है तो मान्यता प्राप्त ब्लड बैंक में चले जाते हैं। और यही

0: हर गर्भवती माँ मुझसे दूर रहना चाहती है। तभी तो पहली तिमाही में अपनी HIV जांच कराती है और मुझसे बचने के उपाय करती है। कोई बात नहीं, इन लोगों को अगर मुझसे दूर रहना है तो मैं भी ऐसे लोगों से दूर रहता हूँ। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया।
1: अंतराल के बाद पुनः आपका स्वागत है कार्यक्रम तराने सुहाने में। और अब श्रोताओं, लीजिए सुनिए किशोर कुमार, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में कर्ज फिल्म का ये गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शे ने और धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

यही है साहिबान कहानी प्यार की। किसी ने जान ली, किसी ने जान

श्रोताओं, अब शामिल कर रहे हैं लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार आनंद बख्शी का लिखा गाना कर्मा फिल्म से। गायक कलाकार अनुराधा पौडवाल, मनहर उदास और सुखविंदर सिंह।

श्रोताओं, अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवा रहे हैं वारिस फिल्म का गाना। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की आवाज़ों में वर्मा मल्लिक के बोल हैं व उत्तम जगदीश का संगीत।

ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज सुनिए नामगिरी पेट्टई कृष्णा का नाद स्वरम वादन। तो श्रोताओं, सबसे पहले सुनिए आदिताल में निपत राग धर्मावती।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: बदलो बदलो, आदत बदलो।
2: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
1: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप नामगिरी पेट्टई कृष्णा का नाद स्वरम वादन सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। सवेरे के 10 बजे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम SMS माई चॉइस।

कार्यक्रम की पहली फरमाइश हमें आई है सदर बाजार मारवाड़ बिलाड़ा राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, जयनारायण चौहान, तरुण चौहान और प्रतीक चौहान का। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं जब जब फूल खिले फिल्म का ये गीत।

0: अगले गीत की फरमाइश आई है सेक्टर 5 सूर्य नगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी चौहान, कल्पित चौहान और बेबी गर्वी का। ये सुनना चाहते हैं सच्चा झूठा फिल्म का ये गीत।
1: यूं ही तुम मुझसे

श्रोताओं, अगला गीत हमने लिया है फिल्म याराना से और इस गीत को पसंद किया है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अनजान, साइमा नवाज, बाबू अहमद, मिफ्रा नवाज, बेबी चाहत और सादिया ने। तो चलिए सुनते हैं इनकी पसंद का ये गीत।

जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से एसएमएस किया है मोहम्मद फरमान, सलमान, इरफान, स्टार और नरगिस खातून ने। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं मेरा नाम जोकर फिल्म का ये गीत।

भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा, ईशान और पूजा परिहार ने फरमाइश की है फिल्म पतिता का ये गीत।

अगली फरमाइश हमें आई है रंगत से ज्योतिका मिंज, निकिता, नेहा और रोहित मिंज का। हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं कृष्णा कॉटेज फिल्म का ये गीत।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: Some cars are designed to blend in. Others are designed to be remembered. Meet the Maruti Suzuki Fronx with powerful 1.0-liter turbo booster engine. Fronx delivers performance that matches its bold SUV-inspired design. Already trusted by more than 4 lakh proud owners across India. Fronx is now available starting at just rupees 6.85 lakh with exciting offers available at your nearest Nexa showroom. So, why follow the road when you can lead it? Visit your nearest Nexa showroom and experience the Maruti Suzuki Fronx right now. Nexa.
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। फिल्म अर्पण से सुनिए गीत, और इस गीत को पसंद किया है मजनू का टिल्ला से कमल बालूचा, मधु और सागर ने, और सतना एमपी से आकांक्षा मलिक, उमंग और माही मलिक ने।

रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू का हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं जिद्दी फिल्म का ये गीत।

0: अगला गीत हमने लिया है फिल्म ड्रीम गर्ल से और इस गीत को पसंद किया है पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से, सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह ने।
1: होठों पे रंगत है, दिल में मोहब्बत है, क्या जिसमें औरत है, बस जन्नत ही जन्नत है।

गांव नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं यस बॉस फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म दोस्ताना से। गीत सुनने की ख्वाहिश हमारे श्रोता है वंडूर से, रश्मि, अंजलि, कुंती, कुशाल और प्रसन्नजीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही यह कार्यक्रम SMS माई चॉइस अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11 बजे हैं। श्रोताओं, लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1309वीं कड़ी।

0: संबंध।
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले आज का सुंदर विचार, जिसे हमें भेजा है आर्यनगर कोका भिलाई से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी ने।
2: इन्होंने बहुत सुंदर लिखा है, हर ठोकर इंसान को गिरने से नहीं लगती, कुछ ठोकर सुधरने, संभलने और सीखने से भी लगती हैं।
3: बहुत सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, हमारा आभार कीजिए स्वीकार। अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का। लिखा है,
2: सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी। वीर गाथा के अंतर्गत लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोर जी तारापुर जी के व्यक्तित्व पर केंद्रित कार्यक्रम भी सुना। कार्यक्रम की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। ये कार्यक्रम सुनवाने के लिए आपका हृदय से आभार प्रकट करते हैं।
3: नासिक महाराष्ट्र से प्रशांत पाटिल जी का संदेश आया है,
2: गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरता बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलौदास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतिमबाई मानिकपुरी।
3: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी का,
2: ग्वालियर सुरेश खुराना पप्पी अटल रेडियो श्रोता संघ सांकरा।
3: आज जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी साहू, देवेंद्र प्रताप साहू, नेहा देवी साहू, मिलिंद कुमार साहू, प्रणय कुमार साहू और रुद्रांश प्रताप साहू।
2: आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए।
3: आप सभी श्रोताओं का स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी ज्ञान श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं, इस सप्ताह हमारी चर्चा चल रही है कुछ विशेष झीलों पर। तो अब तक हमने बातचीत की लोकटक और मानसरोवर झील के बारे में, तो आइए जानते हैं आज हम किस खास झील के बारे में बातचीत करने जा रहे हैं। श्रोताओं, वो झील है चिल्का झील। बता दें कि ये भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। वैसे तकनीकी रूप से ये एक लगून है। तो आइए पहले जान लिया जाए कि लगून किसे कहते हैं। जी श्रोताओं, लगून समुद्र या महासागर के किनारे एक उथले जलाशय को कहते हैं, जो समुद्र की रेत, कोरल चट्टानों या बड़े बड़े रेतीले टीलों के

कारण समुद्र से अलग दिखाई पड़ता है, यानी जब कोई प्राकृतिक अवरोध आंशिक रूप से किसी बड़े जलाशय को समुद्र से अलग करता है तो उसे हम लगून कहेंगे। विशेष बात यह है कि लगून सामान्यतः उथला होता है। यह समुद्र से भी जुड़ा होता है लेकिन पूरी तरह से खुला नहीं होता। तो आपको बता दें कि भारत में दो लगून हैं, चिल्का झील लगून और लक्षद्वीप लगून। एक और विशेष बात श्रोताओं, समुद्र से जुड़ा होने के कारण चिल्का झील का पानी थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा है। लेकिन एक प्रश्न उठता है कि थोड़ा खारा और थोड़ा मीठा क्यों? तो ऐसा इसलिए कि लगून में मीठे जल वाली नदियां भी गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ का पानी थोड़ा मीठा और थोड़ा खारा हो सकता है। चिल्का झील इसका सुंदर उदाहरण है। तो आइए अब जान लें कि चिल्का झील है कहाँ। तो आपको बता दें कि ये ओडिशा के पुरी, खुर्दा और गंजाम जिलों में फैली हुई है। यहाँ लगभग 52 नदी नालों का मीठा पानी और बंगाल की खाड़ी का खारा पानी दोनों आते हैं। एक और रोचक बात आपके साथ साझा करना चाहूंगा श्रोताओं, और वो ये है कि यहाँ डॉल्फिन मछलियां भी मिलती हैं, जिन्हें इरावडी डॉल्फिन कहा जाता है। ये प्रजाति मात्र दुनिया में दो जगहों पर ही पाई जाती है। इन्हें पानी में उछलते कूदते जल क्रीड़ा करते बड़ी आसानी से देखा जा सकता है। हाँ, स्वभाव से ये डॉल्फिन शर्मीली होती हैं। एक और तथ्य आपके साथ साझा करना चाहता हूँ, और वो ये है कि सर्दियों के मौसम में चिल्का झील में बहुत सारे प्रवासी पक्षी भी आते हैं। आप पूछेंगे कि ये कहाँ से आते हैं, तो आपको बताए देते हैं। ये प्रवासी पक्षी साइबेरिया, चीन, मंगोलिया और रूस जैसे देशों से आते हैं। जरा सोचिए श्रोताओ, हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके इन पक्षियों का चिल्का झील में आना कितना अनूठा है। इसी बात पर एक जानकारी और आपके साथ हम साझा करना चाहते हैं, वो ये है कि यहाँ आने वाले पक्षियों की संख्या लाखों में बताई जाती है, जो करीब 225 से भी अधिक प्रजातियों के हैं। चिल्का झील का नलबन द्वीप जाना माना पक्षी विहार या अभयारण्य माना जाता है। बहुत से सैलानी यहाँ मात्र पक्षियों को देखने के लिए ही आते हैं। ये ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर से लगभग 55 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे सन 1987 में पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया था। जहाँ तक मछलियों की बात है, यहाँ मछलियों की 200 से भी ज्यादा प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जो मिश्रित मीठे पानी और खारे पानी में रह सकती हैं। इसके अतिरिक्त यहाँ लाल केकड़े, मछली पकड़ने वाली बिल्लियाँ भी पाई जाती हैं, जिन्हें फिशिंग कैट कहा जाता है। श्रोताओ, चिल्का झील में बोट राइड या नौकायन का अलग ही मजा है। यहाँ का सबसे यादगार अनुभव है सूर्योदय और सूर्यास्त की बेला में सूर्य और झील का नजारा, पक्षियों का मधुर कलरव और जल में मछलियों को उछलते कूदते हुए देखना। इतिहास बताता है कि प्राचीन काल में चिल्का झील से समुद्री व्यापार भी होता था, क्योंकि यह बंगाल की खाड़ी से जुड़ी हुई है। बंगाल की खाड़ी को ओडिशा में कलिंग सागर भी कहते थे। श्रोताओं, चिल्का झील से प्राचीन कलिंग के व्यापारी और नाविक सिंहल द्वीप यानी श्रीलंका, इंडोनेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों से आते थे। श्रोताओं, क्या आपने बोइता बंदाना के बारे में कुछ सुना है? है ना बड़ा दिलचस्प नाम? तो आपको बता दूं कि बोइता बंदाना का अर्थ है नावों की पूजा। बोइता यानी नाव और बंदाना यानी पूजा। इस उत्सव में जहाजों या बड़ी बड़ी नावों की पूजा होती थी। ये एक पारंपरिक त्यौहार है जो ओडिशा की समुद्री संस्कृति की विरासत है। इसे जनजातीय या आदिवासी भाषा में डांगा भाषा भी कहते हैं। यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। सन 2025 में ये 5 नवंबर को मनाया गया था। इस त्योहार में एक लोकप्रिय गीत या मंत्र पढ़ा जाता है। मंत्र है आ का मा बोई। आपको बता दूं कि ये नाविकों की सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना गीत है। तो श्रोताओ, चिल्का झील न सिर्फ जैव विविधता का खजाना है, लेकिन हजारों लोगों की जीविका का साधन और कलिंग की समुद्री विरासत की गवाह भी। ये सचमुच भारत की एक अनूठी झील है। तो ये थी श्रोताओं हमारी आज की जानकारी विश्व विख्यात चिल्का झील के बारे में। अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। तो प्रश्न है, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए, चिल्का झील में आने वाले प्रवासी पक्षी मुख्य रूप से किन किन देशों से आते हैं? आप अपना उत्तर और संदेश हमारे ईमेल पर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in। और हाँ, हमारा IVRS नंबर भी नोट कर लें। हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप हमें यानी CIET NCERT को इंस्टा, फेसबुक, एक्स और LinkedIn पर भी फॉलो कर सकते हैं। इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की लगातार जानकारी मिलती रहेगी। तो अब बारी है श्रोताओं।

0: आज के शैक्षिक कार्यक्रम की तो आज का हमारा पहला कार्यक्रम है चिड़िया की बच्ची।
1: इस कार्यक्रम के द्वारा एक चिड़िया की बच्ची के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार वो अपनी माँ की प्रतीक्षा करती है और अपने घोंसले में आनंद से गीत गाते हुए अन्य पक्षियों से बातें भी करती है।
2: माधव दास ने अपने संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी हैं। फूल पौधे, रकाबियों से हौजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफी है। शाम को जब दिन की गर्मी ढल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तख्त डलवाकर मसनद के सहारे वो गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। आज कुछ कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन करा रहा था। माधव दास मसनद के सहारे बैठे थे। उन्हें जिंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भरकर भी कुछ खाली सा रहता है। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार स्याह थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। चिड़िया को मानो माधव दास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वो खूब खुश मालूम होती थी, अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज निकाल रही थी।

0: माधव दास को वो चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वो उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहे। इस समय वो अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा,
1: आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। ये बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम

0: खुशी से ये समझो कि ये बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो।
1: चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वो एकाएक तो घबराई, फिर संकोच को जीतकर बोली,
2: मुझे मालूम नहीं था कि ये बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ, पल भर सांस लेने मैं यहाँ टिक गई थी।
0: हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना भी समझ सकती हो, सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो ना, जाओ नहीं, बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है।
1: चिड़िया बहुत कुछ सकुचा गई, उसे बोध हुआ कि ये उससे गलती तो नहीं हुई कि वो यहाँ बैठ गई है। उसका थिरकना रुक गया, भयभीत सी वो बोली,
2: मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊंगी, बगीचा आपका है, मुझे माफ करें।
0: मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है, मेरा महल भी सूना है, वहां कोई भी चहचहाता नहीं है, तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहां ही तुम क्यों ना रहो।
2: मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने और हवा से खेलने और फूलों से बात करने। मैं जरा घर से उड़ाई थी, अब सांझ हो गई है और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ। आप सोच ना करें।
0: प्यारी चिड़िया, पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है, भीतर महल में चलो, जाने क्या क्या न पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहां कब हंसी सुनने को मिलती है, मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का एक बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी, तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए है? माँ के पास बताओ क्या है, तुम यहां ही सुख से रहो मेरी भोली गुड़िया।
1: चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई, वो बोली,
2: मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी, मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं, मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरी रहती है, मुझे और क्या करना है, दो दाने माँ

0: ला देती है और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ।
1: भोली चिड़िया, तुम कहाँ रहती हो? तुम मुझे नहीं जानती हो?
0: मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को और उसकी धूप को जानती हूँ, घास, पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य, तुम कौन हो?
1: हाँ?
0: मैं तुम्हें नहीं जानती।
1: तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूं सेठ माधव दास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही दे सकता हूं।
0: पर मेरी तो छोटी सी जात है, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए।
1: चिड़िया, तू मेरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो तुझे माला माल कर सकता हूं।
0: तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है। पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी, मैं अनसमझ ठहरी। माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वो मेरी राह देखती होगी। मैं माला माल होकर क्या होंगी, मैं नहीं जानती। माला माल किसे कहते हैं? क्या मुझे वो तुम्हारा माला माल होना चाहिए?
1: अरे चिड़िया, तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती। सोना, उसी की जगत को तृष्णा है, वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है। तेरा घर समूचा सोने का होगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाए, तो उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करिए, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरे पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी।
0: वो सोना क्या चीज होती है?
1: तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधव दास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात तक कर लेता हूं उसकी किस्मत खुल जाती है। तू अभी जग का हाल नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियां हैं, बगीचों पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है री चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं?
0: मैं नादान हूं, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी।
1: ठहर ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा? ये एक है, ऐसे अनगिनती फूल हैं, ऐसे अनगिनती फूल मेरे बगीचों में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी

0: खुशबू है चिड़िया, तैने मेरा चित्त प्रसन्न किया है और वे सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहां घोंसले में तेरी मां है, पर मां क्या है? इस बहार के सामने तेरी मां क्या है? वहां तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है। तू अपने को नहीं देखती? हाँ, कैसी सुंदर तेरी गर्दन, कैसी रंगीन देह। तू अपने मूल्य को क्यों नहीं देखती? मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह।
1: सेठ, मैं अपने को नहीं जानती। इतना जानती हूँ कि माँ मेरी माँ है, और मुझे मुझे यह देर हो रही है। सेठ, मुझे रात मत करो। रात में अंधेरा बहुत हो जाता है और मैं राह भूल जाऊंगी।
0: अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो। तुम बड़ी सुंदर हो।
2: ये कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज हुई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। ये सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझी। सेठ कहते रहे,
0: तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाट देखती होगी, पर कल आओगी ना? कल आना, परसों आना, रोज आना।
2: ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वो चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला। सेठ कहते रहे,
0: सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो। तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं?
1: दो बहन एक भाई, पर मुझे देर हो रही है।
0: हाँ हाँ, जाना, अभी तो उजेला है। दो बहन एक भाई है, हैं? बड़ी अच्छी बात है।
1: सेठ, मुझे देर हो रही है।
0: देर? अभी कहाँ, अभी उजेला है मेरी प्यारी चिड़िया। तुम अपने घर का इतने और हाल सुनाओ, भय मत करो।
1: क्या करूं सेठ, मुझे डर लगता है। माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगी।
3: देखते क्या हो, यही मौका है, पकड़ लो इसे।
4: जी मालिक।
2: इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वो चीख देकर चिचियाई और एकदम उड़ी।
0: हाथ से निकल गई।
2: नौकर के फैले हुए पंजे में वो आकर भी नहीं आ सकी। तब वो उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी।

0: माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा,
1: क्या है बच्ची? क्या हुआ बेटा, बता बेटा।
0: पर बच्ची कांप कांप कर माँ की छाती से और चिपक गई, बोली कुछ नहीं, बस सुबकती रही। बड़ी देर में उसे ढाढ़स बंधा और तब वो पलक मीच उस छाती में ही चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम चिड़िया की बच्ची। तो श्रोताओं, अब हमारा कार्यक्रम यानी उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार,
1: नमस्कार।
2: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
3: श्रोताओं, अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम NCERT की 1309वीं कड़ी सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दिन के 11:30 हुए हैं। श्रोताओं, अब आरंभ होता है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम भूले बिस्तरे गीत। श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए फिल्म बूट पॉलिश से। गायक कलाकार हैं मन्ना डे, आशा भोसले और मधुबाला जावेरी, और संगीतकार है शंकर जयकिशन।

आइए सुनते हैं आह फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने, रचनाकार है हसरत जयपुरी की और संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

मदन मोहन के संगीत निर्देशन में तैयार चिराग फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने और रचना की है मजरू ने।

के एल सैगल के स्वर में आइए सुनते हैं पंकज मलिक का संगीतबद्ध किया हुआ रचना पंडित भूषण की और फिल्म का नाम है मेरी बहन।

आवारा फिल्म का ये गीत आवाज़ है मुकेश की, धुन दी है शंकर जयकिशन ने और गीत को लिखा है शैलेंद्र ने।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: If driving is art, you are the artist. You don't need a reason to drive. You need a Swift to fall in love with driving. A Swift with the all-new 1.2-liter Z-Series engine for perfect balance of power, comfort and fuel efficiency. With 6 airbags as standard across all variants. Features like Smart Play Pro Plus, rear AC vent and wireless charger. So buckle up. It's time to go Swifting.
2: Get attractive offers up to Rs. 45,000. To know more, visit your nearest Maruti Suzuki Arena showroom. TNC apply.
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत निर्देशन में तैयार इज्जत फिल्म का ये गीत, जिसे गाया है लता मंगेशकर और साथियों ने और रचना साहिर लुधियानवी की।

कार्यक्रम का आखिरी गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म तानसेन से। गाया है KL सहगल ने, रचना की है इंद्रा ने और संगीत दिया है खेमचंद्र प्रकाश ने।

0: श्रोताओं, अभी आप तेलुगु कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 12:30 हुए हैं। अब प्रस्तुत है मलयालम कार्यक्रम।
1: മീഡിയം വേവ് 438.6 മീറ്റർ അഥവാ 684 കിലോ ഹെർട്സിൽ ഇത് ആകാശവാണി ശ്രീ വിജയപുരം നിലയം.

श्रोताओं, अभी आप मलयालम कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1 बजने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के अंतिम चरण में पेरिस पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ वीवाटेक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप के क्षेत्र में यूरोप का ये सबसे बड़ा आयोजन है। श्री मोदी विशेष कार्यक्रम में भारतीय समुदाय के लोगों से भी बातचीत करेंगे। श्री मोदी का आज पेरिस में भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग बढ़ाने के लिए फ्रांस के प्रमुख व्यापार जगत प्रतिनिधियों के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें करने का भी कार्यक्रम है।
1: प्रधानमंत्री अपनी चर्चाओं की शुरुआत सेंट गोबा के चेयरमैन और सीईओ बनवा बेजा के साथ करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग और टिकाऊ बुनियादी ढांचे पर ध्यान केंद्रित किए जाने की उम्मीद है। वह स्मार्ट मोबिलिटी और रेल आधुनिकीकरण के क्षेत्र में सहयोग की संभावनाओं को तलाशने के लिए एल्स्टॉम के सीईओ से भी मुलाकात करेंगे। प्रौद्योगिकी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नवाचार और जिम्मेदार एआई गवर्नेंस पर मिस्ताल एआई के सह संस्थापक और सीईओ आर्थर मेंज के साथ बातचीत करेंगे। इन बैठकों का समापन सीएमए सीजीएम ग्रुप के चेयरमैन और सीईओ सादे के साथ होगा, जहां समुद्री व्यापार, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण और मजबूत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। ये बैठकें भारत और फ्रांस के बीच बढ़ते आर्थिक संबंधों को रेखांकित करती है। आकाशवाणी समाचार के लिए पेरिस फ्रांस से महेश सोपड़े।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया, जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार ने राजधानी में 42 स्थानों पर इन शिविरों का आयोजन किया है। उन्होंने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में 26,000 किलोमीटर से अधिक ग्रामीण सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और अन्य काटने के उपकरणों का ही

उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों के उपयोग से भोजन दूषित हो सकता है जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथीन्द्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर कोई अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकलपीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए निर्देश दिया। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। सुबह 9 बजे शुरू हुआ मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से हरा दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया पर 4-2 की जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत की। आज रात ग्रुप ए में चेक गणराज्य का मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा। दूसरे मुकाबले में मैक्सिको और दक्षिण कोरिया आमने सामने होंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये गजल जनाब वसीम बरेलवी साहब की है और अभी जो मैंने शेर पढ़ा वो असल में थोड़ा सा अलग है, लेकिन मैंने अपनी सहूलियत के लिए थोड़ी सी गुस्ताखी की है जिसकी मैं माफ़ी चाहूँगा आपसे भी और जनाब वसीम बरेलवी साहब से भी। वो शेर असल में कुछ ऐसे है, किताब माजी के औराक उलट के देख ज़रा, किताब माजी के औराक उलट के देख ज़रा, न जाने कौन सा सफ़ा मुड़ा हुआ निकले। लीजिए अगला शेर पेश कर रहा हूँ।

श्रोताओं, अभी आप चित्रा सिंह की आवाज में कुछ गजल सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 1:30 हुए हैं। अब पेश है कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम। श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं फिल्म नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे से। इस गीत की फरमाइश हमें आई है गांव टोरोवाल, जिला नवांशहर, पंजाब से। गगनदीप थांदी, तृप्ता कुमारी थांदी, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम, बेबी वामिका और वाणी थांदी का।

मीरठ कैंट से दिग्दर्शन कविता राधा नामदेव रानी झाप संजय ढींगिया अनिल जैन संदीप मक्कड़ और दर्शन भाई ये सुनना चाहते हैं दिल तेरा दीवाना फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, अगला गीत कभी कभी फिल्म से। गीत सुनने की ख्वाहिश हमारे श्रोता हैं संबलपुर कांकेर से, फागुन राम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम यूं ही जारी रहेगा इस अंतराल के बाद।
1: आया खुशियों का पैगाम पीएम किसान,
2: पीएम किसान। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: अन्नदा

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। अन्नदाता का बढ़ता मान
1: पीएम किसान। श्रोताओं, कार्यक्रम में आपका पुनः स्वागत है। अगली फरमाइश पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम और आशीष विश्वकर्मा। हमारी ये श्रोता सुनना चाहते हैं कभी खुशी कभी गम फिल्म का ये गीत।

अगले गीत की फरमाइश आई है ग्राम हिंगड़ी आलोट जिला रतलाम मध्य प्रदेश से जगदीश धाकड़ नाइमा रंजू बाई युवराज सिंह और शिवांगी धाकड़ का। ये सुनना चाहते हैं दिल विल प्यार व्यार फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अंतिम गीत यवतमाल महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे, हमारे ये श्रोता सुनना चाहते हैं हीरो फिल्म का ये गीत।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही यह कार्यक्रम आपके नाम फिल्मी पैगाम अब समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। दोपहर के 2 बजे हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पेरिस में फ्रांस के प्रमुख व्यापारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री विवाटेक शिखर सम्मेलन में भी भाग लेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा ऋतव्रत बनर्जी को विपक्ष का नेता नियुक्त करने के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमरीका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। अब समाचार विस्तार से। भारत फ्रांस आर्थिक और औद्योगिक सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पेरिस में फ्रांस के शीर्ष कारोबारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठकें कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी शाम को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ विवाटेक सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी सम्मेलन में कई उच्च स्तरीय कार्यक्रमों का नेतृत्व करेंगे। सम्मेलन का समापन प्रधानमंत्री के भाषण के साथ होगा। विवाटेक सम्मेलन यूरोप का सबसे बड़ा प्रौद्योगिकी और स्टार्टअप कार्यक्रम है। विवाटेक सम्मेलन में इस बार भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय पवेलियन है, जो भारतीय और यूरोपीय नवाचार तंत्र के बीच साझेदारी की अपार संभावनाओं को दर्शाता है। प्रधानमंत्री एक विशेष प्रवासी कार्यक्रम के दौरान भारतीय समुदाय के सदस्यों को भी संबोधित करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। निर्देश दिया गया है, इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, तो वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आज राष्ट्रीय राजधानी में 3 दिवसीय जन कल्याण शिविरों का उद्घाटन किया। ये शिविर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के अभियान से प्रेरित हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इन शिविरों के माध्यम से पात्र नागरिक केंद्र और दिल्ली सरकार की विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी और लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: दिल्ली की जनता को अलग अलग विभागों द्वारा

0: जितनी भी योजनाओं का लाभ मिल रहा है या केंद्र की जितनी योजनाओं के लिए वो एलिजिबल हैं, उन सारी योजनाओं के शिविर यहाँ पे सभी विभागों द्वारा लगाए गए हैं। सारी की सारी सुविधाएं अंडर वन रूफ यहाँ पे लोगों को मुहैया कराई जा रही है। पूरी दिल्ली में 42 जगह पे 3 दिन के ये शिविर 18, 19 और 20 तारीख के रहेंगे।
1: युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि पिछले एक दशक में भारत ने शिक्षा, कौशल विकास, उद्यमिता, खेल, स्वास्थ्य और नागरिक भागीदारी जैसे क्षेत्रों में युवाओं के लिए अवसरों का निरंतर विस्तार किया है। एक राष्ट्रीय दैनिक में प्रकाशित लेख में श्री मांडविया ने देश के युवाओं को अमृत पीढ़ी बताया जो 2047 तक विकसित भारत की यात्रा का नेतृत्व करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले 12 वर्षो में युवा शक्ति का उपयोग अवसर सृजित करने, आकांक्षाओं को बढ़ावा देने और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने के लिए किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष रथींद्र बोस द्वारा तृणमूल कांग्रेस के बागी विधायक ऋतव्रत बनर्जी को नेता प्रतिपक्ष नियुक्त करने के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने से इंकार कर दिया है। न्यायमूर्ति कृष्ण राव की एकल पीठ ने टीएमसी विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये निर्देश दिया। श्री चट्टोपाध्याय ने नेता प्रतिपक्ष पद के लिए अपने नामांकन की अस्वीकृति और ऋतव्रत बनर्जी की नियुक्ति को चुनौती देते हुए याचिका दर्ज की थी। न्यायालय ने प्रतिवादियों को 3 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल करने का निर्देश और याचिकाकर्ता को जवाब दाखिल करने के लिए अतिरिक्त 2 सप्ताह का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। झारखंड की 2 राज्यसभा सीटों के लिए मतदान जारी है। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। मतगणना शाम 5 बजे होगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्म कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित एक स्वास्थ्य शिविर का दौरा करेंगी। वह एक बड़ी इंटीग्रेटेड ग्रामीण पाइप आधारित जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगी, जिससे कुसमी ब्लॉक के अंतर्गत खनन से प्रभावित 113 गांव लाभान्वित होंगे। इस दौरान राष्ट्रपति सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजना का भी उद्घाटन करेंगी। राष्ट्रपति रायरंगपुर में ओडिशा सरकार के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ शामिल होंगी। प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मीनाक्षी।
1: नागर विमानन मंत्री राममोहन नायडू ने आज बताया कि चेन्नई से चमड़े के सामान और ऑटो पार्ट्स सहित कई वस्तुएं लेकर पहला कार्गो विमान नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतर चुका है। हवाई अड्डे पर 2 दिन पहले ही वाणिज्यिक परिचालन शुरू हुआ था। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए न केवल कृषि उत्पादन बढ़ाना आवश्यक है बल्कि खाद्यान्नों का सुरक्षित भंडारण और कुशल वितरण भी जरूरी है। श्री जोशी ने आज नई दिल्ली में भारतीय खाद्य निगम के स्मार्ट वेयरहाउसिंग सिस्टम के उद्घाटन समारोह में ये बात कही। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी खाद्य व्यवसाय संचालकों को निर्देश दिया है कि वे खाद्य पदार्थों के रखरखाव और प्रसंस्करण के दौरान केवल जंगरोधी चाकू और काटने के अन्य उपकरणों का ही उपयोग करें। खाद्य नियामक के अनुसार ऐसे उपकरणों का उपयोग न करने से भोजन दूषित हो सकता है, जिससे उपभोक्ता सुरक्षा को खतरा है। दिल्ली सरकार ने 21 जून को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी की पुनर्परीक्षा के लिए सभी 97 परीक्षा केंद्रों पर अभिभावकों और परिवार के सदस्यों के लिए कूलिंग जोन की व्यवस्था की है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इन कूलिंग जोन में बैठने की व्यवस्था, पीने का पानी, चाय, ओआरएस, प्राथमिक चिकित्सा और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी। परीक्षा के दिन परीक्षार्थियों के लिए डीटीसी बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा भी प्रदान की गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।

0: अमेरिका और ईरान के बीच एक ऐतिहासिक संघर्ष विराम समझौता लागू हो गया है। इससे व्यापक शांति समझौते पर बातचीत के लिए 60 दिन की समय सीमा तय हो गई है। स्विट्जरलैंड में होने वाली बैठक से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित 14 सूत्री समझौते में तत्काल संघर्ष विराम शामिल है। समझौते में ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर समाधान के लिए एक ढांचा तैयार किया गया है। समझौते के अंतर्गत अमरीका ईरान के बंदरगाहों से नौसैनिक नाकाबंदी हटाना शुरू करेगा और सामान्य समुद्री यातायात बहाल करने की दिशा में काम करेगा। ईरान 30 दिनों के भीतर होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करेगा।
1: अमेरिका और ईरान ने महीनों से जारी सैन्य टकराव को खत्म करने के मकसद से एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद औपचारिक रूप से एक नई कूटनीतिक प्रक्रिया शुरू की है। इस समझौते में तुरंत युद्ध विराम, होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने और शांति के लिए एक व्यापक समझौते पर बातचीत करने की बात कही गई है। अमरीका ने समुद्री प्रतिबंधों में ढील देने और प्रतिबंधों से राहत दिलाने की दिशा में काम करने का वादा किया है, जबकि ईरान ने फिर से कहा है कि वो परमाणु हथियार नहीं बनाए और अंतर्राष्ट्रीय निगरानी में अपने संवर्धित यूरेनियम के भंडार को लेकर जताई गई चिंताओं को दूर करने पर सहमत हुआ है। इस समझौते में आर्थिक पुनर्निर्माण और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भविष्य में सहयोग के प्रावधान भी शामिल हैं। अब राजनयिकों के सामने अगले 60 दिनों के भीतर इस रूपरेखा को एक बाध्यकारी समझौते में बदलने का मुश्किल भरा काम है। हालांकि समर्थकों ने इस बड़ी कामयाबी का स्वागत करते हुए इसे पश्चिम एशिया में स्थिरता की दिशा में एक अहम कदम बताया है, लेकिन परमाणु सत्यापन, प्रतिबंधों को लागू करने और क्षेत्रीय सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अभी भी काफी मतभेद बने हुए हैं। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: समझौते के अंतर्गत लेबनान में संघर्ष विराम भी शामिल है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोर ने बताया कि दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने, नागरिकों को नशीले पदार्थों और अवैध मादक पदार्थों से बचाने, सीमाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए दोनों देशों के बीच सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा की। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने आज नई दिल्ली में 2027 की हज यात्रा की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। श्री रिजिजू ने 2026 की हज यात्रा को भारत के इतिहास की सबसे सफल यात्रा बताया। उन्होंने कहा कि भारत को 2026 की हज यात्रा के लिए सऊदी अरब के हज और उमराह मंत्रालय से 2 लब्बैतुम पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में कल रात एक सड़क दुर्घटना में 7 लोगों की मौत की खबर है। मृतकों में 4 पुरुष और 3 महिलाएं शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि यह हादसा लगभग रात 2 बजे हुआ। शुरुआती जांच के मुताबिक दुर्घटना वाहन के अनियंत्रित होकर खाई में गिरने से हुई। हॉकी में भारत ने आज न्यूजीलैंड में आयोजित एफआईएच महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हरा दिया। भारत ने पूल ए में शीर्ष स्थान हासिल कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला 20 जून को चिली और कोरिया के बीच होने वाले मैच के विजेता से होगा। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में कोलंबिया ने आज सुबह उज्बेकिस्तान को 3-1 से पराजित कर दिया। इससे पहले घाना ने पनामा पर 1-0 की रोमांचक जीत दर्ज की और इंग्लैंड ने क्रोएशिया

0: तराई क्षेत्रों में अगले 4 दिनों तक तेज वर्षा जारी
1: के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष विराम समझौता लागू, शांति वार्ता के लिए 60 दिन की समय सीमा तय। और भारत ने हॉकी FIH महिला नेशंस कप में उरुग्वे को 3-2 से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये विविध भारती है, राष्ट्रीय सेवा देश की।
3: मीडियम वेव 400

38.6 मीटर अर्थात 684 किलो हर्ट्स और FM 100.9 मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। मौसम। मौसम कार्यालय से प्राप्त सूचना के अनुसार जनसेवाओं और मछुआरों को यह मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि अंडमान निकोबार सागर तट पर हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा रहेगी, अतः मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि द्वीप समूह के अधिकांश स्थानों में हल्की सी मध्यम वर्षा होगी या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय 2:31 हुए हैं। अब प्राइमरी चैनल पर हमारी पहली सभा समाप्त होती है। अपनी दूसरी सभा में शाम 4 बजे हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हम आपसे अनुमति चाहते हैं, लेकिन अब से लेकर शाम 4 बजे तक हम आपसे जुड़े रहेंगे 100.9 मेगाहर्ट्ज़ FM पर स्थानीय कार्यक्रमों के साथ। नमस्कार।

0: हम बोल रहे हैं विविध भारती FM श्री विजयपुरम केंद्र से और हमारा प्रसारण उपलब्ध है 100.9 मेगाहर्ट्ज पर। अब आप सबके भरपूर मनोरंजन के लिए प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक।
1: नॉनस्टॉप म्यूजिक।

0: वो यहीं पर
1: है।
0: ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बच्चा मर जाओ।

0: निशुल्क कानूनी सहायता टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
3: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
2: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

0: पूरा रशिया का जनसंख्या कितना है बताओ? 14 करोड़ जितनी। बहुत बड़ा नंबर है ना? पर बड़ा नंबर तो ये है कि भारत में लगभग इतने ही घरों में लगे हैं नल पिछले 12 सालों में। 16 करोड़ घरों में हर दिन हर मौसम आता है नल से निर्मल जल, जिससे करोड़ों महिलाओं को पानी ढोने से तो मुक्ति मिली ही साथ गाँव में जल व्यवस्थापन की शक्ति भी मिली।
1: जल जीवन मिशन का विजन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, ये डिसेंट्रलाइजेशन का, विकेंद्रीकरण का उसका भी एक बहुत बड़ा मूवमेंट है। ये विलेज ड्रिवन, विमेन ड्रिवन मूवमेंट है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग,
1: जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइस और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सिमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स।
0: आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: जानते हैं, कुवैत जैसे देश की GDP से करीब 3 गुना पैसा तो हमने सिर्फ अपने देश के छोटे उद्यमियों को दिया है, वो भी गारंटी फ्री 40 लाख करोड़ से भी अधिक के मुद्रा लोन से।
3: करोड़ों छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना से लोन मिला, उन्हें आज महसूस होता है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

0: श्रोताओं, नॉनस्टॉप म्यूजिक में आज आपको सुनवाया गया फिल्म जो जीता वही सिकंदर, फटा पोस्टर निकला हीरो, दिल का रिश्ता, इम्तिहान, दावते इश्क, अजनबी, साजन चले ससुराल, ब्लैकमेल, कुछ कुछ होता है और खुद्दार के गीत। इसी के साथ ही यह कार्यक्रम नॉनस्टॉप म्यूजिक अब समाप्त हुआ।
1: Non-stop music!

कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी बारिश सिर्फ मौसम नहीं होती, वो किसी की यादों का पैगाम बनकर भी आती है। जब बूंदें ज़मीन को छूती है तो दिल में छुपे एहसास भी जाग उठते हैं। ये गीत उन्हीं अनकहे जज्बातों की कहानी है जहां बारिश के साथ मोहब्बत की खुशबू भी घुल जाती है।

दोस्तों, जब किसी का साथ दिल को सुकून देने लगे तो हर मोड़ थोड़ा आसान लगने लगता है। फिर ज़िंदगी की राहों में बस यही महसूस होता है कि अपना कोई हमसफ़र साथ चल रहा है।

दोस्तों, किसी को मिलने की चाहत दिल की उन तमन्नाओं की कहानी है जो किस्मत से अपना जवाब मांग रही है। इसमें चाहत भी है, इंतज़ार भी, और एक चुप सी उम्मीद की रोशनी कि जो ख्वाब देखे हैं वो एक दिन ज़रूर पूरे होंगे।

0: मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 4 बजे हैं। अब हमारी आज की दूसरी सभा आरंभ होती है। इस सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। सभा के आरंभ में लीजिए सुनिए निकोबारी कार्यक्रम।
1: लामक तेलंगी मीडियम वेव तो 438.6 मीटर है 684 किलोहर्स रमांग एलंगी आकाशवाणी इसरी विजयपुरम अंगी निकोबारी प्रोग्राम तहांग
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: मिनकातलोनी कैंडिडेट्स तहलो नुव नके एडमिशन रे इन मिने तरोल कांगन डिग्री कोर्सेस एलगम छे अनारम एलगम अकेडमिक ईयर 2026-27 तगाम मना रे तक सबमिशन नुप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नुरु लंकु तुम सुम कम नतेल गेप त लुय अना अलांग चुन चिंगे काहे तगाम छे अनारम अनि मिनकातलोन ही হয় দে হাঙিতে তরণ মিনে মাহবত করেছ লামক হয় নে কোন পানাম হি

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

0: Ti kaknya suris Bartolomeu antah ngam mana haang hi tin ke ke. Hoya ngatel nga haang in ngat sinamu hi kin hurij. Hang rong ita kasa te ita fan kan ro tala harap ngai yen.
1: अभी आप निकोबारी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 4:30 हुए हैं। अब सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 12वीं कड़ी।

नमस्कार शानदार श्रोताओं, नन्हे प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपका आरजे चेतन और आज हम एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हर परिवार का हृदय, सकारात्मक माता पिता, बच्चे का संचार। अरे चाहे आप गाड़ी चला रहे हो, घर के कामकाज निपटा रहे हो या बस फुर्सत में हो, आइए बात करें कि कैसे संचार आपके परिवार में चीजों को पूरी तरह से बदल सकता है। दोस्तों आइए अब छोटों के साथ अपने संबंधों में प्रभावी संचार के जादू की खोज के लिए एक यात्रा शुरू करें। इसकी कल्पना करें एक ऐसी दुनिया जहां आपके बच्चों के साथ आपकी बातचीत एक अच्छी तरह से कोरियोग्राफ किया गया नृत्य की तरह होती है, जो कि एक सकारात्मक और मजबूत संबंध बनाती है। इस एपिसोड में हम ये विश्लेषण करने जा रहे हैं कि माता पिता बच्चों के बीच संचार क्लिक को क्या गतिशील बनाता है। ये सिर्फ शब्दों के बारे में नहीं है, ये समझ, विश्वास और प्यार का ताना बाना बुनने के बारे में है। सकारात्मक माता पिता बच्चों के संचार के रहस्यों का उजागर करेंगे, ये पता लगाएंगे कि यह पूरे परिवार के लिए कैसे माहौल तैयार करता है। एक ऐसे घर की कल्पना करें जहां हर कोई सुना, महत्व और जुड़ाव महसूस करता हो। जैसे ही हम पारिवारिक गतिशील पर संचार के प्रभाव को देखते हैं, हमें पता चलेगा कि कैसे हमारे बात करने के तरीके में कुछ बदलाव देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों हम यही नहीं रुक रहे हैं, यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है। हम आपको

आपकी दैनिक बातचीत में कनेक्शन के उस अतिरिक्त स्पर्श को शामिल करने के लिए व्यावहारिक रणनीतियों से लैस करेंगे। इस आरामदायक माहौल की कल्पना करें जहां आपके बच्चे जानते हैं कि उनके विचार मायने रखते हैं और उनकी आवाज परिवार के मिश्रण में गूंजती है। ये सिर्फ उन पर बात करने के बारे में नहीं है, ये समझ और समर्थन की इस गर्माहट को बुनने के बारे में है। सबसे अच्छे समय में पालन पोषण करना एक कठिन काम है, ये समय लेने वाला भी है। पालन पोषण में कई जिम्मेदारियां शामिल होती है, जैसे बच्चों की देखभाल करना, उन्हें वह सिखाना जो उन्हें जानना आवश्यक हो और जीवन भर उनका मार्गदर्शन करना। माता पिता बच्चे का रिश्ता एक अनोखा बंधन है जो एक वयस्क और उनके बच्चे के बीच मौजूद होता है। जहां एक वयस्क अपने बच्चे की जरूरत की देखभाल करने और उनके वयस्क होने पर मार्गदर्शन प्रदान करने की जिम्मेदारी लेता है। एक अच्छा माता पिता बच्चे के रिश्ते या जहां बच्चा प्यार स्वीकार्य और सुरक्षित महसूस करता है, एक अच्छे माता पिता वह होता है जो बच्चों की भावनाओं को सुनता है, अपने बच्चे के लिए सर्वश्रेष्ठ चाहता है और शारीरिक दंड भी भयानात्मक शोषण नहीं करता है। आदर्श रूप से वो बच्चे को तलाशने की विकसित होने के लिए एक सुरक्षित आश्रम प्रदान करते हैं। वे माता पिता को बिना शर्त समर्थन, मार्गदर्शन, अनुशासन और प्रोत्साहन के माध्यम से सिखाने और प्यार दिखाने का अवसर भी प्रदान करता है। माता पिता बच्चे के रिश्ते की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वह प्यार और विश्वास है जो माता पिता का अपने बच्चों के लिए होता है। यही चीजें उन्हें जिम्मेदार वयस्कों के रूप में विकसित होने में मदद करती है जो बड़े होकर अच्छे नागरिक बनेंगे। बदलते दौर में पारिवारिक रिश्ते काफी कमजोर होने लगे हैं। अमूमन लोग इसके पीछे तरह तरह की वजह बताते हैं, लेकिन रिश्ते के कमजोर होने के पीछे एक मुख्य कारण होता है आपसी कम्युनिकेशन की कमी। दरअसल आज के समय में हर कोई अपनी लाइफ में इतने बिजी हो गए, अपने सबसे करीबी रिश्तों को समय दे नहीं पा रहे हैं, जिसके कारण न तो वह एक दूसरे की समस्याएं व मन में चल रही परेशानियों को समझ पाते हैं और न ही साथ में वक्त बिताने से मिलने वाली खुशी का एहसास हो पाता है। इतना ही नहीं, आपसी कम्युनिकेशन की कमी के कारण आपस में गलतफहमियां पैदा होती है और इससे भी रिश्ते कमजोर होकर बिखरने लग जाते हैं। इसीलिए ये जरूरी है कि फैमिली कम्युनिकेशन को बढ़ावा दिया जाए। अब सवाल ये उठता है कि जब हर कोई अपने काम में इतना व्यस्त है तो ऐसे में फैमिली कम्युनिकेशन को बेहतर किस तरह बनाया जाए। इसके लिए आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस आप कुछ छोटे छोटे टिप्स बनाकर ऐसे बेहद आसानी से कर सकते हैं। हो सकता है घर के हर सदस्यों के काम करने का समय अलग है, ऐसे में हर किसी के लिए एक साथ समय निकाल पाना काफी मुश्किल होता है। इसीलिए आप अपने घर में एक नियम तय कर सकते हैं जिसमें दिन के 3 मील में से कम एक मील साथ खाएं। इससे आप सभी कुछ वक्त साथ बिताने और फैमिली कम्युनिकेशन को बेहतर बनाने में मदद मिलेगा। बच्चे की देखरेख करते हुए माता पिता भी काफी कुछ सीखते हैं। भले ही आप अपने बच्चे को कितना भी प्यार करते हो या फिर अपने उसे सारी सुख सुविधाएं देने की कोशिश की हो, लेकिन अगर आप कम्युनिकेशन के दौरान गलतियां करते हैं तो इससे बच्चे पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। कम्युनिकेशन स्किल्स किसी भी रिश्ते को बेहतर बनाने में एक ब्रिज की तरह काम करती है। अगर ब्रिज कमजोर होता है, ऐसे में रिश्ते अधूरे ही रह जाते हैं। इसीलिए हमेशा ये सलाह दी जाती है कि माता पिता अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर लगातार काम करें। आप भले ही कितने अच्छे या मॉडर्न पेरेंट हो, लेकिन अगर आप कुछ कम्युनिकेशन मिस्टेक्स करते हैं तो इसका इफेक्ट बच्चों को भुगतना पड़ सकता है। वन साइडेड कम्युनिकेशन इज अ मिस्टेक जिसे अधिकतर पेरेंट्स बार बार दोहराते हैं। अमूमन पेरेंट्स अपनी बात तो बच्चे से कह देते हैं, लेकिन अगर बच्चा कुछ कहना चाहता है तो उसकी सुनते ही नहीं। कई बार हम अपने काम में बिजी हो जाते हैं या फिर इसे डांट कर चुप कर देते हैं। ऐसा करने से बच्चों को अपने ही घर में काफी अकेला महसूस करने लगता है। कई बार पेरेंट्स जब बच्चे के साथ कम्युनिकेट करते हैं तो बहुत अजीब जजमेंटल हो जाते हैं। टिप्पणियों से बच्चे आलोचना महसूस करेंगे, ऐसे में वो प्रोटेक्टिव हो जाते हैं और इससे बहस शुरू हो जाती है। इतना ही नहीं, कभी कभी बच्चा ये भी सोचने लगता है कि पेरेंट्स उसके बारे में गलत ही सोचते हैं। ऐसे में वो और भी ज्यादा गलत हरकत करना शुरू कर दे।

शुक्रिया। एक पेरेंट्स के रूप में आपको कभी भी अपने बच्चों से या फिर बच्चे के सामने झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये देखा जाता है कि जब कभी बच्चा जिद करता है तो पेरेंट्स उसे शांत करने के लिए झूठा वादा करते हैं, बाद में मुकर जाते हैं, जिससे बच्चे को काफी बुरा लगता है। इतना ही नहीं, इस तरह आप बच्चे के सामने एक गलत उदाहरण भी पेश कर रहे हैं। इससे बच्चे को लगता है कि किसी भी मुश्किल स्थिति से बाहर निकलने के लिए झूठ बोलना सही है। धीरे धीरे बच्चा हर छोटी छोटी बात पर झूठ बोलना शुरू कर देता है। अक्सर अपने पेरेंट्स से वह बॉन्डिंग नहीं बन पाती है जो वास्तव में उसके बीच होना चाहिए। लगातार बच्चे को ब्लेम करने से उसके मन में अपने पेरेंट्स के लिए एक नेगेटिव इमेज बनती है। कई बार जब पेरेंट्स अपने बच्चों को कुछ समझाना चाहते हैं तो वो वास्तव में उन्हें एक लंबा लेक्चर देते हैं जिसमें कई बातों को एक साथ शामिल करते हैं। आप यकीनन बच्चों को कुछ ऐसा समझाना चाह रहे हो, लेकिन आपको ये भी जानना चाहिए कि बच्चा अभी इतना मैच्योर नहीं है, वह आपकी गहराई समझ नहीं पा सकता है। इसीलिए आपको घुमा फिरा के बात करने से बचना चाहिए। बेहतर होगा कि आप उससे एक बारे में एक ही विषय पर बात करें। अगर आप इसे सीधे तौर पर अपनी बात नहीं समझा सकते हैं तो ऐसे में आप उसे एक कहानी के जरिए अपनी बात सिखा सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा कम्युनिकेशन मिस्टेक है जिसे हर पेरेंट को बचना चाहिए। स्पष्ट, वशिष्ठ रहे और अपमानजनक शब्दों का प्रयोग न करें। दयालु भाषा का प्रयोग आपके बच्चों के लिए एक सकारात्मक उदाहरण स्थापित करने में मदद करता है। याद रखें, बातचीत से आपके नन्हे मुन्ने को सम्मान और प्यार का एहसास होना चाहिए। इसी के साथ ही आज का लम्हे प्रोग्राम यही खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर मिलेंगे, तब तक आप अपने आरजे चेतन को दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर द्वारा निर्मित और प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे सुन रहे हैं। अगर आप हमें लिखना चाहते हैं या कॉल करना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 09515227039। आई रिपीट, 09515227039। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है feedbackamc1@gmail.com। आई रिपीट, feedbackamc1@gmail.com।

अभी आप प्रायोजित कार्यक्रम लम्हे की 12वीं कड़ी सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 4:40 हुए हैं। अब सुनिए हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण। पहले आज के शेष कार्यक्रम। अब से कुछ देर बाद यानी 4:45 पर फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा बहारों की शाम। शाम 5 बजे तमिल में किसानों के लिए कार्यक्रम होगा वेलन उल्लगम। बंगला में शाम 5:30 पर कार्यक्रम सुनिए चिरंतनी। संध्या 6 बजे किसान वाणी कार्यक्रम में डॉलीगंज निवासी सीताराम यादव पशुपालक के साथ की गई बातचीत आप सुन पाएंगे। संध्या 6:30 पर योगेंद्र टिकू द्वारा लिखा नाटक सुनिए मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। 7:15 पर सुनिए मौसम की जानकारी जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनिए दिल ने फिर याद किया 7:20 पर। 7:30 पर युवाणी में पत्रिका कार्यक्रम सुनिए युवा संसार। दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग आप सुनेंगे रात 8 बजे। 8:35 पर रोजगार समाचार तत्पश्चात सुनिए गौरव गान। रात्रि 10 बजे व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेश आते हैं तथा FM 100.9 MHz पर रात्रि 10 बजे सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। इन कार्यक्रमों के अलावा रात्रि 8:45 पर समाचार संध्या, 9 बजे न्यूज़ एट 9, 9:15 पर स्पॉटलाइट, 9:30 पर कंट्री वाइट और 9:45 पर इनसाइट्स कार्यक्रम होगा जिसे हम दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। ये थे आज के शेष कार्यक्रम। अब एक नज़र डालते हैं कल प्रसारित होने वाले

कार्यक्रमों पर। हमारी पहली सभा आरंभ होगी कल प्रातः 5:23 पर। 5:30 पर अनमोल विचार, तत्पश्चात भक्ति गीतों का कार्यक्रम होगा प्रभाती वंदना। एग्रीटिप्स कार्यक्रम में प्रातः 5:55 पर जानकारी का विषय रहेगा दुधारू गायों की पोषण। सवेरे 6:10 पर सुनिए जलियानों का यात्रा कार्यक्रम। कल सवेरे 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा चलते चलते शीर्षक पर। रामचरित मानस गान सुनिए 6:30 पर। 6:50 पर सुनिए मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण। जन सूचनाएँ सवेरे 7:00। 7:15 पर देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुनिए देश रागनी। तथा 7:15 पर ही FM 100.9 MHz पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए भूले बिसरे गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का समय रहेगा 7:30। सुबह 8:30 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में आप पंकज उदास को सुन पाएंगे। सुबह 9:00 फिल्म गीतों का कार्यक्रम सुनिए तराने सुहाने। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में 9:30 पर पंडित जसराज का गायन आप सुन पाएंगे। सुबह 10:00 दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम सुनिए संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग। दिन के 11:00 प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए NCERT। 11:30 पर निकोबारी कार्यक्रम में आप लोकगीतों का आनंद ले पाएंगे। दोपहर 12:00 तेलुगु में युवाओं के लिए कार्यक्रम होगा युववाणी। मलयालम कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर स्वास्थ्य कार्यक्रम आप सुन पाएंगे। दोपहर 1:10 पर महफिल कव्वाली कार्यक्रम में कव्वाल होंगे जाहिद नजा। दोपहर 1:30 पर व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। दोपहर बाद 2:30 पर मौसम की जानकारी के बाद हमारे स्थानीय सभा की समाप्ति होगी, जबकि FM 100.9 MHz पर हमारी स्थानीय सभा जारी रहेगी हेलो डियर फ्रेंड्स कार्यक्रम के साथ। फिल्मी गीतों का विशेष कार्यक्रम होगा दोपहर बाद 3:30 पर यूं ही गाते रहो। हमारी दूसरी सभा आरंभ होगी कल शाम 5:00 तमिल कार्यक्रम से, जिसमें आप एक ही श्रोता के पसंद के गाने सुन पाएंगे। बंगला कार्यक्रम में शाम 5:30 पर आप आधुनिक गीतों का आनंद ले सकेंगे। कृषि जगत कार्यक्रम में संध्या 6:00 कृषि निदेशक श्री देवाव्रता के साथ की गई बातचीत का विषय रहेगा खेत बचाओ अभियान। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों का विवरण सुन रहे थे। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 4:45 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम।

कार्यक्रम का पहला गीत आपने सुना फिल्म फिल्म नरगिस से। आवाजें थी कुमार शानू और अलका याग्निक की। आइए अब सुनते हैं जगजीत सिंह का गाया एक गीत, फिल्म का नाम है

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है। अन्नदाता का बढ़ता मान पीएम किसान।
1: श्रोताओं, और अब कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं दुनिया दिलवालों की फिल्म का ये गाना। सोनू निगम की आवाज है, एआर रहमान का संगीत है।

0: श्रोताओं, इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम बहारों की शाम संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजने वाले हैं। अब सुनिए तमिल कार्यक्रम।
1: आकाशवाणी श्री विजयपुरम वानोली वणकम तमिल अमदम वणकम नेयर्गले।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

अभी आप तमिल कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय शाम के 5:30 हुए हैं। अब पेश है बंगला कार्यक्रम।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

0: अभी आप बंगला कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय संध्या के 6 बजे हैं। अब सुनिए किसानवाणी कार्यक्रम।
1: इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।

नमस्कार, किसानवाणी के आज के इस अंक में आप सभी किसान भाई बहनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। किसान साथियों, हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत हम खूबसूरत विचार से करते हैं। साथियों, मेरे अनुभव ये कहते हैं कि जिंदगी में अक्सर कुछ बातें कह कर लगता है चुप रहते तो ही अच्छा था, कुछ बातें सह कर लगता है कुछ सह लेते तो अच्छा था। कहने का मतलब कि हम कभी कभी सोचते हैं कि अगर इन बातों को हम चुपचाप सह लें तो अच्छा है और कह दे तो अच्छा है। आइए इसी खूबसूरत विचार को लिए हम आगे बढ़ते हैं। किसान साथियों, जैसा कि आप जानते ही हैं कि 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान चलाया जा रहा है। कृषि विभाग की तरफ से कृषि विज्ञान केंद्र, कैरी, अन्य विभाग मिलकर इस अभियान को बड़ी तेज़ी से गांव-गांव में चला रहे हैं, किसानों को महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचा रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है साथियों, अगर हम अपनी मिट्टी की सेहत का ख्याल आज नहीं रखेंगे तो आने वाले समय में हमारी फसलें और मुनाफा दोनों ही कमज़ोर हो जाएंगे। इसलिए वैज्ञानिक सलाह अपनाएं, मिट्टी की जांच करवाएं और सही मात्रा में ही खाद का प्रयोग करें। साथियों, इस अभियान के तहत इस कार्यक्रम में किसानों को संतुलित खाद उपयोग, मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, एकीकृत पोषण प्रबंधन, मृदा नमूना संग्रह तकनीक, मौसम आधारित फसल परामर्श और जल संरक्षण उपायों के महत्व के बारे में भी बताया जा रहा है। तकनीकी विशेषज्ञों ने बताया कि अंधाधुंध रासायनिक खादों का प्रयोग भूमि की उर्वरता को नुकसान पहुंचाता है। उन्होंने जोर दिया कि पोषक तत्वों का प्रयोग केवल मृदा परीक्षण सिफारिशों के आधार पर ही किया जाना चाहिए।

0: साथ ही किसानों को विभिन्न सरकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में भी जानकारी दी जा रही है। इस अभियान का हमारे किसान भाई अधिक से अधिक लाभ उठाएं और इस जागरूकता कार्यक्रम में भाग लें। भाइयों, स्वस्थ रहने के लिए योग भी जरूरी है। आइए योग पर भी हम कुछ बातें कर लेते हैं। योग हमारे शरीर को बहुत ही लाभ पहुंचाता है। साथियों, इस बात से आप सहमत भी होंगे, आज हर घर में योग का प्रचलन चल चुका है। साथियों, इसके लाभ भी बहुत होते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य शरीर को लचीला बनाता है और मांसपेशियां मजबूत होती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। इससे मानसिक शांति, तनाव, चिंता और अवसाद दूर होते हैं। यह केंद्रित करने के लिए भी मानसिक स्पष्टता में सुधार करता है। हम आपको ये भी बता दें कि ये बीमारियों से भी बचाव करता है, जैसे मधुमेह हुआ, हृदय रोग हुआ, पाचन संबंधी समस्याओं के नियंत्रण में भी योग जो है काफ़ी मददगार साबित हुआ है। साथियों, योग को दिनचर्या में शामिल करने से जीवन ऊर्जावान, रोग मुक्त और आनंदित बनता है। साथियों, योग पारंपरिक रूप से जीवात्मा का परमात्मा से मिलन और मन और शरीर के बीच पूर्ण सामंजस्य स्थापित करने की एक प्रक्रिया ही है और योग हर किसी को करना चाहिए, चाहे बच्चे हो या बूढ़े। इससे हमारे खुद के शरीर को ही फायदा पहुँचता है। साथियों, ये तो थी कुछ बातें योग के बारे में।
1: प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिलेगा।

0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना से लघु सीमांत किसानों का भविष्य होगा सुरक्षित
1: और 60 वर्ष की आयु से 3000 रुपए मासिक पेंशन होगी सुनिश्चित।
0: 55 रुपए से 200 रुपए की मासिक किश्त देकर प्रवेश कर सकते हैं 18 से 40 वर्ष तक के किसान।
1: इस अंशदायक योजना में सरकार देगी बराबर का योगदान।
0: सभी किसान भाई बहन इस योजना के लाभ के लिए जन सेवा केंद्र में जाएं
1: और अपना निःशुल्क नामांकन कराएं।
0: प्रधानमंत्री किसान मान धन योजना, अन्नदाता के परिश्रम को संबल, पेंशन से सुरक्षित उनका कर।
2: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: किसान साथियों, आइए आज का प्रश्न हम आपसे पूछ लेते हैं। हमारा आज का प्रश्न है, पशु आहार में चारे और दाने का क्या अनुपात होना चाहिए, ये आपको बताना है। साथियों, प्रश्न के उत्तर सोचते रहें, कार्यक्रम में हमारे साथ बने रहें। जैसा कि अभी हमने आपसे प्रश्न ही पूछा पशु आहार के बारे में, इस प्रश्न का उत्तर आपको अब जो बातचीत हम आपको सुनवाएंगे उससे शायद मिल जाएगा। साथियों, आज हम आपकी मुलाकात एक पशुपालक के साथ करवाने जा रहे हैं, डॉलीगंज शिव कॉलोनी के रहने वाले श्री सीताराम यादव जी। आइए इनसे मुलाकात करते हैं। सीताराम यादव जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत करते हैं।
4: जी नमस्ते मैडम, आपके सभी श्रोताओं को भी नमस्कार।
3: सीताराम यादव जी, हम कार्यक्रम की शुरुआत में यही जानना चाहेंगे कि पशुपालन की ओर आपका रुझान कैसे आया।
4: सबसे पहले मैडम जी, बचपन से ही हमने पशुपालन किया है, तो इस वजह से जो है हमारा लगाव बचपन से ही है। और चूंकि यहाँ पोर्ट ब्लेयर में हमने डॉलीगंज सीयू कॉलोनी में अपना 200 स्क्वायर जगह लिया, जिसपे जो है हमने डिसाइड किया कि पशुपालन जो है किया जाए, क्योंकि अभी जो नई पीढ़ी है वो पशुपालन से काफ़ी दूर है। मतलब वो इतना मेहनत का काम है कि इसमें लोग जो है आना नहीं चाहते, सभी जो है आराम से पैसा कमाना चाहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो पशु प्राणी है उन वो जो है बेसहारा हो जाते हैं। अगर ऐसे ही हमारे जैसे युवा अगर पशुपालन में आए तो एक तरह से जो है वो बेरोजगारी भी कम हो सकती है, क्योंकि ये अपना जो है अपने मन से करने वाला काम है और इसको अच्छे मन से तन से किया जाए तो ये लाभदायक है, इसमें कोई हानि नहीं है।
3: ठीक, और कोई शर्म की बात नहीं है, क्योंकि ये एक अच्छा व्यवसाय है, अगर इसे जोड़ करके वो अपना व्यवसाय कर सकते हैं।
4: जी नहीं, मैं इस पे बोलना चाहूँगा कि ये तो एक तरह से सेवा का कार्य है।
3: जी जी,
4: अभी हम लोग जो है मंदिर में जाते हैं, आरती पूजा करते हैं और घर पे आके फिर जो है वही जो रोज का दिनचर्या है उससे अलग हो नहीं पाते हैं।
3: जी,
4: लेकिन मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताऊँगा कि जब से हमने ये करीबन 5 साल पहले पशुपालन शुरू किया था, करीबन 2020 में
3: जी,
4: तो उस समय मैं भी जो है मतलब नॉन वेजिटेरियन

0: मतलब सर्वाहारी था, सब कुछ खाते थे।
1: जी जी
0: लेकिन जब से हमने गौ माता को अपने यहाँ पे रखा है, उनकी शरण में जब से मैं आया हूँ, तब से जो है हमारे अंदर एक बहुत ही अच्छा बदलाव आया कि हमने जो है नॉन वेज से जो है हमारा पूरा ही नाता टूट गया।
1: जी
0: और ये अपने मन से हुआ, मतलब किसी के दबाव से, किसी के प्रेशर से नहीं हुआ। और जो है धार्मिक जीवन जो है गौ माता के साथ रह के जो है हम लोग जो है सुबह और शाम जीते हैं, तो हमें तो बहुत अच्छा लगता है। हम चाहेंगे कि नए युवा लोग इसमें ज़रूर जुड़े, ये काफ़ी जो है लाभदायक है, चौतरफा विकास का ये साधन है, संसाधन
1: बिल्कुल,
0: है।
1: बहुत ही अच्छा संदेश आपने दिया और अपनी जो पर्सनल आपकी जो लाइफ है उसके बारे में आपने बताया। सीताराम यादव जी, अब हम ये जानना चाहेंगे कितने पशु हैं आपके पास?
0: हमारे पास गाय है, हमारे पास
1: जी
0: तो अभी गायों की संख्या सब छोटे बड़े बच्चे मिलके जो है 18 है,
1: जी
0: जिसमें 10 बड़ी गायें हैं और बाकी जो है कोई 2 साल के बच्चे हैं, कोई 3 साल के बच्चे हैं,
1: जी
0: तो टोटल संख्या जो है 18 भी है हमारे पास।
1: 18 गाय भी कोई कम नहीं होता है
0: जी।
1: इसका जो है देखभाल करना, और इनका जो रख रखाव है, इनका खान पान है, सबकी ओर आपको ध्यान रखना होता होगा।
0: जरूर जरूर जरूर।
1: तो किस तरह से आप देखते हैं?
0: ये खान पान जो है, देख हम जैसे मनुष्यों का जो दिनचर्या है सेम गौ माता का या जो भी प्राणी है
1: जी
0: भोजन करने वाले, उनका भी दिनचर्या सेम हमारे जैसा है। जब जैसे हमको सुबह में भूख लगती है, प्यास लगती है, सेम इनका भी तौर तरीका है कि सुबह इनको खाना देते हैं, पानी पिलाते हैं, दाना पिलाते हैं, उसके बाद दोपहर में सिर्फ पानी पिला देते हैं और शाम को फिर इनको खाना देते हैं। और दिन में जो है 2 से 3 घंटे के लिए उनको घूमने के लिए छोड़ते हैं, क्योंकि जगह तो है नहीं, लेकिन फिर भी जो है आसपास में थोड़ा सा जगह है उसमें वो लोग जाते हैं,
1: यानी
0: ठीक
1: चर
0: है,
1: के आ जाते हैं।
0: चर के आते हैं, 2 से 3 घंटे चरते हैं, और बाकी सुबह शाम जो है हम अपना जो घास है,
1: अपने
0: दाना है, वो दे
1: वो
0: के
1: ला
0: उनका
1: करके।
0: पेट पूरा तो नहीं भर पाते हैं, लेकिन उनको जीने लायक जो है,
1: जी जी
0: हाँ, ये कर पाते हैं।
1: रहने की कैसी व्यवस्था कर रखी है
0: और
1: आपने?
0: रहने की व्यवस्था जो है वो जैसे कि मैंने आपको बताया 200 स्क्वायर हमारे पास जगह है, जिसमें 150 स्क्वायर में हमने एक शेड बनाया है,
1: जी
0: जिसमें हमारी गौ माताएं रहती हैं, और जो साफ सफाई का व्यवस्था है उसके लिए हमने एक कुआं बनवाया है,
1: जी
0: जिससे वो पानी का जो ज़रूरत है वो पूरा हो जाता है, और उससे सुबह शाम जो है सफाई फर्श की होती है, ताकि गंदगी अगर कम रहेगी तो पशु जो है स्वस्थ रहेंगे, बीमार नहीं
1: जी
0: पड़ेंगे, तो इसका ध्यान तो हम रखते हैं।
1: जब पशु बीमार होते हैं तो
0: जी
1: आप घर में ही इसका इलाज करते हैं या फिर वेटनरी हॉस्पिटल लेकर जाते हैं?
0: नहीं, पशु जैसे हमारे नॉलेज में अगर कुछ दवा रहता है तो वो करते हैं, जैसे कि आयुर्वेदिक,
1: जी
0: जैसे घर के किचन से जो मिल जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे कि पशुओं का इलाज हो जाता है, तो वो करते हैं। लेकिन जो क्रिटिकल जो इमरजेंसी केसेस होती हैं, जैसे कि वो कोई किसी गाय को थनेला हो गया
1: जी
0: या और भी तरह का बुखार हो गया, तो इन सब चीज़ों के लिए जो है हमारे यहाँ पे डॉलीगंज में पॉली क्लिनिक है, वहाँ पे हम जाते हैं डॉक्टर साहब से विचार विमर्श करके, और उन वहाँ से वेटनरी से लोग आते हैं, इंजेक्शन वगैरह देते हैं, तो बिना वेटनरियन के सपोर्ट का तो ये संभव नहीं है
1: संभव
0: कि
1: नहीं है।
0: पशुपालन सफल
1: जी
0: हो,
1: जी जी
0: ठीक है। लेकिन इसमें किसानों को भी जो है जो छोटी मोटी जो चीज़ें हैं उनका ज्ञान होना ज़रूरी है, अगर इस पे ट्रेनिंग अगर वेटनरी डिपार्टमेंट दे तो और भी जागरूक किसान बन सकते हैं।
1: समय समय पर ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम की आपने बात की, तो
0: जी
1: समय समय पर तो ट्रेनिंग दिया जाता है,
0: जी
1: वो उसमें आप भाग लेते हैं?
0: अभी तक हमने भाग नहीं लिया है, लेकिन हमारा प्रयास है कि मैं पूरी तरह से जान पाऊँ कि
1: जी
0: आखिर पशुपालन है क्या, और बचाव के बारे में ज़रूर जानना चाहूँगा कि लक्षणों से जो है हम पता कर सके कि आखिर ये क्या बीमारी है,
1: जी
0: और उसका इलाज जो है जल्द से जल्द किया जा सके, पशु को ठीक किया जा
1: जो
0: सके।
1: पशुओं को टीका दिया जाता है, टीकाकरण,
0: जी
1: वो आप जो पशु है उनका ध्यान रखते हैं कि कब कब किसको किस समय पर दिया जाना
0: हाँ
1: चाहिए?
0: जी, हाँ जी, उसके लिए हमने एक रजिस्टर मेंटेन करते हैं,
1: जी
0: जैसे कि पशुओं के डिवर्मिंग के दवा, जैसे पेट के कीड़े मारने की जो दवा होती है उसको हर 2 महीने 3 महीने में देने का एक प्रावधान है वेटनरी की तरफ से, तो उसको जो है ला के हम बराबर देते हैं, और डायरी में मेंटेन करते हैं कि कब कितने तारीख को कीड़े की दवाई दी, किसको दी और कौन सी दवा दी,
1: जी
0: ताकि वो हर जैसे कि साल में 12 महीने होते हैं तो 3-3 महीने में 3 तरह की दवाएं देने से वो ज़्यादा असरदार रहता है, जैसे कि वेटनेरियन बताते हैं।
1: जी जी
0: एक ही दवा को रिपीट करने से वो जो पेट के कीड़े हैं वो भी समझ जाते हैं कि ये जो है दूर भागने वाली चीज़ है, खाने वाली चीज़ नहीं है, तो ऐसा उनके
1: तो फिर
0: अंदर
1: पशु लेते
0: जी
1: नहीं है।
0: लेते नहीं है, पशु खा लेते हैं लेकिन पेट में जो है वो दवा
1: असर
0: का
1: नहीं
0: असर
1: होता।
0: नहीं होता है,
1: अच्छा
0: चूँकि वो जो कीटाणु है या जो बैक्टीरिया है वो दूर रह जाता है।

0: उसको नज़दीक पहुंचता नहीं है
1: अच्छा
0: जी।
1: यादव जी, अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जैसे 18 पशु आपके पास है, जो इनके इनसे जो दूध प्राप्त होता है
0: जी
1: वो आप किस तरह से बेचते हैं,
0: जी
1: क्या
0: दूध,
1: भाव दूध अभी चल रहा
0: हाँ
1: है?
0: दूध जो है अभी 100 कहीं 120 रुपया भी है, चूँकि अभी कुछ 2 महीने से जैसे ये डीजल पेट्रोल का जो दाम बढ़ा है
1: जी
0: उस वजह से जो है पशुओं का जो चारा मतलब ये दाना है जो हम लोग मिलों से खरीद के लाते हैं
1: जी
0: तो उसका जो है भाव पहले 1400 रुपया था, 1300 रुपया था, अभी जो है 1800 रुपया, 1900 रुपया हो गया है। तो उस वजह से जो है हम लोग अभी 120 रुपया भी कहीं सेल हो रहा है, लेकिन जो नॉर्मली है वो 100 रुपये लीटर के हिसाब से गाय का दूध अभी जाता है। और ये भी जो है पहुंचा के देना होता है, क्योंकि मैं इस पे आपके निवेदन करना चाहूँगा लोगों से कि दूध जो है सही तभी मिलेगा जब लोग रेट को बार्गेनिंग नहीं करेंगे, तो
1: जी
0: क्योंकि सही चीज़ के लिए तो थोड़ा अच्छा पैसा खर्चा करना पड़ता ही है। जैसे हम लोग अपने ऊपर ही ले ले, अगर ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं तो उसके 1000-2000 रुपये दाम होते हैं,
1: जी
0: और वही जो है कपड़े 200-500 के भी मिलते हैं। तो सेम उसी तरह है, अगर रेट देखेंगे तो सामान अच्छा नहीं मिलेगा, और रेट नहीं देखेंगे तो क्वालिटी अच्छा मिलेगा, क्वालिटी है तो रेट भी ज़्यादा
1: कुल
0: है।
1: कितना दूध अब आपके वहां से हो जाता
0: हमारे
1: होगा?
0: यहाँ पे अभी लगभग 5 गायें अभी दूध देती हैं, दोनों टाइम मिलके एक 25 से 28 लीटर के आसपास होता
1: तो
0: है।
1: आप घरों से ही बेच देते हैं?
0: तो घरों से नहीं बेचता हूँ मैं, जो है लेके जाता हूँ हमारे जैसे कि लोगों के साथ टाई अप है कि
1: जी,
0: हमें 1 लीटर
1: जहाँ
0: चाहिए,
1: जहाँ देना
0: उनको
1: है।
0: 2 लीटर चाहिए,
1: नहीं, कुछ
0: तो
1: लोग
0: इस
1: जो
0: हिसाब से।
1: मतलब एक साथ कुछ लोग दे देते हैं
0: हाँ
1: ना,
0: बल्क
1: तो
0: में
1: हाँ जी, उस
0: जी,
1: तरह से आप नहीं करते?
0: उस तरह से तो नहीं करते, चूँकि हमारे यहाँ वो ये जो 25 से 28 लीटर है ये भी कम पड़ जाता है,
1: अच्छा
0: चूँकि हमारे उपभोक्ता जो हैं, जो दूध लेने वाले लोग हैं, जो ग्राहक हैं,
1: जी
0: उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है, मैं पूरा नहीं कर पाता हूँ, चूँकि यहाँ की गायों में जो है दूध देने की क्षमता बहुत ज़्यादा है नहीं, 3 लीटर ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 लीटर, इससे ज़्यादा है नहीं, तो इसलिए जो है सबकी ज़रूरत को तो पूरा नहीं कर पाता हूँ, इसलिए बचता नहीं है दूध।
1: चलिए, ये तो रही बात कुल आपका कितना दूध उत्पादन हो जाता है और आप उससे कैसे अपने गुजारा कर लेते हैं।
0: जी
1: तो आपका जो परिवार है
0: हाँ जी
1: इसे बड़े आराम से चल जाता है?
0: चल जाता है, बहुत अच्छे से चलता है, लेकिन अभी ये अगर इसमें और भी अगर पशुपालन विभाग सपोर्ट करे
1: जी
0: अच्छे नस्ल की, जो हमारे देसी ब्रीड जो है इसी पे अगर वेटनरी डिपार्टमेंट अगर काम करे, अच्छे ब्रीड लेके आए, मतलब जिसे मतलब उनकी जो है गुणवत्ता को बढ़ाए, पशुओं की गुणवत्ता को अगर बढ़ा दें तो मुझे लगता है कि पशुपालन जो है सबसे अच्छा जरिया है चौतरफा विकास के लिए।
1: बिल्कुल
0: मतलब वो क्या होता है कि तन मन धन सबके उन्नति के लिए, मुझे लगता है कि पशुपालन ही एक ऐसा जरिया है जिससे कि हम तन मन और धन तीनों की उन्नति कर सकते हैं।
1: यादव जी, देखिए मौसम में बदलाव हो रहा है, बरसात का मौसम आ रहा है, तो इन मौसम में जो है खास तौर पर पशुओं की देखभाल करनी होती है,
0: जी
1: तो उस समय आप क्या खास बातें ध्यान में रखते हैं?
0: अभी ये इस समय जो है मैडम जी, अभी क्या है कि अभी कुछ दिन पहले ही हमारी ये गाय बीमार हो गई थी, वो काफ़ी दिन से मतलब उसके पेट में आभार है, जैसे पेट में गैस बनने की समस्या थी, तो करीबन 10 से 15 दिन तक उसका इलाज चला, बहुत ही मुश्किल से अभी 4 से 5 दिन से जो है वो अपने नॉर्मल रूटीन में आई है। तो ये जैसे ही मौसम का बदलाव होता है उसमें पशुओं का बीमार होना, स्ट्रेस में आना, ये आम बात है, और जिस पशु का जो है इम्यूनिटी कमज़ोर है वो जल्दी जो है बीमार हो जाती है। तो इसके लिए तो अभी मेन क्या होता है कि खान पान बाहर में जब बुज़ुर्ग लोग भी बताते हैं, चाहे हम लोग वेटनरियन से भी सुनते हैं कि जो बारिश की पहली घास वगैरह होती है वो काफ़ी उसमें जो है बैक्टीरियल होता है,
1: जी,
0: तो वो अगर खा लेते हैं और पानी दूषित पी लेने से क्या है उनका तबीयत ख़राब हो जाता है। तो ये जो समस्या है हमारे सामने तो आया था, हमने काफ़ी 10 से 15 दिन जो है इस पे मेहनत किया, वेटनरियन डॉक्टर लोग भी आए मेहनत किए, तो उसके वजह से जो हमारी गाय ठीक हो गई। लेकिन अब साफ़ सफाई का इस समय में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है, और इस समय में मच्छर और मक्खी जानवरों को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो इससे बचाव के अगर कुछ संसाधन हो
1: उसके बचाव के लिए आप कुछ लगाते होंगे, तेल
0: तो
1: वगैरह कुछ?
0: जी उसके बचाव के लिए हम लोग नीम तेल, और ये जो हम लोगों के गाड़ी से जो पुराना जो काला तेल जिसको बोलते हैं ना इंजन ऑयल जो निकाला जाता है, गेयर
1: जी,
0: ऑयल इंजन ऑयल, तो उसको थोड़ा थोड़ा सा शरीर में लगाते हैं तो मक्खी जो है उसके स्मेल से कम आती
1: कम
0: है।
1: आती है।
0: और हमारे यहाँ पे हमने जो है एक बड़ा नेट भी जो है कोलकाता से मंगाया था, करीबन 10 मीटर बाय 10 मीटर का, उसको पूरे शेड में लगा दिया है, तो उससे भी काफ़ी ज़्यादा बचाव हो जाता है, और मक्खियाँ तो घुस ही जाती हैं कहीं ना कहीं से, अब हर आदमी को अपने खाने का तलाश है
1: जी,
0: तो इसलिए जो भी पहुँच जाती है ना किसी किसी रास्ते से, लेकिन कम पहुँच

0: बचती हैं, तो थोड़ा बचाव हो जाता है।
1: देखिए जैसा कि आपने कहा ना कि बरसात के मौसम में जो उससे पहले घास में कुछ बैक्टीरिया आ जाते
0: जी
1: हैं, कुछ उनसे भी जो है पशु बीमार हो जाते हैं।
0: जी
1: जब इस बारिश के मौसम में पशु बाहर चरते हैं ना, तो हमने कई बार देखा है कि पशु जो है कागज़ पन्ने इत्यादि भी खा लेते हैं,
0: जी
1: तो उससे उनके पेट में भी समस्याएं हो सकती है।
0: ये चूंकि अंडमान निकोबार में सबसे बड़ा समस्या यही है, पशु का जो मानक एक आयु है कि 18 से 20 साल वो जीवित रहता है,
1: जी
0: उस मानक को मुझे लगता है कि यहाँ का पशु तो आधा जीवन भी नहीं जी पाता है। और सबसे बड़ा उसका कारण वो पेट का भूख है, और भूख के चलते वो जो है जो मिल जाता, प्लास्टिक पन्नी मिल जाता या
1: जी
0: पेपर कागज़ मिल जाता, वो सब खा जाते हैं। इसमें जो है मैं अंडमान निकोबार के जनता का भी ध्यान आकर्षण करना चाहूँगा कि जब वो अपना जो वेस्टेज जब कूड़ेदान पे ले जाते हैं फेंकने के लिए, तो वो प्लास्टिक पन्नी में जो काला पन्नी चूंकि बैन हो चुका है लेकिन लोगों को मिल कहाँ से जाता है नहीं पता, उसी में बंद करके और जो है वो फेंकते हैं। तो पशु क्या करता है, उसको भूख के कारण जो है उसको बहुत पहले तो वो प्रयास करता है कि उसको खोल के खाए,
1: जी
0: लेकिन वो नहीं खुलने के वजह से उसके अंदर जो भी है उसके लिए हानिकारक पदार्थ भी रहता है वो सब पन्नी समेत खा लेता है। तो ऐसा होता है कि कुछ दिन 2 साल 4 साल बाद में पशु के पेट में वो बीमारी, मतलब वो पन्नी जमा हो
1: धीरे
0: जाता है,
1: धीरे
0: वो
1: जी
0: बाहर निकल नहीं पाता है, पेट से बाहर होता नहीं है, या तो लैट्रिन के रास्ते बाहर नहीं हो पाता, या बाहर से सामने से भी ज्वाली करके कुछ कुछ पशु जो है बाहर कर देते हैं, और नहीं होने के कारण से पेट में जमा हो जाता है, तो जो है वो डायरिया शुरू हो जाता है और वो पशु का जो है मृत्यु हो जाता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा चिंता का विषय है। अगर पशुओं की भूख पे अगर सरकार ध्यान दे, प्रशासन ध्यान दे, तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि सबसे बड़ा ज़रूरत इंसान हो या पशु हो उनके लिए भूख ही है, और भूख का अगर निवारण हो तो ज़्यादा अच्छा है।
1: यादव जी, कौन सी बीमारी है जो हमारे इस द्वीप समूह में गायों में अधिक होती है?
0: यहाँ पे चूंकि हमारे सामने जो बीमारी आई है मस्टाइटिस थन की एक बीमारी है, जो दुधारू पशु है या जो गाभिन पशु है वो दोनों में होता है। तो ये थनैला, जिसको हिंदी में थनैला बोलते हैं,
1: जी
0: अंग्रेजी में
1: जी
0: मस्टाइटिस बोलते हैं, तो ये जो है सबसे बड़ी बीमारी है। चूंकि पशुओं का बैठने का जो जगह है उतना अच्छा नहीं, सब फर्श बना के रखे हैं, तो दबाव के कारण से भी होता है, और पशुओं में जो विटामिन्स वगैरह की कमी होती है उससे भी होता है। तो ये बीमारी जो है काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है पशुओं में,
1: हमारे इस
0: थनों
1: द्वीप
0: से।
1: समूह में
0: हाँ, और दूसरी जो है वो प्लास्टिक पन्नी के खा लेने से डायरिया वगैरह जो होता है पशु, ये दो चीज़ें ही मुख्य बीमारियों में आता है, बाकी तो बुखार सर्दी तो ये सब में होते रहता
1: होता
0: है,
1: रहता
0: कभी
1: है।
0: कभी होता है।
1: यादव जी, एक पशुपालक होने के नाते आप पशुपालन विभाग से
0: जी
1: कोई मांग करना चाहेंगे, आपकी कोई बातें हो तो?
0: जी मैं पशुपालन विभाग से ज़रूर मांग करना चाहूँगा। पशुपालन विभाग अगर ग्रेजिंग लैंड, पशुओं के चरने के लिए हर वार्ड में ग्रेजिंग लैंड होता है जैसा कि हमने सुना है, मुझे पता नहीं है, तो इस ग्रेजिंग लैंड को चिन्हित करके प्रशासन से अगर आवंटित करा ले, जैसे ये म्यूनसिपल के लोग जो है गायों को पकड़ के और जो उनका एक कैद खाना है
1: जी,
0: उसमें ले जा के बंद कर देते हैं, और किसानों से जो है 2,500 रुपये वसूल के और फिर उनको जाने देते हैं। म्यूनसिपल के अधिकारियों से निवेदन करना चाहूँगा कि वो अगर 8 से 10 लोगों को एक पशु को पकड़ने के लिए और एक गाड़ी को लगा देते हैं, तो जितना खर्चा वो पकड़ने में करते हैं ज़बरदस्ती, अब वो एक तरह से उनके मन के हिसाब से तो नहीं हुआ, ज़बरदस्ती हुआ, तो इस ज़बरदस्ती को अगर ख़त्म करने के लिए मेरे मन में एक विचार था कि क्यों ना ग्रेजिंग लैंड को चिन्हित कर दिया जाए
1: जी
0: और वहाँ पे ग्रीन फोडर मतलब पशुओं के खाने का जो चारा है उसको उगाया जाए, जितने लोगों को गायों को पकड़ के जेल में डालने की व्यवस्था है उन्हीं लोगों को उस काम करने के लिए लगा दिया जाए
1: अच्छा,
0: म्यूनसिपल के तरफ से वेटनरी के सपोर्ट से। तो मुझे लगता है कि ये जो रोड पे आने वाली जो समस्या है गायों का वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा।
1: यहाँ पर हम आपको रोकना चाहेंगे। ये एक
0: जी
1: समस्या भी हो सकती है, जैसा आपने कहा ना कि लेके इसको कांजी हाउस में डाल दिया जाता
0: जी
1: है,
0: जी
1: ये सड़कों पे गाय आ जाती है तो एक्सीडेंट हो जाते हैं,
0: जी जी
1: तो किसी कारणवश ही सरकार ये कदम उठा रही होगी।
0: हाँ नहीं, लेकिन इसका
1: जी, उसका परमानेंट
0: परमानेंट
1: जो
0: जो निदान
1: निदान
0: है
1: है। जी
0: उस
1: जी
0: पे ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा मैं, जो भी इसके जिम्मेदार व्यक्ति हैं, जो भी अधिकारी हैं, उनका ध्यान आकर्षण मैं करना चाहूँगा कि परमानेंट से। देखिए क्या होता है कि एक आदमी को, मैं एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूँ, किसी किसी भी एक चीज़ को, किसी भी एक आदमी को या जानवर को किसी डंडे से मार के भागाना और उसको अपने मन से जाने देना,
1: जी
0: ये
1: जी
0: दोनों चीज़ में ज़मीन और आसमान का
1: अब
0: अंतर है।
1: फर्क है।
0: तो मैं ये चाहता हूँ कि जानवर

0: पर जो है अपने मन से वो रास्ता छोड़े, मतलब रोड पे जाना अपने मन से बंद करे। उसके लिए दो रास्ते मेरे मन में हैं, या तो चारागाह जो है मतलब उसको विकसित कर दिया जाए, जहाँ पे भी हो हर वार्ड में होना चाहिए। मुझे लगता है कि हर वार्ड में दो चार गाय, 10 गाय, 10 लोग रखते होंगे, 10 पशुपालक रखते होंगे।
1: कहीं सीपी घाट में कहीं एक जगह
0: जी
1: चारागाह बनाया गया
0: नहीं,
1: है।
0: वो बनाया गया है मैडम जी, मैंने वहाँ गया है, मैं गया हूँ करीबन मुझे लगता है कि 3 से 4 साल हो गया। लेकिन वहाँ पे आप जाएंगे तो वहाँ पे 2 गायों के खाने के लिए भी खाना, जगह तो बहुत है,
1: जी
0: जगह मुझे लगता है कि 3 से 4 हज़ार स्क्वायर मीटर है, मैं वहाँ पे गया हूँ। लेकिन वहाँ पे जो है सिर्फ नाम का है वो, वहाँ पे कोई काम नहीं है, ना वेटनरी की तरफ से हुआ है और ना वहाँ के जो पंचायत के लोग हैं वो भी डेवलप कर पाए, जगह बहुत है। मैं जाके एक बार बात भी किया था उनसे, तो वो कर रहे थे कि हमें ट्रैक्टर नहीं मिल पा रहा है खेत को जुताई करने के लिए, ग्रीन फोडर नहीं है। वहाँ पे जितना जगह है अगर वहीं पे लगा दिया जाए, और अगर वो पैसे से भी 8 से 10 रुपया किलो अगर बेचे ग्रीन फोडर, तो खुशी खुशी पशुपालक जो है लेके आ जाएंगे। और ये मांग भी करते हैं लोग कि भाई खाली खाना, मैं तो ये वेटनरी डिपार्टमेंट से यही कहता हूँ कि दवा की ज़रूरत नहीं है, भोजन की ज़रूरत है। अगर आप
1: जी
0: भोजन पूरा कर दें तो प्लास्टिक पनी नहीं खाएगी ना बीमारी होगा।
1: बिल्कुल यादव जी, कुल मिलाकर हम यही कह सकते हैं कि समस्या पशुपालक के लिए भी है,
0: जी
1: कुछ समस्याएं सरकार के पास भी है,
0: जी
1: ज़रूरत है मिलकर कोशिश करने की, उस समस्या का हल ढूंढने की।
0: जी
1: हम उम्मीद करती हैं कि आने वाले समय में आपकी इन समस्याओं का समाधान हो जाएगा,
0: जी
1: और आज आप कार्यक्रम में आए इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद, आपके श्रोताओं को भी धन्यवाद, नमस्कार।
1: साथियों, अभी आपने पशुपालक श्री सीताराम यादव के साथ की गई ये बातचीत सुन रहे थे। बड़े ही विस्तार से उन्होंने बताया किस तरह से वे पशुपालन करते हैं और पशु का कितना ध्यान रखते हैं, और पशुपालन विभाग से भी उन्होंने कुछ बातों की गुहार लगाई। उम्मीद करते हैं कि पशुपालन करने वाले किसान भाइयों की ये मांगें पूरी हो जाएंगी।

किसान साथियों, अब कार्यक्रम में वक्त हो गया है आज पूछे गए प्रश्न के सही उत्तर बताने का। हमने आपसे पूछा था, पशु आहार में चारे और दाने का क्या अनुपात होना चाहिए? किसान भाइयों, इस प्रश्न का सही उत्तर है, पशु आहार में 3 भाग चारे के साथ 1 भाग दाना होना चाहिए। उम्मीद करते हैं किसान भाइयों ने अपने उत्तर की जाँच कर ली होगी। साथियों, इसके साथ ही हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त हो चला है। कल हम आपके बीच फिर उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।

0: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे भारत सरकार का कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्रालय।
1: अभी किसान भाई अपना कार्यक्रम सुन रहे थे किसान वाणी। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 6:30 हुए हैं। अब सुनिए योगेंद्र टिकू द्वारा लिखा नाटक मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था।
2: मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में आज प्रस्तुत है श्री योगेंद्र टिक्कू का लिखा नाटक। तो सुनिए नाटक मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था।

उफ, कितना शोर है, कितना क्रंदन। कहीं मैं किसी और धरा पर तो नहीं आ गया? नहीं नहीं, है तो मेरा भारतवर्ष ही, पर इतना शोर है। वैसे शहर सुंदर बन गया है। वैसे बड़ी बड़ी इमारतें और सजी धजी दुल्हनों की तरह चमकती दुकानें देखकर अच्छा लग रहा है। लगता है मेरे सपनों का भारतवर्ष बहुत तरक्की कर चुका है। अभी तो बहुत कुछ है देखने को यहाँ, बिरला मंदिर, यमुना के घाट। अपनी यादों की पोटली खोलकर सारी स्मृतियाँ इन्हीं सड़कों पर बिखेर दूंगा। मैं जानता हूँ भारत के लोग मुझे बहुत

0: चमत्कार करते हैं, बहुत सम्मान देते हैं। वो मुझे पहचानते ही हाथों हाथ ले लेंगे।
1: ए बोले बाबा, जरा देख कर चलो। वैसे किन विचारों में खोए हुए हो तुम? है धक्का मार दिया मुझे। अभी गिर पड़ते और किसी मोटर वोटर के नीचे आ जाते तो मुझे खामखा अस्पताल और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने पड़ते, और फिर तुम्हारे चक्कर में मुझे कॉलेज के लिए देर हो जाती।
0: बेटा भूल हो गई।
1: हाँ, भूल हो गई,
0: पर शायद तुमने मुझे पहचाना नहीं।
1: ए भाई, मेरे पास इतना समय नहीं कि हर आने जाने वाले को पहचानता फिरूं। वैसे तुम्हारी शक्ल कुछ जानी पहचानी तो लग रही है। पर नहीं नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जान पहचान बढ़ाने के चक्कर में फंसा तो पहला पीरियड तो मिस हो ही जाएगा, इसलिए बाय, चलता हूं।
0: न प्रणाम न नमस्कार, बाय। अंग्रेजों को तो देश से खदेड़ दिया, पर अंग्रेजी ने लगता है मजबूती से जड़ पकड़ ली है। चलता हूँ। हाँ, पहले किसी से रास्ता पूछकर जमुना जाकर वहाँ स्नान करता हूँ। अरे भारत की यही तो विशेषता है कि नदियाँ भी हमारी संस्कृति का विशेष अंग हैं। अब पूछूं? ए भाई, जरा सुनिए।
2: जी कहिए।
0: वो दरअसल ये रास्ते पहचान में नहीं आ रहे हैं।
2: तो मैं क्या करूं? देश इतनी तरक्की कर रहा है कि आप सुबह अपने घर से निकलें तो शाम को बहुत संभव है कि अपने घर का रास्ता ही ना पहचान पाए।
0: अच्छा मजाक कर लेते हो भाई।
2: मजाक करने का समय नहीं है मेरे पास, जल्दी बताओ मुझे रोका क्यों? मुझे ऑफिस पहुंचना है।
0: ओ, तो आपके पास भी वही अभाव है समय का। तो भाई जल्दी से बता दो, जमुना का रास्ता किधर से है? नहाने का मन हो रहा है।
2: तुम भी मजाक अच्छा ही कर लेते हो।
0: क्यों भाई, इसमें हंसने की क्या बात है?
2: शायद परदेसी हो। भैया, जमुना में नहाने लायक पानी कहाँ रह गया है?
0: क्या मतलब, पानी नहीं है?
2: हाँ, एक गंदे पानी का नाला मात्र रह गई जमुना। डुबकी मारोगे तो कीचड़ के सिवा कुछ हाथ ना लगेगा।
0: अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हो? इतनी बड़ी यमुना, कीचड़ और गंदगी भरा नाला मात्र रह गई है।
2: आपको क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ?
0: राम राम, हे राम, झूठ? नहीं नहीं, मुझे झूठ अत्यंत अप्रिय है। मैं तो स्वयं सत्य का पुजारी हूँ, मैं क्यों भला एक अन्य प्राणी पर असत्य का आरोप लगाऊं?
2: हे बाबा, आप क्या कह रहे हो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। वैसे हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ आ भी रहा है। सत्य के पुजारी हो, तभी शरीर पर केवल एक धोती है और हाथ में एक डंडा है। घर वर भी है या सत्य की आहुति में वो भी भस्म कर दिया है?
0: पूरा भारतवर्ष मेरा ही तो है, ये धरती मेरी माता है, यहाँ के लोग मेरे बच्चे हैं।
2: समझ गया समझ गया। मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मेरा बेटा तुम्हारा पोता है। लाल किला तुम्हारा अपना घर है और कुतुब मीनार पर चढ़कर तुम रोज तारे गिनते हो, है ना? अच्छा मैं चलता हूँ।
0: अरे सुनो तो, ये तुम क्या?
2: बस बस बस बस, वो जो ऑटो रिक्शा वाला है ना, तुम्हारा भाई है, उसे कह दो वो तुम्हें जमुना स्नान के लिए ले जाएगा। नमस्ते।
0: चला गया। मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया? अब मैं तो सदा से ही सत्य का पुजारी रहा हूँ, सत्य ही धर्म है, केवल यही समझाता रहा मैं विश्व को, तथा अपने जीवन में भी इसी सत्य का ही अनुसरण करता रहा। फिर ये मेरा सत्य समझ क्यों नहीं पाया? चला गया।

0: Sí, oh, será esta puesta.
1: ए बाबा कहो काले चलना है, मेरा ऑटो खाली है, वो आदमी कह रहा था ना, इसीलिए आया हूँ।
0: भैया बस यमुना का रास्ता बता दो, मैं पैदल ही चला जाऊंगा, बस वो स्नान करना चाहता हूँ।
1: अरे चल कर कैसे जाओगे, वो तो बहुत दूर है।
0: अरे बेटा मुझे तो चलने की आदत है, मैंने डांडी तक की यात्रा पैदल ही की थी, और हाँ अब भी तुमसे तेज चल सकता हूँ।
1: बाबा पता नहीं तुम डांडी कब गए होगे, उस समय ऑटो रिक्शा नहीं चलते होंगे। आओ बैठ जाओ, सस्ते में ले चलूंगा।
0: वैसे हाँ इस सवारी का भी आनंद लेना तो चाहिए, समय के साथ परिवर्तन आवश्यक है।
1: तो फिर आइए बैठ जाइए।
0: धन्यवाद, बैठ जाता।
1: बस बाबा झट से पहुंचा दूंगा, सिर्फ 100 रुपए लगेंगे।
0: 100 रुपए? आप पैसे तो नहीं है मेरे पास। अब भाई वैसे भी ये देखो तुम्हारे ऑटो में तो ये मीटर लगा है, उसके हिसाब से भी क्या 100 रुपए लगेंगे?
1: बाबा मीटर खराब है, जो बता रहे हैं सही बता रहे हैं, 100 ना हो तो 90 रुपए दे देना।
0: अरे अपना नुकसान क्यों कर रहे हो भाई, मगर मुझे लगता है तुम्हें अपनी गाड़ी का मीटर ठीक रखना चाहिए, वरना सवारी को बेवजह संदेह होगा कि तुम अधिक पैसा ले रहे हो और उन्हें तकलीफ भी होगी।
1: बाबा
0: देखो ग्राहक तुम्हारी गाड़ी में बैठकर तुम्हें सेवा का अवसर प्रदान करता है, तुम्हें उसे कष्ट नहीं देना चाहिए।
1: हाँ बाबा बात तो तुम्हारी ठीक है, पर जब बच्चों की स्कूल की फीस देनी होती है, बिजली का बिल भरना होता है, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर सीढ़ी लगाकर चढ़ना पड़ता है, तो लगता है कि ये छोटा मोटा झूठ तो जायज है।
0: राम राम राम राम राम राम। भाई झूठ बोलना उचित नहीं है, अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाओ, सादा जीवन और उच्च विचार की राह अपनाओ।
1: बाबा हम तो जी भी लें, मगर बच्चे जब स्कूल से आकर कहते हैं कि बर्गर और पिज्जा खाना है तो मैं क्या कहूँ उनको है? वो भी दूसरे बच्चों को देखकर मांग करते हैं, इधर मैं उनकी मांगों को पूरा करने के लिए सवारी से 10 रुपया ज्यादा मांग लेता हूँ।
0: अब ये पिज्जा क्या होता है भाई?
1: वो पता नहीं बाबा क्या बीमारी है, मोटी सी रोटी पर पिघले हुए रबड़ के टुकड़े जैसा कुछ चिपका देते हैं, जिसे चबाते चबाते हमें नाको चने चबाने पड़ते हैं। सब विदेश की देन है बाबा। हाँ
0: बताओ भाई, हमने विदेशी कपड़े तक का बहिष्कार किया था, और अब देखो विदेशी कैसे हमारे पेट पर ही हावी हो रहे हैं।
1: बाबा आपकी बातें मुझे बहुत अच्छी लग रही हैं। ठीक है जहाँ कहेंगे छोड़ दूंगा।
0: तो
1: जमुना के दर्शन को ले चलो।
0: पर सुना है वहाँ स्नान के लिए जल ठीक नहीं है।
1: सुना तो आपने ठीक है बाबा, आप अगर चाहें तो मेरे साथ घर चलिए, वहीं स्नान कर लीजिएगा, फिर आप जहाँ जाना चाहेंगे मैं आपको ले चलूंगा।
0: अरे भाई तुम समय क्यों बर्बाद करते हो भला, मैं कहीं और चला जाऊंगा, तुम धंधे में लगे रहो।
1: नहीं नहीं बाबा, बहुत दिनों बाद किसी ने इतने प्रेम से इतनी अच्छी बातें मेरे साथ की हैं। मैं आज आपके साथ का सुख उठाना चाहता हूँ
0: बेटा।
1: पर बाबा शायद आपको मेरे यहाँ कष्ट ही होगा, और शायद आप मेरे घर का चाहे नाश्ता भी ना ले।
0: क्यों भाई ऐसा क्यों? मैं किसी जात पात के भेदभाव को नहीं मानता, हर इंसान प्रभु की ही रचना है, कर्मानुसार इंसानों में भेद करना उचित नहीं है। हर अब तो मैं देख रहा हूँ कि भारत में लोग प्रगति के पथ पर भेदभाव को भुला

0: अगर आगे बढ़ रहे हैं।
1: हाँ बाबा, लोग आगे तो बढ़ रहे हैं मगर अब भी जातिवाद के नाम पर ही वोट बटोरे जाते हैं। राष्ट्र की धरती पर धर्म और जाति के खाने बांटकर इंसानों को मोहरे बनाकर राजनीति की शतरंज खेली जाती है। आप चलिए ना, घर चलकर बातें करेंगे।
0: चलो भाई, आज तुम्हारा ही आतिथ्य स्वीकार कर लेते हैं।
1: तो चलिए चलिए।

0: क्या बात है भाई, इतनी भीड़ क्यों है?
1: हड़ताल कर रहे हैं बाबा, देश में आज सभी बैंक बंद हैं। उन्होंने धरना दिया होगा।
0: ओ, तो ये बात है
1: बाबा। ये आपके चेहरे पर मुस्कान क्यों?
0: बेटा अच्छा लग रहा है देखकर कि सत्याग्रह अब भी होते हैं।
1: पर बाबा, अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए इस प्रकार रास्ते रोक देना ठीक बात है क्या? हुँ? सारा जीवन अस्त व्यस्त हो जाता है। सब गांधी जी की देन है।
0: हुँ? गांधी जी की? वो कैसे भाई?
1: और क्या, वो क्या करते थे? सत्याग्रह, बस वही सीख गया हर इंसान।
0: सत्याग्रह का अर्थ तो केवल सत्य के लिए आग्रह था, वो भी शांति पूर्वक, जिसमें किसी को कोई कष्ट ना हो। चलो, लगता है पुलिस आ गई, अब भीड़ छट जाएगी।
1: ना ना ना बाबा ना, पुलिस नहीं है, वो तो इस जाम में बेचारा एम्बुलेंस वाला फंस गया, मरीज को लेकर अस्पताल जा रहा होगा।
0: एम्बुलेंस? बेचारा मरीज न जाने किस स्थिति में होगा। चलो भाई, बाहर निकलकर कुछ करते हैं, भीड़ को हटाते हैं।
1: अरे बैठे रहिए, बैठे रहिए, इतने बड़े जाम में कोई भी किसी की नहीं सुनेगा।
0: अरे कैसे बैठे रहें भाई, यहाँ किसी की जान पर बनी है और हम बैठे रहें? ये सब हमारे अपने ही तो हैं, मेरी बात अवश्य सुनेंगे।
1: अरे अरे बाबा, अरे बाबा सुनिए तो।
0: ड्राइवर भाई, तुम्हारी एम्बुलेंस में कोई मरीज है क्या?
2: जी हाँ, दिल का दौरा पड़ा है इनको, पर अब हम भी क्या करें। हमें पता तो था नहीं कि यहाँ रास्ता रोको आंदोलन चल रहा है।
0: तुम चिंता मत करो, मैं अभी रास्ता खुलवाता हूँ।
2: अरे जाने दो भाई, जाने दो, ये भीड़ आंखों से अंधी और कानों से बहरी है, कोई आपकी बात नहीं सुनेगा।
0: अरे मैं कोशिश करता हूँ ना। अरे भाई साहब सुनिए, अपनी गाड़ी जरा धीरे धीरे बगल की ओर हटा लीजिए। ये देखिए पीछे एम्बुलेंस है, उसमें दिल का मरीज है।
3: कहाँ हटा लें, दूसरी गाड़ी के ऊपर चढ़ा लें क्या? देख नहीं रहे रास्ता कैसा बंद पड़ा है?
0: पर बेटा, इधर एक आदमी की जान जा रही है, उसके लिए थोड़ा रास्ता बना दो।
3: इसी रास्ते की तो होड़ है, दूसरे को रास्ता दे दिया तो हम कैसे मंजिल तक पहुँचेंगे?
0: पर ये तो मेरी, अरे क्या?
1: चलो चलो बाबा, रास्ता खुल रहा है धीरे धीरे।
0: अरे अरे बेटा, पर ये कौन रो रहा है?
1: बाबा, वही एम्बुलेंस वाला मरीज मर गया, उसकी बीवी और बेटा रो रहे हैं। आप चलिए ऑटो में बैठिए, मेरा रिक्शा रास्ते में खड़ा है और पीछे से गाड़ी वाले हॉर्न बजा रहे हैं।
0: बेटा वो तो,
1: चलिए बाबा आप जल्दी चलिए, चलिए आइए बैठ जाइए।

0: आइए आइए बाबा, अंदर आ जाइए। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी।
1: अरे अरे, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? और ये बाबा?
0: लक्ष्मी, ये बाबा आज हमारे साथ ही रहेंगे। पहले ये स्नान करेंगे, फिर चाय पियेंगे। फटाफट गरम चाय बना दो।
1: जरूर जरूर बाबा, आइए बैठिए ना जी। नहाने के लिए पानी गर्म कर दूं या ठंडे पानी से ही नहा लेंगे?
2: अरे बेटी, सारा जीवन

0: मैं साधु की तरह रहा, गर्म पानी की आवश्यकता नहीं, भूख भी कुछ विशेष नहीं। तुम परेशान ना हो।
1: अरे इसमें परेशानी कैसी बाबा, अतिथि देवो भवा, आप तो देवता हैं हमारे।
0: सौभाग्यवती हो, तुम्हारे विचार मेरे विचारों से बहुत मेल खाते हैं। चलो मुझे स्नान कक्ष दिखा दो, मैं स्नान कर लेता हूँ, फिर बाद में बातें करेंगे।
2: बाबा आपके साथ सामान तो है नहीं, आप कहें तो मेरे पास भी एक धोती है सफ़ेद।

0: अपने वस्त्र तो मैं स्वयं ही धोता हूँ, यही नियम पालता आया हूँ जीवन भर। अपना काम अपने हाथों से करने से ही आत्मनिर्भरता आती है।
1: पर बाबा वो...
0: चलो बेटी, रास्ता बता दो।
1: ठीक है, आइए इधर आइए।
0: हाँ।

0: मुन्ना कितने बजे आता है लक्ष्मी?
1: बस समय हो गया है, आने ही वाला होगा।
2: माँ, अरे पापा आप इस समय?
3: आ जा बेटा आ जा। अरे देखो तो कौन आया है, नमस्कार करो।
2: नमस्ते।
4: जीते रहो।
3: आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं बाबा?
4: कुछ नहीं, सोच कर प्रसन्न हूँ कि तुम्हारे घर में माँ अब भी माँ है पर पिताजी पापा हो गए।
3: जी हाँ, वो बाबा बच्चे स्कूल में और आस पड़ोस में सीख ही लेते हैं।
4: हाँ बेटा इधर आओ। तुम्हारा नाम क्या है?
2: स्कूल में नाम है करण और घर में मुन्ना।
4: वाह सुंदर नाम है करण, तुम ही तो इस देश के कर्णधार हो। वैसे मैं तुम्हें मुन्ना बुलाऊंगा।
2: और आपका क्या नाम है?
4: स्कूल में तो मोहनदास करमचंद गांधी और घर में बापू। जवाहर, सुभाष, पटेल सब मुझे बापू बुलाते थे।
3: अरे आपका नाम तो महात्मा गांधी के नाम से पूरी तरह मिलता है।
4: भाई मैं गांधी ही हूँ।
3: जी क्या? मैं समझा नहीं, आप गांधी जी? पर वो तो
4: हाँ 30 जनवरी 1948 को देह त्याग गए थे।
3: लक्ष्मी
4: अरे डरने की आवश्यकता नहीं, वो कल 2 अक्टूबर है ना। सुना था कि 2 अक्टूबर बड़े धूमधाम से भारत में मनाया जाता है, बस सोचा एक बार बदलते भारत की तस्वीर स्वयं अपनी आंखों से देख लूं, फिर वापस चला जाऊंगा।
2: आप ही महात्मा गांधी हैं, तो क्या कल आपका ही हैप्पी बर्थडे है?
4: जन्मदिन बोलो बेटा। हाँ मेरा जन्मदिन है कल, पर तुम्हें कैसे मालूम?
2: हमारे यहाँ टीचर कह रहे थे कि कल गांधी जी का बर्थडे है, पर हमारा क्या फायदा हुआ, संडे है, हमारी तो छुट्टी मारी गई ना।
4: हाँ? तुम्हारे यहाँ के शिक्षक ऐसा कह रहे थे?
0: चलो चलो चलो चलो मुन्ना चलो, जाओ जाओ कपड़े बदलो, माँ खाना बना रही है, तुम भी खा लो, जाओ चलो।
5: आइए बाबा खाना तैयार है।
3: आइए बाबा। ओ बापू आइए।
4: हाँ चलो।
0: लक्ष्मी मुन्ना कहाँ गया?
1: उसे खिलाकर सुला दिया है, थोड़ी देर में उठ जाएगा। वो बाबा के बारे में बता रहा था कि बाबा महात्मा गांधी हैं।
4: हाँ बेटी, मैं पुनः एक बार भारत आना चाहता था, अपनी आँखों से अपनी बगिया में लगाए हुए सिद्धांतों के पौधों को वृक्ष रूप में फलित देखना चाहता था, पर अब लग रहा है कि मैं खाद ठीक से नहीं डाल पाया था, या फिर मालियों ने ठीक से सिंचाई नहीं की।
1: आप उदास ना हो बापू, मैं आपको बापू कह सकती हूँ ना, इसलिए नहीं कि दुनिया आपको बापू कहती थी, पर इसलिए कि आप में मुझे अपने बापू की झलक दिखती है। मैं बहुत दिनों तक उनसे मिल नहीं पाई थी और वो इस दुनिया को छोड़कर चले गए।
4: नहीं नहीं बेटी रोते नहीं, चुप हो जाओ बेटी चुप हो जाओ। बेटी मैं पूछ सकता हूँ कि क्या हुआ था, तुम मिल क्यों नहीं पाई थी उनसे?
1: जी वो
0: बापू मैं अपने गांव के एक जमींदार का बेटा हूँ और लक्ष्मी के बापू मेरे पिताजी के खेतों में काम करते थे। वो आज की भाषा में कहूँ तो वो दलित थे। मैं बढ़ती उम्र के चढ़ते लक्ष्मी से प्रेम करने लगा, परंतु मेरे घर वालों को ये मंजूर नहीं था। हमने गुप्त रूप से गंधर्व विवाह कर लिया। जैसे ही हमारे गांव में ये खबर फैली उन्होंने हमें पंचायत में खड़ा कर दिया।
4: अच्छा

0: उन्होंने मेरे बापू का मुंह काला करके गांव में घुमवाया और हम दोनों को गांव निकाला दे दिया। हम दोनों तब गांव से भागकर यहां शहर में आ गए। मेरे बापू वो बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर पाए और उन्होंने आत्महत्या कर ली।
1: हे राम, इतना सिखाने के बावजूद हम अब भी वही हैं क्या जहां वर्षों पहले थे? चुप हो जा बेटी।
0: बापू।
1: हाँ बेटी।
0: बापू, मैं आपके पैर छू सकती हूँ क्या?
1: बेटी, मैं कोई देवता नहीं, हाँ अपने बापू के रूप में छूना चाहती हो तो अवश्य छू लो।
0: सच बापू,
1: सदा खुश रहो। हे राम।

0: ये कुछ लोग तो मेरे जैसे ही कपड़े पहने, लाठी हाथ में लिए, चश्मा लगाए, मेरा ही प्रतिरूप बने राजघाट की ओर जा रहे हैं।
1: जी बापू, आज के दिन बापू जैसा दिखने की होड़ सी लगी रहती है और इसकी प्रतियोगिता भी आयोजित की जाती है।
0: आओ उधर चलते हैं।
1: चलिए।
2: ए भाई, ओ बाबा, किधर जा रहा है? चल पीछे हट, पीछे हट जा, पीछे हट जा।
0: बेटा मुझे अंदर जाना है वहाँ।
2: क्यों, तो लाड साहब है कोई है? दिखता नहीं कितने बड़े बड़े मंत्री नेताओं की भीड़ है यहाँ। देखिए यहाँ सुरक्षा की ऊंची दीवार है, तुम ना जा सकते। उधर चट, पीछे हट जा, हट।
1: अरे अरे, धक्का क्यों मारते हो? तुम जानते नहीं ये महात्मा गांधी हैं?
2: हाँ, एक यो है, दूसरा वो बोकड़ा, और तीसरा वांकड़ा, वो धूप में लाठी पकड़ो, चौथा बोरिया है। किस अगले जाते हैं, हट।
3: ए, क्या शोर हो रहा है? मंत्री जी की गाड़ी आ रही है, चलो हटो हटो।
2: ओ साहब जी, कब से हटा रहे हो, यो मान नहीं रहे हैं।
3: तो फिर दो डंडे जमा दो और हवालात में बंद कर दो।
0: अच्छा कह रहे हो बेटा, स्वतंत्रता से पहले भी डंडे खाए और जेल गए, अब भी खा सकते हैं। मैंने तो अपना जीवन ही जेल की शलाखों से प्रेम करके गुजारा है, वो कोई नई जगह नहीं है।
2: लो जी साहब जी, यो तो लगता है कई बार जेल जा चुका है, खुद ही कह रहे हैं बंद कर दूं साहब जी इस बार, साल दो साल के लिए। चल रहा है, चल इतना हवालात की हवा खिलाऊं, चला चल मेरे साथ, हट हट, चल मेरे साथ।
1: ए हवलदार, खबरदार, अगर इन्हें हाथ भी लगाया तो सर फोड़ दूंगा तुम्हारा, भले मुझे फांसी हो जाए।
0: रुक जाओ, शांत हो जाओ, हिंसा पर उतर आए तुम तो? सारा जीवन अहिंसा के मार्ग पर चला मैं, इसी पथ पर चलकर मैंने दुनिया को शांति का पाठ सिखाया। याद रखो, शांति की ओर कोई रास्ता नहीं जाता, बल्कि शांति ही रास्ता है।
1: परंतु बापू, मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता।
0: बर्दाश्त तो मुझसे भी नहीं हो रही भारत की ये दशा, पर उसके लिए क्या मैं अहिंसा पर उतर आया हूं? याद रखो, मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर कह रहा हूं, कमजोर कभी क्षमा नहीं कर सकता, क्षमा तो बलवान का गहना है। जीवन सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलने का नाम है, इसी मार्ग पर मैं 60 साल चला हूं। मैंने सोचा था कि मैं सफल होकर मृत्यु की गोद में सोया था, पर आज देखता हूं तो सच बर्दाश्त नहीं होता। मैंने सत्याग्रह की राह दिखाई थी, पर उसका इस्तेमाल इस तरह किया जाए कि रास्ता चलना दुश्वार हो जाए, एक इंसान रास्ते पर ही दम तोड़ दे सत्याग्रह के कारण। मैंने गरीबों को दरिद्र नारायण के स्वरूप में देखा, परंतु आज भी यदि आज भी मैं सुनूं कि उनके मुंह पर कालिख पोती जा रही है तो बर्दाश्त कैसे होगा? मैंने धर्म व जाति का भेद मिटाने को कहा था, परंतु यहां तो धर्म और जाति का ही अपने भले के लिए उपयोग किया जा रहा है। मैं प्रगति के विरुद्ध नहीं था, परंतु कहता था कि सबको साथ लेकर आगे बढ़ो। आज विदेशी सभ्यता हम पर हावी

0: रही है, बर्दाश्त नहीं होता
1: कि बापू आप क्या करें।
0: बेटा तुम जैसे कुछ लोग हैं अभी भारत में, ये जानकर आशा बंधती जरूर है। मैंने हमेशा यही कहा है कि तुम भले ही कुछ करने की ओर एक छोटा सा ही कदम उठाओ, मगर वो कदम उठाना भी अति आवश्यक है। एक एक करके यदि लोग जुड़ते जाएं तो भारतीय संस्कृति का शांत सागर फिर से हिलोरे मारने लगेगा। मैं अपने सपनों के भारत के लिए एक बार फिर मरने को तैयार हूं, परंतु लोग बदलने को तैयार हैं या नहीं इसका वादा भी तो चाहिए।
1: बापू बापू
0: क्या सोचा था और क्या हो रहा है? मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। नहीं बेटा, अब वापस जाना चाहता हूं। मैं वापस जाना चाहता हूं। हे राम, हे राम।

0: मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था। अभी आप नाटकों की विशेष मासिक श्रृंखला में श्री योगेंद्र टिक्कू का लिखा ये नाटक सुन रहे थे। नाटक के निर्देशक थे सुदर्शन कुमार और प्रस्तुति सहायिका विजय लक्ष्मी शर्मा। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री योगेंद्र टिक्कू, श्याम अरोड़ा, प्रवीण शर्मा, किरण शिवपुरी, सुरेंद्र सागर, डी वी नंदा, राजेंद्र वर्मा, शिवम गुलाटी और कीमती आनंद। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।
1: व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा संदेशे आते हैं, तथा एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर ही रात्रि 10 बजे सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम छाया गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। कल प्रातः 5:55 पर एग्रीटिप्स कार्यक्रम में जानकारी का विषय रहेगा दुधारू गायों की पोषण। सवेरे 6:10 पर सुनिए जलयानों का यात्रा कार्यक्रम। कल सवेरे 6:15 पर इंद्रधनुष कार्यक्रम केंद्रित होगा चलते चलते शीर्षक पर। रामचरित मानस गान सुनिए 6:30 पर। 6:50 पर सुनिए मौसम की जानकारी व कार्यक्रमों का विवरण। जनसूचनाएं सवेरे 7 बजे। 7:15 पर देशभक्ति गीतों पर आधारित कार्यक्रम सुनिए देश रागिनी, तथा 7:15 पर ही FM 100.9 मेगाहर्ट्ज पर प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए भूले बिसरे गीत, जिसे हम विविध भारती मुंबई से रिले करेंगे। गुड मॉर्निंग अंडमान कार्यक्रम का समय रहेगा 7:30। सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के संदर्भ में द्वीपों के होटल्स एसोसिएशन के अध्यक्ष श्री गिरीश अरोड़ा से की गई बातचीत सुनेंगे, तथा पिछले 12 साल में सरकार की उपलब्धि पर संजीव कुमार राय से की गई बातचीत सुनिए सुबह 8:30 पर। सुबह 9 बजे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा तराने सुहाने। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 9:30 पर आप पंडित जसराज का गायन सुन पाएंगे। सुबह 10 बजे दिल्ली से प्रसारित कार्यक्रम सुनिए संदेश टू सोल्जर्स की रिकॉर्डिंग। दिन के 11 बजे प्रायोजित कार्यक्रम सुनिए NCERT। 11:30 पर निकोबारी कार्यक्रम में आप लोकगीतों का आनंद ले पाएंगे। दोपहर 12 बजे तेलुगु में युवाओं के लिए कार्यक्रम होगा युवाणी। मलयालम कार्यक्रम में दोपहर 12:30 पर स्वास्थ्य कार्यक्रम आप सुनेंगे। दोपहर 1:10 पर महफिल कव्वाली कार्यक्रम में कव्वाल होंगे जाहिद नजा। दोपहर 1:30 पर व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा आपके नाम फिल्मी पैगाम। श्रोताओं, अभी आप हमारे केंद्र से प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में सुन रहे थे। मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ और FM 100.9 मेगाहर्ट्ज़ पर ये

0: आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। 7:05 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। इस ब्रेक के बाद
1: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। सांसद विष्णुपद रे ने द्वीपों की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की। और मनारघाट ग्राम पंचायत सभागार में आज खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसान जागरूकता तथा किसान वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

सांध्य समाचारों के साथ मैं ज्योति लकड़ा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। इस दौरान राष्ट्रपति मयूरभंज जिले के रायरंगपुर में एम्स भुवनेश्वर द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर में शामिल होंगी। वे हाटबद्रा में ब्रह्मा कुमारीज के मातृशक्ति भवन, एक विशेष सर्किट हाउस और रायरंगपुर पुलिस जिले का भी उद्घाटन करेंगी। शनिवार को राष्ट्रपति मुर्मू पहाड़पुर का दौरा करेंगी। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित होंगे। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री इस दौरान कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और संबंधित ग्रामीण संपर्क पहलों के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण के लिए 18,900 करोड़ रुपए से अधिक रुपए आवंटित किए गए हैं। ग्रामीण सड़क संपर्क परियोजनाओं की प्रगति का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता ग्रामीण विकास विभाग के सचिव रोहित कंसल ने की। बैठक में आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और अन्य राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। राज्यों को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और पीएम जनमन के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं पर तेजी से काम करने का निर्देश दिया गया है। इसमें विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूहों की बस्तियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार के 12 वर्ष विकास और विरासत के संगम का स्वर्णिम कालखंड रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि इस दौरान एक ओर श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर और उज्जैन महाकाल लोक का निर्माण हुआ, वहीं दूसरी ओर विश्वस्तरीय कनेक्टिविटी, इंफ्रास्ट्रक्चर तथा मेक इन इंडिया जैसी पहलों ने देश की विकास यात्रा को अभूतपूर्व गति दी है। श्री शाह ने कहा कि 1 करोड़ अभिलेखों का डिजिटलीकरण, 668 प्राचीन कलाकृतियों की वापसी, 11 जनजातीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालयों की स्थापना और 11 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिलना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि विकास और विरासत एक दूसरे के पूरक हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी श्री विजयपुरम से सुन रहे हैं। समाचारों में आगे प्रमुख हैं, सांसद और खेत बचाओ अभियान।

आकाशवाणी श्री विजयपुरम से प्रसारित होने वाला यह प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप मीडियम वेव के साथ साथ एफएम 100.9 मेगाहर्ट्ज पर भी सुन रहे हैं। प्रादेशिक समाचार के अलावा सुबह 9 बजे, 10 बजे और 11 बजे प्रति घंटा न्यूज हेडलाइंस एफएम रेडियो पर भी उपलब्ध है। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। सांसद विष्णु पदरे ने द्वीपों की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। पत्र की प्रतिलिपि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह तथा केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा को भी भेजी गई है। सांसद ने अपने पत्र में द्वीपों की स्वास्थ्य सेवाओं, विशेषकर राजधानी श्री विजयपुरम स्थित जीवी पंत अस्पताल की स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि अस्पताल को नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण या मार्गदर्शन में लाने की आवश्यकता है। सांसद ने कहा कि द्वीप समूह के नागरिकों को मुख्य भूमि के समान और बेहतर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए और इसके लिए केंद्र सरकार को शीघ्र प्रभावी कदम उठाने चाहिए। दूरदर्शन केंद्र द्वारा कल शाम 5:30 बजे से लाइव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर का प्रसारण किया जाएगा। कार्यक्रम का विषय मच्छरों से फैलने वाली बीमारियां, सावधानियां, देखभाल एवं उपचार रखा गया है। कार्यक्रम में स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के उप निदेशक मलेरिया एवं NVBDCP के संयुक्त सचिव डॉ बी अजीत कुमार विशेषज्ञ के रूप में स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। वे दर्शकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे तथा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों की रोकथाम, बचाव के उपाय, उपचार और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियों की जानकारी देंगे। दर्शक कार्यक्रम के दौरान फोन नंबर 2447 45 अथवा 2445 662 पर डायल कर अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। मनारघाट ग्राम पंचायत सभागार में आज खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसान जागरूकता एवं किसान वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संयुक्त रूप से ICAR कृषि विज्ञान केंद्र दक्षिण अंडमान, केंद्रीय द्वीपीय कृषि अनुसंधान संस्थान कृषि विभाग तथा यूटी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन संस्था द्वारा आयोजन किया गया। मुख्य वक्ता दक्षिण अंडमान KVK के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ वाई रामकृष्ण ने मृदा स्वास्थ्य और मानव स्वास्थ्य के बीच संबंध पर प्रकाश डालते हुए किसानों से टिकाऊ मृदा प्रबंधन अपनाने का आह्वान किया। CIARI के बागवानी एवं फसल सुधार प्रभाग के प्रमुख डॉ राज नारायण ने भूमि संरक्षण तथा मृदा अपरदन रोकने की आवश्यकता पर जोर दिया। कृषि विभाग के AFA मधु ने किसानों को सरकारी डिपो में उपलब्ध जैव आदानों की जानकारी दी तथा छोलदारी स्थित नवस्थापित कस्टम हायरिंग सेंटर की सेवाओं का लाभ उठाने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि ग्राम प्रधान साजिदा बानू ने इस पहल की सराहना की। इसमें 30 किसानों ने भाग लिया। भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षण केंद्र श्री विजयपुरम के आवासीय प्रशिक्षु पी शशि किरण और ऋषिका कुमारी इक्का ने 12 से 14 जून तक छत्तीसगढ़ के नया रायपुर स्थित सेंध झील में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष एवं महिला तथा सब जूनियर बालक एवं बालिका चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतकर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का गौरव बढ़ाया है। दोनों खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप की C2 मिश्रित जूनियर 500 मीटर स्पर्धा में कांस्य पदक हासिल किया। देश के विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से आए खिलाड़ियों के बीच कड़े मुकाबले में उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की। भारतीय खेल प्राधिकरण SAI STC श्री विजयपुरम ने पदक विजेता खिलाड़ियों तथा उनके प्रशिक्षक कर्मा टोपो को इस उपलब्धि पर बधाई देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य और आगामी प्रतियोगिताओं में निरंतर सफलता की कामना की है। भारत का राष्ट्रीय समुद्री कर्मी संघ के नए कार्यालय भवन NUSI नाविक सदन का 21 जून को उद्घाटन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि मुंबई के जहाजरानी महानिदेशक श्याम जगनाथन होंगे। छोलदारी उपमंडल कार्यालय में ABC की मरम्मत एवं रखरखाव कार्य के कारण 20 जून को विद्युत आपूर्ति बाधित रहेगी। बिजली कटौती सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक की जाएगी। प्रभावित क्षेत्रों

में गारचरामा, सेपीघाट, धनी खाड़ी, हम्फ्रीगंज, वंडूर, न्यू मंगलूटान, गुप्तापाड़ा, मंजरी, नया शहर, टेलराबाद, भिमलीटान, लाल पहाड़, छोलदारी, नींबू बगीचा, पोर्टमोड, ओगरा ब्रांच जंक्शन तथा नमूना घर से डंडस पॉइंट तक के क्षेत्र शामिल हैं। यह कार्य मौसम की स्थिति पर निर्भर रहेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल से अपने गृह राज्य ओडिशा की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगी। केंद्र सरकार वित्त वर्ष 2026-27 में ग्रामीण क्षेत्रों में 18,900 करोड़ रुपए की लागत से 26,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण करेगी। सांसद विष्णुपद रे ने द्वीपों की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की और मनारघाट ग्राम पंचायत सभागार में आज खेत बचाओ अभियान के अंतर्गत किसान जागरूकता तथा किसान वैज्ञानिक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:15 हुए हैं। अब सुनिए मौसम की जानकारी, जलयानों का यात्रा कार्यक्रम और जन सूचनाएं। पहले मौसम। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है, जो कि बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। अतः उत्तरी अंडमान सागर और अंडमान के तटीय भागों में मछुआरों को न जाने की सलाह दी जाती है। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। आइए अब सुनते हैं जलयानों का यात्रा कार्यक्रम।

जहाज रानी सेवा निदेशालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार एमवी रानी चंगा कल शुक्रवार 19 जून को सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और ये जलयान अगले दिन 20 जून को सवेरे 7 बजे डिगलीपुर से छूटकर मायबंदर होते हुए श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी सेंटिनल लिटिल अंडमान की यात्रा पर कल 19 जून को रात्रि 8 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और ये जलयान अगले दिन 20 जून को सवेरे 8 बजे लिटिल अंडमान से श्री विजयपुरम के लिए रवाना होगा। एमवी जॉली बॉय स्वराज द्वीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा और ये जलयान कल ही दोपहर 1 बजे रंगत से चलकर उन्हीं रास्तों से होते हुए श्री विजयपुरम वापस लौटेगा। एमवी बाराटांग शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से चलेगा और ये जलयान कल ही सुबह 8:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए छूटेगा। एमवी स्ट्रेट आइलैंड स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:15 पर श्री विजयपुरम से छूटेगा और ये जलयान कल ही सुबह 8:45 पर स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। एमवी नॉर्थ पैसेज कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा और दोपहर 1 बजे शहीद द्वीप से स्वराज द्वीप जाएगा तथा 2:30 पर यह जलयान स्वराज द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी रानी लक्ष्मी स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 पर अपनी यात्रा आरंभ करेगा और दोपहर बाद 2 बजे स्वराज द्वीप से शहीद द्वीप जाएगा तथा 3:30 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए चलेगा। एमवी हडवे कल दोपहर बाद 2:30 पर श्री विजयपुरम से शहीद द्वीप के लिए रवाना होगा और कल ही शाम 4:30 पर यह जलयान शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम वापस आएगा। एमवी बाराटांग स्वराज द्वीप की यात्रा पर कल शाम 5 बजे श्री विजयपुरम से जाएगा और ये जलयान अगले दिन प्रातः 5:30 पर स्वराज द्वीप से चलकर शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए चले

गैर कानूनी कृत्यों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग सदैव तत्पर रहता है। ऐसी किसी भी गतिविधियों की रोकथाम के लिए पुलिस विभाग ने आम जनता से सहयोग करने की अपील की है। आम जनता द्वारा असामाजिक तत्वों द्वारा किए जा रहे गैर कानूनी कार्यों की गुप्त सूचना इन टेलीफोन नंबरों पर दी जा सकती है। नंबर है 1121922312100, 0319223377 और 0319223400। सूचना देने वाले का नाम गुप्त रखा जाएगा। जन सूचनाएं समाप्त हुई। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय 7:20 हुए हैं। अब सुनिए फिल्मी गीतों का कार्यक्रम, दिल ने फिर याद किया।

0: श्रोताओं, कार्यक्रम का पहला गीत हमने लिया था फिल्म यकीन से। आवाजें थीं सोनू निगम और श्रेया घोषाल की। समीर की रचना थी, हिमेश रेशमिया का संगीत था।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

आइए अब सुनते हैं फिल्म जाने क्या होगा का एक गीत। आवाजें हैं उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल की।

उदित नारायण और अनुराधा पौडवाल के गाए इस गीत के साथ ही फिल्मी गीतों का कार्यक्रम दिल ने फिर याद किया संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय 7:30 हुए हैं। अब सुनिए युवाणी कार्यक्रम।

युववाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी युवा दोस्तों को आपकी रेडियो दोस्त लता राज नंदिनी का प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में रानी लक्ष्मीबाई का नाम अद्वितीय साहस, देशभक्ति और आत्म बलिदान का प्रतीक है। उनका जन्म 19 नवंबर सन 1828 को वाराणसी में हुआ था। बचपन में उनका नाम मणिकर्णिका था, जिन्हें प्यार से मनु कहा जाता था। विवाह के बाद वे झांसी की रानी बनी। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध वीरतापूर्वक संघर्ष किया। उन्होंने अपने राज्य और देश की रक्षा के लिए अदम्य साहस का परिचय दिया। युद्ध के दौरान वे घोड़े पर सवार होकर रणभूमि में डटकर लड़ी और अनेक वीरता के उदाहरण प्रस्तुत किए। दोस्तों, सन 1858 में आज ही के दिन यानी 18 जून को ग्वालियर के निकट युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई, उनका बलिदान भारतवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना और आज भी उनकी वीरता की गाथा हर भारतीय के हृदय में जीवित है। दोस्तों, आज रानी लक्ष्मीबाई के शहादत दिवस में हम उनके देश प्रेम, साहस और कर्तव्य निष्ठा से प्रेरणा लेते हैं और उन्हें शत शत नमन करते हैं।

0: दोस्तों, ये तो रही आज के दिन की कुछ खास बातें, और अब आप सभी को इंतजार होगा आज के कार्यक्रम का। दोस्तों, आज इस माह का तीसरा गुरुवार है और आज के दिन हम आप सभी युवा दोस्तों के लिए लेकर आते हैं पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
1: पत्रिका कार्यक्रम युवा संसार।
0: तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे। योग और ध्यान भारतीय संस्कृति की अमूल्य धरोहर है। आज की भागदौड़ भरी जीवन शैली में मनुष्य बाहरी सुख सुविधाओं की खोज में इतना व्यस्त हो गया है कि वह अपने अंतर मन से दूर होता जा रहा है। ऐसे समय में योग और ध्यान हमें स्वयं से जोड़ने का मार्ग दिखाते हैं। यह केवल शारीरिक स्वास्थ्य के साधन नहीं है, बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास के भी आधार हैं। योग का अर्थ है जुड़ना या एकत्व स्थापित करना। जब मनुष्य अपने शरीर, मन और आत्मा के बीच संतुलन स्थापित करता है, तब वह वास्तविक योग की अवस्था को प्राप्त करता है। ध्यान योग का एक महत्वपूर्ण अंग है, जो मन को एकाग्र और शांत बनाने में सहायता करता है। नियमित रूप से योग और ध्यान करने से मन की चंचलता कम होती है तथा व्यक्ति

0: अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझ पाता है। दोस्तों, अंतर मन से जुड़ाव का अर्थ है अपने वास्तविक स्वरूप, विचारों, भावनाओं और चेतना को पहचानना। जब हम ध्यान करते हैं तब हमारा ध्यान बाहरी संसार से हटकर भीतर की ओर केंद्रित होता है। मन में चल रहे अनावश्यक विचार धीरे धीरे शांत होने लगते हैं और आत्मचिंतन की प्रतिक्रिया आरंभ होती है। व्यक्ति स्वयं को बेहतर ढंग से समझ पाता है तथा जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करता है। दोस्तों, योग और ध्यान तनाव, चिंता तथा मानसिक अशांति को दूर करने में भी अत्यंत प्रभावी हैं। नियमित अभ्यास से मन में शांति, संतोष और आत्मविश्वास का संचार होता है। व्यक्ति विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना सीखता है। इसके साथ ही एकाग्रता, स्मरण शक्ति और निर्णय लेने की क्षमता में भी वृद्धि होती है। दोस्तों, आध्यात्मिक दृष्टि से भी योग और ध्यान का विशेष महत्व है। यह हमें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं और जीवन के गहरे अर्थ को समझने में सहायता करते हैं। जब व्यक्ति अपने अंतर मन से जुड़ता है तब उसमें करुणा, प्रेम, सहिष्णुता और नैतिक मूल्यों का विकास होता है। वह स्वयं के साथ साथ समाज और राष्ट्र के प्रति भी अधिक जिम्मेदार बनता है। दोस्तों, वर्तमान समय में जब मानसिक तनाव और अवसाद जैसी समस्याएं तेजी से बढ़ रही हैं, योग और ध्यान का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। यही कारण है कि आज विश्व भर में योग को अपनाया जा रहा है और भारत ने विश्व को यह अनमोल ज्ञान प्रदान किया है जो मानव जीवन को संतुलित और सार्थक बनाने में सहायक है। दोस्तों, योग और ध्यान केवल व्यायाम या साधन नहीं बल्कि आत्मखोज और आत्मविकास का मार्ग है। इसके माध्यम से व्यक्ति अपने अंतर मन से जुड़कर शांति, संतुलन और आनंद की अनुभूति करता है। इसलिए दोस्तों, हमें अपने दैनिक जीवन में योग और ध्यान को स्थान देकर स्वस्थ, सुखी और जागरूक जीवन की ओर अग्रसर होना चाहिए। दोस्तों, आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो वर्तमान समय में युवाओं के शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य से गहराई से जुड़ा हुआ है। योग और युवा। जी हाँ दोस्तों, योग केवल एक प्राचीन भारतीय परंपरा ही नहीं बल्कि स्वस्थ्य, संतुलित और सकारात्मक जीवन की एक प्रभावी जीवन शैली भी है। तो चलिए दोस्तों, इसी विषय पर हम आपको सुनवाते हैं मेडिकल ऑफिसर, योगा एंड नेचुरोपैथी डॉक्टर नंदिनी से की गई बातचीत।
1: डॉक्टर नंदिनी, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: तो सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को ये बताइए कि हमारे जीवन में योग का क्या महत्व है।
2: योग हमेशा से सोचते हैं कि एक एक्सरसाइज है, बट ऐसा नहीं है। योग हमारे जीवन का एक जीवन शैली है। योग हमें जुड़ने में सिखाता है। जैसे हम बोलते हैं कि अपने शारीरिक, मानसिक रूप से हमेशा से हमें जुड़े रहना है, किसी भी बीमारी से कैसे हम बच सकते हैं। तो योग एक अष्टांग रूप से जन्म लेता है, जिसे पतंजलि योग सूत्र में अच्छा से लिखा हुआ है, जिसमें अष्ट अंग होते हैं, जहाँ शुरुआत होता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा और समाधि। ये सब मिल के ही योग होता है। तो योग का सबसे इनिशियल स्टेप या पहला कदम होता है कि डिसिप्लिन। जब हम सेल्फ डिसिप्लिन अपने आप में कल्टीवेट कर देते हैं, वही योग का शुरुआत माना जाता है।
1: प्रनंदिनी, आजकल ये देखा जाता है कि चिंता, तनाव और अवसाद जैसी समस्याएं युवाओं में बढ़ रही हैं, तो योग कैसे इसमें सहायता कर सकता है।
2: जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि योग केवल शारीरिक रूप से ही ना जुड़ते हुए मानसिक रूप में भी बहुत ज़्यादा काम करता है। तो जैसे बच्चे लोगों को कोई भी किसी भी प्रकार का चिंता होता है या तनाव होता है, तो वो किसी भी चीज़ या सिचुएशन या अपनी ज़िंदगी में चलती फलती प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एक तंत्र होके एक चीज़ों पर फोकस कर सकते हैं। वो कोई भी चीज़ों पर डिस्ट्रैक्ट नहीं होते। जब भी आपकी ज़िंदगी में या जीवन पे कोई भी समस्या आते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं, हम एक ही चीज़ों पे या फोकस नहीं कर पाते, इसीलिए हम कोई भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढने में बहुत समय लगा देते हैं। तो योग

0: आपको खास करके प्राणायाम और मेडिटेशन यानी कि ध्यान आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत ज़्यादा मदद करता है और आपको एक सही दिशा में भी ज़रूर ले किया जाता है।
1: डॉक्टर, आजकल ये भी देखा जाता है कि जो हमारी युवा पीढ़ी है मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप इत्यादि का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करती है
0: जी
1: और इस कारण उनमें नींद की कमी और कई तरह की समस्याएं होती हैं। तो योग कैसे इन्हें इन समस्याओं में मदद कर सकता है?
0: जैसे कि हम पूरे विश्व में बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो हो गया मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप्स, उसका
1: जी
0: इस्तेमाल करने की वजह से अन्य बीमारियां आ सकते हैं। जैसे
1: जी
0: कि मतलब बच्चे लोगों को आँख देखने में दिक्कत होती है, हेडेक, माइग्रेन, बहुत कॉमन डिजॉर्डर्स उसके साथ जुड़ा हो जाता है। बट मेरा यही सलाह रहेगा कि आप अपने आप को एज ए युवा जब तक एंगेज नहीं करेंगे तब तक आप फ्री रहते हैं तो आप इलेक्ट्रॉनिक का इस्तेमाल करेंगे ज़्यादातर से। तो पहले तो मैं बोलूँगी इस फ़ोन जब बच्चे की तरफ से हम लोग एक स्टेप बाय जाएंगे इस चीज़ों में, जब बच्चे लोग ज़्यादा फ़ोन यूज़ करते
1: जी
0: हैं तो उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, एक तो आँख का, दूसरा है गर्दन और शोल्डर का, तो ये बहुत ज़्यादा कॉमनली आता है। तो हम लोग जब भी पेशेंट को यही सलाह देते हैं कि आप गिनती करिए कि एक दिन में आप फ़ोन कितना देर यूज़ करते हो। अगर 1 घंटा करते हैं तो उसको हाफ एन आवर में लाइए, अगर 2 घंटा करते हैं तो फिर उसको 1 घंटा में लाइए। और प्रिकॉशनरीज मेशर्स हमेशा उनको दिया जाता है, फॉर एग्जांपल कि आप जब भी फ़ोन यूज़ करते हैं तो अपनी दोनों हाथों के नीचे तकिया रख के यूज़ करिए, जब घर पे यूज़ करते हैं ये अपने आँख के लेवल में ही रख के यूज़ करिए, स्टैंड्स का यूज़ करिए, कि फ़ोन स्टैंड जो मिलते हैं आपको उस तरह लेवल के रख के यूज़ करिए, नहीं तो आपको गर्दन और में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो सकते हैं, जिसकी वजह से आपकी कमर की जो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं वो भी बेंड होने का चांसेस हो सकता है। तो इसीलिए हम लोग सूक्ष्म व्यायाम यानी कि लूजनिंग प्रैक्टिस योग में बहुत ज़्यादा करवाते हैं ताकि उनके जो पोस्चरल करेक्शंस है वो इम्प्रूव हो सकता है और अपने आप को आप इंगेज करके रख पाएंगे और टाइम मैनेजमेंट का आपको ध्यान रहे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो लेट के फ़ोन देखते हैं
1: जी
0: बहुत देर घंटों तक, तो वैसे में भी क्या हो जाता है आपको शोल्डर पेन अगेन आने का चांसेस होता है क्योंकि आप लोड हाथ पे कर रहे हो और आँख पे कर रहे हो और जिसके वजह से आपको अदर प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो पोस्चर्स में बहुत मेहनत लगता है कि आप कैसा फ़ोन का इस्तेमाल कर रहे हो, और योग पे आपका पोस्चर्स बहुत इम्प्रूवमेंट हो सकता है, सिर्फ आसन ही नहीं बाकी प्रैक्टिस में भी। बहुत सारे लोग ऐसे हो जाएंगे कि कुछ काम करने की वजह से, खास करके ये लेबर कोई होते हैं जिसको
1: जी
0: हर दिन उनको बोझा उठाना पड़ता है तो वो बहुत सालों के बाद बेंड हो जाते हैं, वो कर्वेचर डिफर हो
1: जी
0: जाता
1: जी
0: है, तो वैसे केसेस में भी हम योग करवाते हैं तो बहुत ज़्यादा पोस्चरल इम्प्रूवमेंट हो जाता है। और साथ ही साथ में हमारा एक जब यही फ़ोन इस्तेमाल या लैपटॉप या सिस्टम ऑफिस सिस्टम का इस्तेमाल जो ऑफिस के लोग करते हैं उनके लिए भी हमने यही सलाह दिया है कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने एक ऐप बनाया है और ये एक प्रोटोकॉल बनाया है, इसको बोलते हैं हम लोग वाई ब्रेक। वाई ब्रेक का
1: जी
0: मतलब होता है योगा ब्रेक। इसमें हम लोग जो भी ऑफिस सेक्टर में काम करते हैं उन लोग के लिए एक स्पेशल प्रैक्टिस करवाते हैं जिसमें लोग ऑफिस में बैठे बैठे अब कोई भी फॉर्मल कपड़ा पहनते हुए चेयर में बैठ कर ही वो योगा करें, और उसमें ऐसे आसन का जुड़ा गया है जो आसन गर्दन, शोल्डर और हमारे बैक और थोड़ा सा प्राणायाम, जिसमें हम लोग को
1: जी
0: स्ट्रेस हो जाए या कोई
1: जी
0: प्रॉब्लम सॉल्व करना पा रहे हैं या परेशान है या ओवर टाइम हो रहा है उसको कैसा मैनेज करें और चीज़ों पे अच्छे से कैसा फोकस करें, थोड़ा सा ध्यान, ये सब मिल के वो वाइब्रेक को बनाया गया है प्रोटोकॉल को ताकि लोग उसको हर स्टेज में अच्छे से कर सके।
1: जी
0: तो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से जो नुकसान है उसमें भी योग बहुत जड़ तक काम कर रहा है ताकि छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सारी चीज़ों में आपको इम्प्रूवमेंट, हर स्टेज में आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई दे सकता है।
1: जी तो क्या नियमित योगाभ्यास करने से युवाओं में एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है?
0: जी ज़रूर। देखिए हम हमारा एक ये होता है कि हम प्राणायाम सबसे पहले शुरू करते हैं, जब भी कोई हमारे पास पेशेंट आके बोलता है कि मैम आप ध्यान सिखाइए तो पेशेंट में हम बैठाएंगे किसी को तो वो

0: युवाओं में एकाग्रता और स्मरण शक्ति बढ़ती है?
1: जी ज़रूर। देखिए, हम हमारा एक ये होता है कि हम प्राणायाम सबसे पहले शुरू करते हैं। जब भी कोई हमारे पास पेशेंट आके बोलता है कि मैम आप ध्यान सिखाइए, तो पेशेंट में हम बैठाएंगे किसी को तो वो ध्यानपूर्वक किसी चीज़ में नहीं बैठ पाएगा। अगर हमारी नीति जीती जीवन में जब भी हम कुछ काम करते हैं, हम अवेयरनेस के साथ नहीं करते, मतलब ध्यानपूर्वक नहीं करते।
0: जी
1: ऐसा कितना बार हुआ आएगा, आप ताला मार के कहीं चले गए होंगे, बट फिर आपको लगेगा कि मैंने चाबी ठीक से लगाया कि नहीं लगाया। तो कोई भी काम हम लोग डिस्ट्रैक्शन के साथ ही करते हैं। वो
0: जी
1: डिस्ट्रैक्शन लाने के लिए सबसे पहले हम करवाते हैं आसन और प्राणायाम। आसन का रोल इसमें क्या होता है कि आप फोकस होके करते हो, ये एक बेसिक ज़रूरत होता है कि आप अवेयरनेस के इसको स्लो डाउन करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है,
0: जी
1: इसलिए उसका रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर प्राणायाम सिखाते हैं, उसके बाद हम सिखाते हैं उनको ध्यान, क्योंकि जब भी आप शुरुआत बीच से करते हैं तो आपको पहला वाला हिस्सा का समझ नहीं आता है। तो
0: जी
1: ये
0: जी
1: योग एक सीढ़ी जैसी है, आपको सही सीखना है, कहाँ सीखने से आप पे इम्प्रूवमेंट होना चाहिए वो बहुत लाभदायक रहता है। तो यूजुअली हम एज अ ह्यूमन बीइंग हम चीज़ों को भूलते नहीं हैं, हम ध्यानपूर्वक नहीं करते ये। अगर कोई भी काम हम छोटा से बड़ा काम भी ध्यानपूर्वक करेंगे ना, तो बार बार हमें चेक करने की या दोहराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमें ये पता है कि हाँ हमने ताला लगाने टाइम ध्यानपूर्वक लगाया था, फिर से हमको चेक करने का ज़रूरत नहीं है। हम जैसे कि सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, उस टाइम में टिफ़िन बॉक्स रखते कि नहीं रखते, फिर बस में चढ़ के फिर याद करते कि टिफ़िन बॉक्स रखे थे, क्योंकि हमने जब रखा तो ध्यानपूर्वक नहीं रखा
0: जी
1: था।
0: जी
1: तो वो चीज़ को हमें इम्प्लीमेंट लाना, अपने अपने आप पे वो कल्टिवेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
0: वैसे तो आजकल कई युवा है जो फिटनेस के लिए जिम वगैरह जाते हैं, लेकिन जिम जैसी क्रियाओं में और योग में क्या अंतर है?
1: मैं खास करके ये फिटनेस एक्सरसाइज और योग के साथ दो इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस बताऊंगी। पहला है कि मैंने जैसा इससे पहले भी बताया था,
0: जी
1: अवेयरनेस। आप जिम करते हो, आप आगे किसी पे देख रहे हो या कि आगे वाले पे देख रहे हो, या कहीं आपका ध्यान है, आप गाना भी सुन रहे हो साथ ही साथ में, आपका दिमाग कहीं और चल रहा है कि जिम ख़त्म करके मेरे को जाना है या ऑफिस में कुछ है, तो आप अवेयरनेस के साथ जिम नहीं करते हो। आपका कोई रूल नहीं है कि आपको अवेयरनेस के साथ ही जिम करना है। बट जब आप योग या आसन के बारे में बात करते हो, तो हम एकदम स्ट्रिक्ट रहते हैं कि आप सेल्फ अवेयरनेस के साथ ही प्रैक्टिस करिए।
0: जी
1: ये बहुत कॉमन पॉइंट रहता है। दूसरा इम्पॉर्टेंट डिफरेंसेस ये है कि हम जब आसन करवाते हैं तो कभी नहीं बोलते कि आप इनहेल करिए, एक्सहेल करिए, सांस भरिए, सांस छोड़िए। बट हम जब भी योग अभ्यास करवाते हैं, जैसे प्राणायाम हो गया, कोई भी प्रकार के आसन हो गए, उसमें हम ज़रूर बोलते हैं कि अपने हाथ उठाते हुए अपने सांसों की भी ध्यान रखिए करके।
0: जी
1: तो ब्रीदिंग इंपॉर्टेंट है आसन पे या हमारे योग पे, और दूसरा इंपॉर्टेंट बात है अवेयरनेस। ये दोनों को रखते हुए ही हम अभ्यास करते हैं।
0: तो डॉक्टर, जो युवा अभी योग क्रियाओं की शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और क्या सावधानियां बरतनी चाहिए?
1: अगर कोई अभी इस नए से शुरुआत करने की भी चाहत में है, तो मैं आपको ये पर्सनलाइज सजेशन ये दूंगी कि अगर आप नए से सीख रहे हैं तो किसी गुरु या योगा इंस्ट्रक्टर के साथ ही आप सीखें।
0: जी
1: ऐसा नहीं कि आप कोई टीवी या किसी और से तरीके से जाके सीख ले, वो आपके लिए सही नहीं है। और तो क्योंकि बिकॉज ऑनलाइन क्लासेस भी होता है, बट आपके जो इंस्ट्रक्टर है वो इतना क्लियर इंस्ट्रक्शन देना कि उसको डेमो नहीं देते हुए भी आप वो चीज़ को करते हुए।
0: जी
1: और इस खास करके जो हम योग पे हमेशा से ध्यान देते हैं कि आप कैसे कपड़ा पहनते हैं, तो वेरी लूज कंफर्टेबल ड्रेस, आप इतने टाइट कपड़े पहने हो जिसमें आप ही खड़े नहीं हो पा रहे हो, ऐसे कपड़े का बिल्कुल यूज़ ना करें। एटलीस्ट खाना खाने का 2 घंटा बाद ही योग करें, और अगर आप खाली पेट कर रहे हैं योग तो एटलीस्ट आधा घंटे के बाद ही खाना खाएं। ये चीज़ का हमेशा से आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर आप बीमार है और आप नहीं कर पा रहे, तो ज़बरदस्ती योग को ना करें। आप बुखार है आपको या ऐसा कोई कंडीशन में है, आप स्टेबल नहीं है, बहुत वीक फील कर रहे हैं, तो उस दिन का योग अभ्यास आप स्किप कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा बंद कमरे में योग ना करें जहाँ पे आपको सांस पे घुटन हो रहा है, थोड़े खुले वेंटिलेटेड एरिया में करें तो आपको अच्छा महसूस हो सकता है।
0: जी
1: और अगर आपको डिजीज़ बेस्ड योग करना है, मतलब अगर आप कोई बीमारी से व्रत है उसके बेस में अगर योग सीखना है, तब भी आप डॉक्टर से मिलके उनका सलाह लेने के बाद ही योग अभ्यास को शुरू।
0: जी तो आजकल के जो युवा हैं वो काफ़ी ज़्यादा जल्दबाजी में रहते हैं, काफ़ी बिजी लाइफस्टाइल है, तो प्रतिदिन युवाओं को कितनी देर योग करना चाहिए?
1: देखिए, अपने आप के लिए सिर्फ योग के साथ सीमित नहीं होते हुए अपने

0: अपने लिए खुद सेल्फ प्रैक्टिस के लिए तो आपको 1 घंटा खुद ही निकालना चाहिए। अगर आप उतना 1 घंटा, आपको 60 मिनट्स निकालने में बहुत समय लगता है या आपको लगता है कि आप ऐसा नहीं कर पा रहे, एटलीस्ट आधे घंटे का तो समय आपको ज़रूर निकालना चाहिए। कोई लोग सुबह करना पसंद करते ऐसे अभ्यास या योग अभ्यास या मतलब अपने लिए टाइम, या शाम को लोग अभ्यास करना पसंद करते हैं।
1: जी
0: बट यूजली क्या हो जाता है कि प्रतिदिन हम इतने व्यस्त रहते हैं, बिजी रहते हैं, तो शाम को कोई ना कोई कमिटमेंट होने का चांसेस होता है, जैसे कि शादी हो गया या कोई मेहमान आ गया घर पे, या कोई किसी ने बुला दिया कुछ काम से, या सुबह का
1: जी
0: काम नहीं हो पाया तो शाम को करना है। बट आप जब अगर सोचिए सुबह का 6 से 7 आपने फिक्स किया है कि मुझे हर रोज़ ये प्रतिदिन कोई भी हाल में ये प्रैक्टिस करना है, तो आपको सुबह कोई नहीं रोक रहा है, ना कोई कमिटमेंट आ सकता है अचानक से सुबह, तो वो अभ्यास को आप कंटिन्यू करते हैं, हर रोज़ करते हैं, तो आपको उसका रिजल्ट भी ज़रूर आएगा। क्योंकि कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखता है योग में, मतलब कोई भी अभ्यास ज़िंदगी में आपको आगे बढ़ना है तो एक चीज़ को आप लिए हैं करने के लिए, तो आप हर दिन करना, तब भी आपको
1: जी
0: उसका
1: जी
0: रिजल्ट मिलेगा। आप 1 दिन कर रहे हो और फिर 4 दिन को छुट्टी दे रहे हो, तो आप भी उस पर छूट हो जाएगा, आपको भी आदत नहीं लगेगी। इसीलिए मैं आपको यही सलाह दूंगी, मेरा पर्सनल चॉइस है कि मैं सुबह प्रैक्टिस कर लूँ कि शाम को मैं किसी और चीज़ में एंगेज हो सकूँ।
1: जी
0: नहीं तो अगर आप शाम को फ्री है, वक्त है उतना, तो आप शाम को भी शांतिपूर्वक कर सकते।
1: तो डॉक्टर, अगर कोई युवा जो अवसाद से जूझ रहा है, वह प्रतिदिन योग करता है, तो उसमें क्या-क्या बदलाव आते हैं?
0: अगर कोई इंसान डिप्रेशन से या ऐसा कोई चीज़ों से गूज रहा है और प्रैक्टिस जब करते हैं, तो खास करके वो खुश रहना सीख जाता है। डिप्रेशन का एक मेजर कॉज ये होता है कि बहुत सारा दुखी, वो किसी से सप्रेशन, किसी पे डिपेंडेंट है, ऐसे एक स्थिति होता है जिसमें आप किसी पे डिपेंडेंट है, वो रो रहा है, या कोई भी रीज़न हो सकता है जिसमें आप वो अंदर ही अंदर दुख हो रहा है, वो शेयर नहीं कर पा रहा है, या वो प्रॉब्लम से वो बाहर निकल के नहीं आ पा रहा है। और योग आप सेल्फ संतुलित करना सिखाता है, मतलब आप खुश रहो और जो है उससे उससे आप खुश रहो, वो चीज़ आपको योग सिखाता है।
1: मीन सेल्फ सफिशिएंट।
0: सेल्फ सफिशिएंट
1: जी
0: ज़रूर सिखाता है, और आपको खुश रखने का एक प्रकृति खुद लाता है। मतलब अगर सोचिए सबको गिफ्ट मिला, आपको नहीं मिला है, तब भी वो आप खुश रहते हैं, कोई बात नहीं, गिफ्ट तो बात ही मुझे नहीं चाहिए। वो चीज़ को कल्टिवेट करने के लिए योग अभ्यास का होना बहुत ज़रूरी है, और क्लियर थिंकिंग कि क्या आपको लाइफ में चाहिए क्या नहीं चाहिए। अगर किसी ने आपको हर्ट कर दिया, तो हम आजकल के जमाना बहुत इमोशनली
1: जी
0: डिप्रेस्ड है, किसी ना
1: जी
0: किसी पर डिपेंडेंट भी है, तो कोई किसी ने हमें गुस्से से फोन नहीं उठाया तो हम बहुत बुरा फील करते हैं, या गुस्सा हो जाते हैं कि हमने फोन नहीं उठाया, तो वैसा चीज नहीं उठाया, नहीं कुछ कारण होगा, या नहीं पसंद करते होंगे, तो इट इज ओके। हर इंसान को हर इंसान पसंद आना जरूरी नहीं होता है,
1: जी
0: वो बॉर्डर कॉन्सेप्ट आके योग प्रैक्टिस में अच्छा से आता है, तो किसी पे डिपेंड भी नहीं होते हैं वो, और सेल्फ सफिशिएंट होते हैं कि मेरे को किसी का ज़रूरत नहीं है, एंड खुद ही खुश रहने का जो अनुभव है वो महसूस कर सकते।
1: जी तो अंत में डॉक्टर आपसे जानना चाहेंगे कि आप युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे?
0: हर युवाओं को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि अभी आपके पास बहुत सारा समय भी है, साथ ही साथ में बहुत सारा ऊर्जा भी है किसी चीज़ को करने की,
1: जी
0: तो यही टाइम है जब आप योग को अपने जीवन शैली में ज़रूर अपनाएं। एटलीस्ट 15 से आधा घंटा के लिए हर रोज़ योग का अभ्यास करें,
1: जी
0: सही चीज़ों का पढ़ाई करें, और हमेशा से अपने लिए जो आपका हॉबीज़ हमेशा से आया है उसका यूज़ करें। जैसे बहुत जन का हॉबीज़ होता है कि आप लिखना पसंद है, किसी को गार्डनिंग करना पसंद है, वो बचपन तक ही छोड़ के ना आ जाए, और आगे वाले जनरेशन, आगे वाले फ्यूचर में भी आपको वो जनरेशन चीज़ों याद रखे, तो योग का अभ्यास हमेशा से आपके जीवन शैली में अपनाएं।
1: डॉक्टर नंदिनी, आप हमारे कार्यक्रम में आई और आपने हमें अपना समय दिया और इस महत्वपूर्ण विषय पर अपने बहुमूल्य विचार और उपयोगी जानकारियों को हमसे साझा किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: योग और युवा दोस्तों, अभी आप इस विषय पर मेडिकल ऑफिसर योगा एंड नेचुरोपैथी डॉक्टर नंदिनी से की गई बातचीत सुन रहे थे। भेंटकर्ता थे दीपक कुमार सिंह। तो दोस्तों, इसी के साथ युवावाणी का यह अंक यहीं पर समाप्त होता है। कल इसी समय हमारी आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं लता राज नंदिनी, आपकी रेडियो दोस्त, चाहती हूँ आपसे अनुमति। नमस्कार, शुभ रात्रि।

0: आकाशवाणी का ये श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8 बजे हैं। अब सुनिए, दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग।
1: ये आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए पूर्वोत्तर भारत के तेज विकास और नई संभावनाओं पर पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के सचिव संजय जाजू के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत।
2: नमस्कार श्रोताओं, पूर्वोत्तर भारत में बीते 12 वर्षों में जो विकास यात्रा का हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण दौर देखा है, नए कीर्तिमान हमने देखे हैं, इस संबंध में आज हम कार्यक्रम में एक खास बातचीत आपके लिए लाए हैं। हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हैं पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में।
3: धन्यवाद।
2: सबसे पहले हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि बीते 12 वर्षों में जो पूर्वोत्तर भारत की बदलती हुई तस्वीर को हमने देखा है, इस बदलती पिक्चर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ये संभव हो पाया है, किन कदमों की बदौलत ये हो पाया है?
3: तो पूर्वोत्तर भारत में जो विकास हुआ है उसके मुख्यतः जो कारण है वो सस्टेन्ड फाइनेंशियल कमिटमेंट, दूसरा टारगेटेड प्रोग्राम डिलीवरी और तीसरा स्ट्रांग इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन। और ये सब जो कार्य हुआ है इसमें कोई एक सिंगल स्कीम जो पूरी कहानी को नहीं बताती है, ये मल्टीपल इनिशिएटिव्स का एक साथ समावेश होना, उनका कॉन्वर्जेंस होना जो ये चेंज दिखाई पड़ता है उसको दर्शित करता है। 10% ग्रॉस बजटरी सपोर्ट मैकेनिज्म जो 55 भारत सरकार के मंत्रालय और विभाग इम्प्लीमेंट करते हैं उसमें भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस वर्ष लगभग 1 लाख करोड़ नॉर्थ ईस्ट में इन मिनिस्ट्रीज ने अपना व्यय किया है। साथ ही साथ ऐसे कई फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं, खासतौर पे नेशनल हाईवेज जहां पर 50,000 करोड़, एसएआरडीपी नॉर्थ ईस्ट के तहत लगभग 4,800 किलोमीटर के कार्य पूरे हुए। साथ ही साथ भारतमाला परियोजना में 3,000 किलोमीटर के काम लगभग 70,000 करोड़ से की लागत में पूरे हुए। इन सभी कार्यक्रमों से रेल, रोड्स, एयरवेज, इनमें उल्लेखनीय इम्प्रूवमेंट आया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जहां तक हमारी कनेक्टिविटी का सवाल है, कई कैपिटल्स अब कनेक्ट हो गई हैं। साथ ही साथ 17 एयरपोर्ट्स नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट जब मैं कहता हूं तो मैं सिक्किम को भी उसमें जोड़ रहा हूं, अष्टलक्ष्मी में राज्यों में 17 एयरपोर्ट्स फंक्शनल हैं। उड़ान के तहत 90 रूट्स ऑपरेशनल हैं और कृषि उड़ान स्कीम के तहत एयर फ्रेट चैनल को भी इम्प्लीमेंट किया गया है जिसके द्वारा पेरिशेबल एग्री प्रोड्यूस को फार्मर्स की इनकम्स बढ़ाने में उपयोग में लिया जा रहा है।
2: एक बहुत महत्वपूर्ण योजना रही है जो पूर्वोत्तर भारत के विकास में एक बहुत बड़ा रोल निभा रही है, उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट में, पीएम डिवाइन। तो इस योजना के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे, कैसे इस योजना ने पूर्वोत्तर भारत के विकास को एक नई दिशा दिखाई है और कैसे ये योजना काम कर रही है?
3: पीएम डिवाइन स्कीम जो है ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और ये हाल ही में लॉन्च की गई है पिछली फाइनेंस कमीशन साइकिल में। बड़े प्रोजेक्ट्स जिनकी लागत समझ लीजिए एक इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स की 50 करोड़ से ज्यादा, 50 करोड़ से 500 करोड़ तक के बीच के बड़े प्रोजेक्ट्स, ताकि जो बड़ी गैप्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की उनको पूरी की जा सके, उस पर्पस से पीएम डिवाइन को लॉन्च किया गया। और इस योजना के अंतर्गत प्रोजेक्ट्स जो हैं वो राज्य सरकार के साथ में कंसल्टेशन करके लॉन्च किए जाते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे उनकी बहुत डिटेल्ड मॉनिटरिंग करते हैं। ये कोशिश करते हैं कि ये प्रोजेक्ट्स जो हैं विभिन्न सेक्टर्स में रहें, जैसे हेल्थ केयर, टूरिज्म, एजुकेशन, आईटी पार्क्स, रूरल लाइवलीहुड, वैल्यू चेन प्रोजेक्ट्स। और इसमें ये कोशिश की जाती है कि सारे प्रोजेक्ट्स का साइट सिलेक्शन, एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स और टाइमली मॉनिटरिंग सुनिश्चित की जा सके, ताकि ये प्रोजेक्ट्स अपने डिजाइंड ऑब्जेक्टिव्स को हासिल कर सके।
2: आपने हाल ही में अभी जून की शुरुआत

0: में ही पूर्वोत्तर भारत ने पीएम डिवाइन योजना के तहत सिक्किम का एक दौरा किया था और इसमें एक स्काईवॉक प्रोजेक्ट का निरीक्षण भी किया था। थोड़ा हमें बताएं हमारे श्रोताओं को कि कैसे ये परियोजना धरातल पर जमीन पर उतरकर काम कर रही है और कैसे एक नए तरह से इस योजना से विकास को देखा जा रहा है और कैसे इससे और भी चीजों को जैसे पर्यटन को बढ़ावा मिल रहा है।
1: कई राज्यों में इनफैक्ट ऑल दी 8 अष्टलक्ष्मी राज्यों का टूरिज्म पोटेंशियल बहुत व्यापक है और उस पोटेंशियल को यूटिलाइज करने के लिए भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, कल्चर मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ डोनर भी अपने फंड्स को इस्तेमाल करती है और ऐसे कई प्रोजेक्ट्स नॉर्थ ईस्ट में इम्प्लीमेंट किए गए हैं। बालेडुंगा में जो ये स्काई वॉक की आप जो बात कर रहे हैं, अपने आप में एक बहुत ही यूनिक और अनूठा ये एक प्रोजेक्ट है। हाल ही में वहां मैं जब गया था तो मैं आश्चर्यचकित था कि जो न केवल जो स्काई वॉक वहां पे तैयार हो रहा है पर जो ऑलरेडी वहां पर एग्जिस्टिंग जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है रोपवे का, वो भी अपने आप में एक बहुत ही अनूठा है। ऑलमोस्ट 45 डिग्रीज का वहां पर एक क्लिफ के ऊपर वो स्काई वॉक जा रहा है। मुझे लगता है कि विश्व में इतनी ज्यादा लीनियर लेंथ और इतना ज्यादा ऑल्टीट्यूड क्रॉस करने वाली ये रोपवे शायद ही कहीं विश्व में हो। डेफिनेटली ये टॉप 1-3 में कहीं ना कहीं इसका उल्लेख होगा और ये सब स्कीम्स इसलिए हैं ताकि वहां पर लोकल जॉब क्रिएशन हो सके, फुटफॉल बढ़ सके, टूरिज्म का बहुत एडवांटेज मिलता है लोकल एम्प्लॉयमेंट और लोकल जॉब क्रिएशन में। तो ऐसे कई प्रोजेक्ट्स हर जगह पर इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डोनर के द्वारा सिग्नेचर टूरिज्म सर्किट्स भी इम्प्लीमेंट की जा रही है। 2 प्रोजेक्ट्स मेघालय में सोरा सर्किट और माताबारी सर्किट त्रिपुरा में ऑलरेडी सैंक्शन की गई है, उसके प्रोजेक्ट्स अंडर इम्प्लीमेंटेशन है और उन सब प्रोजेक्ट्स से ये कोशिश की जा रही है जो हमारे माननीय मंत्री जी मिनिस्ट्री ऑफ डोनर में कहते हैं कि एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये इंफ्रास्ट्रक्चर अकेले नहीं बन रहा है, जब वो एक पर्यटक अपने फ्लाइट से या ट्रेन से उतरता है तो उसका जो पहला कदम पड़ता है, चाहे एक लोकल टैक्सी हो या लोकल टैक्सी ड्राइवर के साथ में उसका इंटरेक्शन हो या बाद में होटल में उसकी, चाहे वो 5-स्टार हो या 3-स्टार हो, चाहे वो एक छोटी सी लॉज हो या होम स्टे हो, वहां जो उसका इंटरेक्शन होता है उस इंटरेक्शन में एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है फैक्टर, साथ ही साथ गाइड्स। और इसीलिए ऐसे कई प्रोजेक्ट्स को वहां पर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है ताकि हमारे सारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में कम्युनिटी लेड लाइवलीहुड को हम प्रमोशन दे सकें, खासतौर पे सस्टेनेबल टूरिज्म को प्रमोट कर सकें। और हाल ही में इस बजट में बुद्धिस्ट सर्किट के लिए भी एक घोषणा हुई है, उसके तहत भी आने वाले समय में एक वृहद कार्यक्रम तैयार किया जा रहा है जिसका इम्प्लीमेंट अष्टलक्ष्मी राज्यों में होगा।
0: आपने जैसा कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो रहे विकास के बारे में बताया, लेकिन पूर्वोत्तर भारत एक और बीड़ा उठा रहा है, वो है पर्यावरण और सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे हो, इस दिशा में वो काम कर रहा है। ग्रीन हब के तौर पर बहुत सारे स्टेट्स उभर रहे हैं, सिक्किम के उदाहरण को हमने देखा। कैसे पूर्वोत्तर भारत के राज्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक मिसाल छोड़ रहे हैं और ग्रीन हब के तौर पर, ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पर कैसे सामने आ रहे हैं?
1: हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों का बहुत योगदान है, न केवल भारत के लिए, मैं तो कहूंगा पूरे विश्व के लिए, कि जो यहाँ पर ट्रेडिशनल सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस हैं, जो यहाँ की बायोडायवर्सिटी है, जो यहाँ की ऑर्गेनिक फार्मिंग की टेक्निक्स हैं, यहाँ पर जो कम्युनिटी बेस्ड फॉरेस्ट मैनेजमेंट है, यहाँ पर जो ओवरऑल एक इको टूरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, ये सब मॉडल्स हमारे सारे ग्रीन मॉडल्स हैं। और इसीलिए कोशिश की जा रही है कि जब जो यूएसपी डेवलपमेंट का हमारा प्रोजेक्ट है उसमें जो यहाँ की प्रीमियम वेराइटीज हैं, चाहे वो लेकाडोंग टर्मेरिक हो मेघालय में, या क्वीन पाइन एप्पल हो त्रिपुरा का, या मिजोरम की जिंजर हो, या ऑर्गेनिक स्टेट सिक्किम हो, ये सारी कार्यक्रम जो है इनका जो मूलभूत आधार है वो सस्टेनेबल एंड डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। तो ये सारे कार्यक्रम ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं कि ग्रीन ग्रोथ हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों के लिए नहीं, विश्व के लिए ही बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, ताकि इकोनॉमिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टूवर्डशिप को कंबाइन किया जा सके।
0: आपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात की और अष्टलक्ष्मी शब्द से हमारे श्रोताओं को बताया, तो हम ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि सरकार का फोकस है कि पूर्वोत्तर भारत पर्यटन और इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट का भी एक बड़ा हब बने, इस दिशा में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं और पूर्वोत्तर भारत में इस दिशा में काम हो रहा है, तो कैसे आप बताना चाहेंगे कि इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्रीज कितना अहम रोल अदा कर रही है पूर्वोत्तर भारत के डेवलपमेंट में और सरकार इसे कैसे देख रही है?
1: जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा नॉर्थ ईस्ट में तैयार हो रहा है, उसी के अनुपात में अब बहुत जरूरी है कि प्राइवेट सेक्टर और बड़ी कंपनीज और छोटी एमएसएमईज भी जाएं और अपना इन्वेस्टमेंट्स करें। बहुत पोटेंशियल है ना केवल एग्रीकल्चरल वैल्यू एडिशन में, बट टूरिज्म में, साथ ही साथ चाहे सीमेंट इंडस्ट्री हो, चाहे हाइड्रो पावर हो, हर सेगमेंट में बहुत पोटेंशियल है। तो उसके लिए एक नॉर्थ ईस्ट का इन्वेस्टर समिट लास्ट ईयर हुआ था,

0: लगभग 4.5 लाख करोड़ के कमिटमेंट्स, एमओयूज और लेटर ऑफ इंटेंट उसमें हासिल हुए थे। उन सभी के इम्प्लीमेंटेशन को भी बड़ी बारीकी से राज्यों के साथ में मॉनिटर किया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स आए और इकोनॉमिक और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकें। कुछ स्टेट्स अपने स्तर पर भी सिंगल विंडो पोर्टल्स इन्वेस्टमेंट को बढ़ाने के लिए जो भी परेशानियां हैं उनको दूर करने के लिए अपना कार्य कर रहे हैं, उससे भी आने वाले समय में अष्टलक्ष्मी राज्यों को बहुत फायदा होगा।
1: एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू है पूर्वोत्तर भारत के विकास में, वो है जो बीते सालों में शांति स्थापित हुई है, प्रॉस्परस एक हमने पूर्वोत्तर भारत को होते हुए देखा है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही है कि पूर्वोत्तर भारत में जो पहले अशांति और हिंसा थी वो अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। कैसे गृह मंत्रालय के साथ मिलकर आपके मंत्रालय ने इस पर काम किया है और कैसे जो विवाद थे, जो हिंसा थी, अशांति थी, उसको सुलझाने में बीते सालों में मदद मिली है और कैसे इससे और विकास को तेजी मिल रही है?
0: गृह मंत्रालय ने कोऑर्डिनेट किया है समस्त राज्यों के साथ में, सेंट्रल एजेंसीज के साथ में, और उसी का परिणाम है कि आज शांति है। और उस शांति का जो बेसिस है वो एक सस्टेन्ड पॉलिटिकल एंगेजमेंट है, डायलॉग्स हैं और खास तौर पे एग्रीमेंट्स हैं। उन एग्रीमेंट्स के टाइमली इम्प्लीमेंटेशन के लिए डोनर मिनिस्ट्री का बहुत मेजर रोल है। उन डेवलपमेंट पैकेजेस को इम्प्लीमेंट करना जो एग्रीमेंट का पार्ट है, खासतौर पर लाइवलीहुड से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, और ये इंश्योर किया जाए कि सोशो इकोनॉमिक बेनिफिट्स उन कम्युनिटीज तक पहुंचे जिन्होंने इस एग्रीमेंट में अपने योगदान दिए हैं। और ये सारे इनिशिएटिव्स हमें हेल्प करेंगे आने वाले समय में वहां पर शांति को बरकरार रखने के लिए और लॉन्ग टर्म प्रॉस्पेरिटी नॉर्थ ईस्ट की इन एग्रीमेंट्स के का एक मेजर आउटकम के तौर पर निकलेगा।
1: पहले कभी जो लुक ईस्ट का नजरिया था पूर्वोत्तर भारत का, वो एक्ट ईस्ट में सरकार ने बदला है, तो कैसे स्ट्रेटेजिक तौर पर इसको आप देखते हैं, इस रणनीति को कैसे सरकार पूर्वोत्तर भारत को इस नजरिए से देख रही है?
0: तो इस सिग्नल का जो अर्थ है वो ये है कि इट इज अ मूवमेंट फ्रॉम पैसिव डिप्लोमेटिक ओरिएंटेशन टू अ प्रोएक्टिव इकोनॉमिक एंड स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट विद द ईस्ट, एंड हियर नॉर्थ ईस्ट इज लाइंग एट द हार्ट ऑफ द एक्ट ईस्ट पॉलिसी। And it means that by strengthening the physical connectivity, promoting cross-border trade, people-to-people links, and integrating the region into a regional value chain with the Southeast Asia. And I think all the state-specific initiatives actually take us to that particular paradigm. And it's also essential that this approach recognizes Northeast as both a national asset as well as a gateway to external markets. And it also helps us balance the strategic and development priorities.
1: So, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय का आप आने वाले समय में किस तरह का कुछ विजन के बारे में बताना चाहेंगे और कैसे जो आज हमारे जो 8 राज्य हैं वो आने वाले समय में विकसित भारत में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं?
0: हाल ही में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल का बैठक हुआ था शिलोंग में। माननीय होम मिनिस्टर, गृहमंत्री जी, हमारे डोनर मिनिस्टर, साथ ही साथ समस्त राज्यों के गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ने उस बैठक में शामिल हुए थे। और उसका एक सबसे मेजर जिस बार जो योगदान रहा है वो 8 राज्यों में को मिलाकर 8 हाई लेवल टास्क फोर्सेस बनाई गई थी जो चीफ मिनिस्टर्स के द्वारा हेडेड थी और उनमें दूसरे स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर्स को भी शामिल किया गया था। पहली बार ये प्रयत्न किया गया था कि हर राज्य अपने खुद के राज्य को ही ना देखे, वो पूरे रीजन को देखे और उस रीजन से रिलेटेड रिकमेंडेशंस इन हाई लेवल टास्क फोर्सेज में आई है। साथ ही साथ एक विजनिंग एक्सरसाइज हुई है जो 2043 का विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसमें विकसित नॉर्थ ईस्ट का क्या योगदान रहेगा वो भी इस लक्ष्य का पार्ट है। अब ये सारी हाई लेवल टास्क फोर्सेज जो बनी है इनका इम्प्लीमेंटेशन आने वाले समय में समस्त राज्यों को मिलाकर, यूनियन मिनिस्ट्रीज को मिलाकर, स्टीयरिंग ग्रुप्स के द्वारा होगा और जिससे हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों में आने वाले समय में ऑलरेडी विकास की जो गति है वो बहुत तेज है। हर स्टेट डबल डिजिट जीडीपी ग्रोथ हासिल कर रहा है, हर स्टेट 5-5, 6-6 साल में अपने आप को डबल कर रहा है इकोनॉमिक साइज में। तो ये सब और आने वाले समय में आगे बढ़ सके और नॉर्थ ईस्ट का जो कंट्रीब्यूशन ओवरऑल नेशनल जीडीपी के कंट्रीब्यूशन में और आगे जा सके, इस सब का इसमें प्रयत्न पूरा शामिल है। तो आने वाले समय में हमें पूरी उम्मीद है कि हमारा फोकस जो है इट विल रिमेन ऑन कॉन्वर्जेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड ग्रीन डेवलपमेंट सो दैट द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स आर इंटीग्रेटेड इन टू इंडियाज ग्रोथ स्टोरी एंड वेन दे डू दैट They also retain their unique identity.
1: Thank you so much, sir.
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बारह साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे पूर्वोत्तर भारत के

0: landmark reform not because of what it did. It brought center and states together to agree on a policy together as one team. Now, there are difficult reforms which we have to do. I think GST-like structure will help us.
1: Mr. Mukundan, thank you very much.
2: In this special series, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke, you were listening to an interview with R. Mukundan, President, Confederation of Indian Industry, CII. Interviewer was Shishir Sinha, journalist. This program is also available on our YouTube channel, News on AIR Official.
3: अभी आप दिल्ली से प्रसारित सरकार के 12 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में विभिन्न विषयों पर आधारित विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला की रिकॉर्डिंग सुन रहे थे।
4: They say some cars blend in, but what if yours always stand out? But what if yours always stood out? The Maruti Suzuki Fronks. Experience the thrill of the 1.0-liter turbo engine built for those who crave performance. Join over 4 lakh proud Fronks owners, starting at just rupees 6.85 lakh. So, why follow when you can lead? Visit your nearest Nexa showroom today. Nexa.
5: डिस्कवर करें ड्राइविंग परफेक्शन मारुति सुजुकी ब्रेजा के साथ। इसमें है 6 स्पीड ऑटोमेटिक 360 डिग्री व्यू कैमरा और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यही नहीं, इसमें इलेक्ट्रिक सनरूफ भी है। सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग्स, ABS और ESP हैं। और माइलेज भी बढ़िया है, 19.89 किलोमीटर पर लीटर पेट्रोल में और 25.51 किलोमीटर पर केजी CNG में। बाय ऑफर्स अप टू 80,000।
6: ऑल न्यू मारुति सुजुकी ब्रेजा आपकी नियरेस्ट मारुति सुजुकी शोरूम में अवेलेबल है। शर्तें लागू।
3: यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। इस समय रात्रि के 8:36 और 18 सेकंड हुए हैं। अब सुनिए रोजगार समाचार। उद्योग निदेशक अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा MSE ODR योजना के अंतर्गत लीगल कंसल्टेंट के एक पद पर अल्पकालिक संविदा आधार पर मार्च 2027 तक नियुक्ति के लिए योग्य अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस पद के लिए आवेदक का किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक होना तथा न्यूनतम 50% अंक प्राप्त होना आवश्यक है। अभ्यर्थी की आयु 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही न्यायालय, अर्ध न्यायिक निकायों अथवा मध्यस्थता एवं सुलह से संबंधित मामलों में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव वांछनीय है। चयनित अभ्यर्थी को प्रतिमाह 80,000 रुपये समेकित मान्यदेय प्रदान किया जाएगा। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र तथा आवश्यक शैक्षणिक एवं अनुभव प्रमाण पत्रों की प्रतियों सहित कल 19 जून 2026 को शाम 4 बजे तक निदेशालय उद्योग श्री विजयपुरम में जमा कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए निदेशालय उद्योग अंडमान एवं निकोबार प्रशासन से संपर्क करें। इसी के साथ ही रोजगार समाचार समाप्त हुए। आइए अब सुनते हैं देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम गौरव गान।

अभी आप समवेत स्वर में देशभक्ति गीतों का कार्यक्रम सुन रहे थे, गौरव गान। हम आकाशवाणी के श्री विजयपुरम केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने वाले हैं। अब समाचारों का प्रसारण होगा, जिसे हम अपने दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कृपया प्रतीक्षा करें।

0: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसरों और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौतों का एक ऐतिहासिक दस्तावेज बताया। यूक्रेन ने एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार रूस के मॉस्को में तेल रिफाइनरी पर हमला किया और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुडा क्वार्टर फाइनल में पहुंची। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को नवाचार और प्रौद्योगिकी का वैश्विक केंद्र बताया है। फ्रांस के पेरिस में विवाटेक 2026 सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत पिछले एक दशक में तेजी से परिवर्तन की दिशा में आगे बढ़ रहा है जो प्रौद्योगिकी से संचालित है। उन्होंने कहा कि भारत वित्तीय समावेशन, शिक्षा, कृषि और अन्य क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर रहा है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ने विश्व की सबसे बड़ी डिजिटल पहचान प्रणाली और विश्व का सबसे बड़ा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म विकसित किया है।
1: द मैसेज आई शेयर देन एट विवाटेक 2021 वेयर कन्वेंशन फेल्स इनोवेशन कैन हेल्प। इंडिया हैज बीन गोइंग थ्रू अ रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन दैट इज पावर्ड बाय टेक्नोलॉजी फ्रॉम क्रिएटिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स। वी आर यूजिंग टेक्नोलॉजी एट अ मैसिव स्केल फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, एजुकेशन, टेलीमेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी से तभी प्रगति हो सकती है जब उसका लाभ सभी तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि उथल पुथल भरे इस दौर में प्रौद्योगिकी का लाभ सभी को मिलना चाहिए।
1: AI मस्ट इम्प्रूव लाइफ, widen एक्सेस, drive growth

0: to help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision. For India, AI means all inclusive.
1: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी के आदान प्रदान

0: प्रधानमंत्री ने वैश्विक नवोन्मेषकों से भारत के साथ मिलकर काम करने और ऐसी नई तकनीक विकसित करने का आह्वान किया जो सबके लिए लाभकारी हो। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते पर प्रधानमंत्री ने कहा कि यह समझौता व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी आदान प्रदान और पर्यटन को बढ़ावा देगा।
1: 2026 इज अ स्पेशल ईयर फॉर इंडिया एंड यूरोप। एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर We concluded the historic India-EU Free Trade Agreement. This agreement will expand our trade and investment, and it will open up many pathways for the exchange of talent, technology, and tourism.
0: इससे पहले श्री मोदी ने पेरिस में कई प्रमुख उद्योगपतियों से मुलाकात की। इस दौरान विनिर्माण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और समुद्री अवसंरचना पर चर्चा हुई। बैठक के बाद आकाशवाणी से बात करते हुए इन उद्यमियों ने भारत में बढ़ते अवसरों का उल्लेख किया। एक रिपोर्ट।
2: सेंट कोबा के चेयरमैन और सीईओ बेनवा बेजा ने कहा कि भारत एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए एक बड़े विनिर्माण और निर्यात केंद्र के रूप में उभर रहा है। मिस्त्राल एआई के सीईओ आर्थर मेंश ने कहा कि कंपनी भारतीय भाषाओं के लिए सहयोग बढ़ाने, एआई अनुसंधान साझेदारी का विस्तार करने और संप्रभु एआई पर गहरा सहयोग तलाशने की इच्छुक है। सीएमए सीजीएम के चेयरमैन और सीईओ रडाल्फ सादे ने कहा कि भारत हरित जहाज निर्माण के केंद्र के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है। महेश सोपड़े, आकाशवाणी समाचार, पेरिस, फ्रांस।
0: प्रधानमंत्री आज भारतीय समुदाय को भी संबोधित करेंगे। इसके बाद श्री मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की सफल यात्रा के बाद स्वदेश रवाना होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
3: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान। जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
4: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
5: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
3: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
4: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
0: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनः परीक्षा की तैयारियों के आकलन के लिए आज उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने परीक्षा प्रक्रिया में ईमानदारी, पारदर्शिता और दक्षता के उच्च मानकों को बनाए रखने पर बल दिया। उन्होंने अधिकारियों को स्वतंत्र और निष्पक्ष पुनर्परीक्षा आयोजित करने के लिए सभी आवश्यक प्रबंध सुनिश्चित करने और सतर्कता बरतने के निर्देश दिये। शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि 52 भारतीय संस्थान क्यूएस विश्वविद्यालय रैंकिंग 2027 में शामिल हुए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली वैश्विक स्तर पर 118वें नंबर पर है। ये भारत का सर्वोच्च रैंक वाला संस्थान बना हुआ है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली, बम्बई और मद्रास विश्व के शीर्ष 200 विश्वविद्यालयों में शामिल हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने रैंकिंग में 52 भारतीय संस्थानों के शामिल होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में कई समीक्षा बैठकों की अध्यक्षता की। इन बैठकों में सहकारी बैंकिंग, जैविक उत्पादों और सहकारी निर्यात को मजबूत करने के राष्ट्रीय प्रारूप की समीक्षा की गई। सहकारी बैंकिंग से संबंधित पहलुओं की समीक्षा के दौरान श्री शाह ने प्रौद्योगिकी अपनाने, साइबर सुरक्षा, डिजिटल भुगतान और बेहतर सेवा वितरण के माध्यम से सहकारी बैंकिंग क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। गृह मंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर से मुलाकात की। इस दौरान आतंकवाद और मादक पदार्थों के खिलाफ दोनों देशों के बीच सहयोग को और मजबूत करने पर विस्तृत चर्चा हुई। गृहमंत्री ने कहा कि भारत वैश्विक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों पर भारत में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। इस अवसर पर आकाशवाणी समाचार विशेष श्रृंखला 12 साल विश्वास के, विकास के, जनकल्याण के प्रसारित कर रहा है। आज बात नक्सलवाद के उन्मूलन और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास के लिए सरकार के महत्व

0: उन प्रयासों की।
1: नरेंद्र मोदी सरकार की सुरक्षा अभियान, नक्सलियों की फंडिंग पर रोक और प्रभावित इलाकों में तेज विकास कार्यों की संयुक्त रणनीति के चलते देश को नक्सलवाद और माओवादी आतंक से मुक्त करने में सफलता मिली है। पिछले कुछ वर्षों में कई बड़े सुरक्षा अभियानों ने माओवादी नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वर्ष 2022 में झारखंड के बूढ़ा पहाड़ क्षेत्र में ऑपरेशन ऑक्टोपस चलाया गया। इसी वर्ष फरवरी में ऑपरेशन डबल बुल के तहत झारखंड के गुमला, लोहरदगा और लातेहार जिलों को नक्सली प्रभाव से मुक्त कराया गया। ऑपरेशन के तहत झारखंड के सरायकेला, पश्चिम सिंहभूम और खूंटी जिलों में नक्सलियों के ठिकानों को निशाना बनाया गया। वर्ष 2025 में तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चलाए गए ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट ने बचे हुए नक्सली कैडर को बड़ा झटका दिया। बस्तर के निवासी ने सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि सरकार ने देश को नक्सलवाद से मुक्त करने का अपना वादा पूरा किया है।
2: तो उन्होंने जो प्रॉमिस किया वो पूरा करके दिखाया, तो मोदी सरकार को, अमित शाह जी को, विजय शर्मा जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ।
3: पर आजकल कोई डर का माहौल नहीं है, कोई भी बच्चे यहाँ पे फ्रीली अपना काम कर पाते हैं।
1: इन अभियानों के परिणाम भी स्पष्ट रूप से दिखाई दिए हैं। वर्ष 2024 में 217 माओवादी मारे गए, जबकि 2025 में यह संख्या बढ़कर 256 हो गई। इस दौरान कई बड़े नक्सली नेताओं का भी खात्मा हुआ, जिनमें हिड़मा, कादरी सत्यनारायण रेड्डी, गणेश उइके और नक्सली महासचिव बसवराजू शामिल हैं। सुरक्षा अभियानों के साथ साथ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों को भी तेजी से आगे बढ़ाया गया। झारखंड के गुमला जिले के रहने वाले टेम्बू उराव ने कहा कि जब से मोदी सरकार बनी है तब से नक्सलवाद धीरे धीरे खत्म हो गया और लोग शांति और सद्भाव के साथ रह रहे हैं।
4: हमारा क्षेत्र पूरी तरह से उग्रवाद के गिरफ्त में था, तो वहाँ अमन चैन एकदम नहीं था। हम लोग को दिन में भी निकलने के लिए डर लगता था। 2014 के बाद जब से मोदी सरकार बना है तब से धीरे धीरे करके अब उग्रवाद समाप्त हो गया है और आज हम लोग अमन चैन और बढ़िया से जीवन यापन कर रहे हैं।
1: नक्सलियों की फंडिंग रोकने में राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने भी अहम भूमिका निभाई। इससे नक्सली संगठनों के संसाधनों और गतिविधियों पर बड़ा असर पड़ा। विशेष अवसंरचना योजना के तहत स्पेशल फोर्स, राज्य खुफिया शाखाओं और जिला पुलिस को मजबूत बनाने के लिए 1761 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। इसके अलावा नक्सलवाद के खात्मे के लिए प्रभावित क्षेत्रों में 596 सुदृढ़ पुलिस थानों का निर्माण भी किया गया। अक्षित वैद्यान, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए एफकैट 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.go.in पर।
2: ये आकाशवाणी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक दस्तावेज और सशक्त ईरान का संदेश बताया है। उन्होंने कहा कि शांति केवल आपसी सम्मान के माध्यम से ही प्राप्त की जा सकती है। उन्होंने वैश्विक शांति के प्रति ईरान की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए गरिमा, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय सहयोग को बनाए रखने का भी आश्वासन दिया। यूक्रेन ने रूस के एक तेल शोधन संयंत्र पर हमला किया। एक सप्ताह के अंदर दूसरी बार ऐसा हमला हुआ है। रूस के रोस्तोव क्षेत्र में भी अन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। रूस ने 550 से अधिक यूक्रेनी ड्रोन नष्ट किए। हमले के बाद मॉस्को के 4 हवाई अड्डों से उड़ानें रोक दी गईं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार 21 जून को कोलकाता में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम में शामिल होंगे। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बताया कि कार्यक्रम के लिए 38,000 लोगों ने पंजीकरण करा लिया है। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने आज आकाशवाणी चेन्नई में पद्मश्री से अलंकृत डॉ आर श्रीधर को सम्मानित किया। डॉ मुरुगन ने कहा कि डॉ श्रीधर ने अपने करियर के दौरान रेडियो प्रोग्रामिंग में असाधारण नवाचार किए। आकाशवाणी और दूरदर्शन के महानिदेशक राजीव कुमार जैन ने भी डॉ श्रीधर को भारतीय प्रसारण में क्रांतिकारी व्यक्ति बताते हुए उनकी सराहना की। बम्बई शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगातार पांचवें दिन बढ़त के साथ

0: हुए। सेंसेक्स 254 अंक बढ़कर 77,410 पर और निफ्टी 82 अंक बढ़कर 24,168 पर दर्ज हुआ। मिजोरम की सत्तारूढ़ जोरम पीपल्स मूवमेंट ने आज राज्यसभा में अपना पहला प्रतिनिधित्व हासिल कर लिया। पार्टी नेता के लालत लुआर गकीमा ने राज्य की एकमात्र सीट पर जीत हासिल की। मीनाक्षी हुड्डा चीन में विश्व मुक्केबाजी कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मीनाक्षी ने पोलैंड की नतालिया कुचेवेस्का को 5-0 से हराया। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। वहीं ज्योति और जुगनू सेमीफाइनल में पहुंचकर भारत के लिए पदक पक्का कर चुकी हैं। उधर मकाओ ओपन बैडमिंटन में अनमोल खराब और अस्मिता चलिहा महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मौसम विभाग ने इस सप्ताह पूर्वोत्तर भारत और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र तथा सिक्किम के कई स्थानों पर मूसलाधार बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया है। बिहार, तमिलनाडु, पुदुचेरी और काराईकल में कल तक ऐसी ही स्थिति बने रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, प्रौद्योगिकी में प्रगति तभी हो सकती है जब उसका लाभ सब तक पहुंचे। उन्होंने पेरिस में विवाटेक शिखर सम्मेलन में भारत के तेजी से हो रहे डिजिटल परिवर्तन में प्रौद्योगिकी के उपयोग का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री ने भारत में निवेश के अवसर और विस्तार योजनाओं पर फ्रांस के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ चर्चा की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने रविवार को होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा की तैयारियों का आकलन करने के लिए उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिशकियन ने ईरान और अमेरिका के बीच नए समझौते को ऐतिहासिक बताया। और चीन में विश्व मुक्केबाजी कप में मीनाक्षी हुड्डा क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। कल क्वार्टर फाइनल में चार भारतीय मुक्केबाज खेलेंगे। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी and I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi says technology can lead to progress only when it's democratized. Highlights use of technology in India's rapid digital transformation at Viva Tech Summit in Paris. Prime Minister also holds discussions with leading French business leaders on investment opportunities and expansion plans in India. Education Minister Dharmendra Pradhan chairs high-level review meeting to assess preparations for NEET UG re-examination scheduled on Sunday. Iranian President Masoud Pezeshkian describes newly signed MOU between Iran and US as a historic document. Ukraine strikes a Moscow oil refinery for the second time within a week. And Meenakshi Hooda advances to quarterfinals of World Boxing Cup 2026 in China. Four Indian boxers to be in quarterfinal action tomorrow. Prime Minister Narendra Modi today projected India as a global hub of innovation and technology while addressing the Viva Tech 2026 summit in Paris. The Prime Minister said, technology can lead to progress only when it's democratized. Mr. Modi urged global innovators to work with India and deliver for all.
2: India believes that in this era of disruption, technology must deliver for all. Let us take the example of AI. AI must improve lives, widen access, drive growth, and also help us sustain a healthy planet. Our participation as the AI country partner at VivaTech 2026 reflects this very vision.
1: The Prime Minister highlighted that in the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology.
2: In the last decade, India has been going through a rapid transformation that is powered by technology. From creating the world's largest digital identity system to the world's largest digital payment platforms. We are using technology at a massive scale for financial inclusion, education, telemedicine, agriculture, and more.
1: Mr. Modi also held meetings with leading French business leaders to deepen economic and technological cooperation between the two countries. The discussions focused on investment opportunities and expansion.

0: Countrywide. ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम कंट्रीवाइड। इसके अंतर्गत सुनिए रोजगार के नए अवसरों को गति देती प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
1: श्रोताओं, पिछले साल केंद्रीय कैबिनेट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना को मंजूरी दी थी। देश में रोजगार बढ़ाने की दिशा में ये योजना महत्वपूर्ण योजना के तौर पर उभर कर सामने आई है। श्रम व रोजगार मंत्रालय ने ईपीएफओ के माध्यम से प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना शुरू की थी, जिसे लगभग 1,00,000 रुपए के कुल बजट के परिव्यय से शुरू किया गया है। और इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है कि देश भर में 2 साल के अंदर करीब 3.5 करोड़ रोजगार पैदा किए जाएं। अगर कहा जाए कि ये एक ऐसी योजना है जिसमें रोजगार देने पर या रोजगार प्राप्त होने पर एक तरह से प्रोत्साहन सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो इस संदर्भ में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण इस योजना का तथ्य है। और हम आज कार्यक्रम में इस योजना के संदर्भ में एक विशेष चर्चा भी कर रहे हैं, क्योंकि कल एक महत्वपूर्ण दिन है जिसमें पहली बार इस योजना के तहत 2400 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की जा रही है। तो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा, और साथ में हम इस कार्यक्रम में ऐसे लाभार्थियों से जिन्होंने इस योजना का लाभ लिया है, साथ ही जिन कंपनियों ने रोजगार दिया है उनके उन नियोक्ताओं से भी हम कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। तो आशुतोष जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करते हैं। किस तरह से आप देखते हैं प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को, कि 2 वर्षों में 3.5 करोड़ रोजगार को पैदा करने का जो इस योजना के तहत लक्ष्य रखा गया है, कितनी महत्वाकांक्षी योजना है ये?
2: सच्चाई ये है, समाज में इसकी जरूरत थी कि सरकार की ओर से आप ऐसा कुछ करें कि इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इसके लिए आगे बढ़े कि भाई हमें नौकरी देनी है लोगों को। तो उस दिशा में जब ये सरकार ने सोची और बजट में ही इसकी घोषणा हुई थी और उसके लिए फिर पूरी तैयारी हुई, कल पहली बार 2400 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी थी। ये पहली किस्त है क्योंकि अदरवाइज तो ये कुल बजट इसका करीब करीब 1,00,000 करोड़ है, 99 लाख समथिंग कुछ इस तरीके से इसका है। तो वो चीजें पहली किस्त जा रही है। और आपने ये बात जो कही कि आप कुछ ऐसे लाभार्थियों से भी बात करेंगे और कंपनियों से भी बात करेंगे, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए कि जो औपचारिक नौकरी पाने वाले जो युवा हैं उसके इसमें जो है 2 किस्तों में 15,000 रुपीज तक की कोई प्रोत्साहन राशि दी जाती है, वो दी जाएगी। और इससे जाहिर तौर पर कंपनियों को भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि चलिए एक असिस्टेंट सरकार की ओर से मिला, हम लें, हम उनको भी जरूरत है। देखिए आज

0: दिन क्या है, अब जब फिर से वर्ल्ड ओपन अप होने वाला है, बहुत अच्छी बात हो गई कि वेस्ट एशिया क्राइसिस भी खत्म हो गया। अभी एक बार भी बहुत तेजी से काम भी बढ़ेंगे, कंपनियों के लिए भी बहुत काम आने वाला है हर क्षेत्र में। उसमें सरकार की ओर से ये मदद भी जब जाएगी तो और एक अच्छा माहौल बनेगा।
1: निश्चित तौर पर। और इससे पहले कि हम एक लाभार्थी को जोड़ें, एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि इस योजना में जो रोजगार पाने वाले की मासिक अधिकतम जो सैलरी है वो 1 लाख तक रखी गई है, यानी हम देखें तो इस योजना के तहत रोजगार पाने वाला एक बड़ा मध्यवर्ग भी स्थापित होने जा रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं, जिस तरह से इसमें जो सैलरी का प्रावधान रखा गया है कि जो ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी में 1 लाख रुपए तक की मासिक सैलरी या वेतन पाने वाला कोई भी व्यक्ति है उसको ये लाभ मिलने वाला है?
0: कि 1 लाख तक के किसी को नौकरी मिल रही है, बहुत ही प्रतिष्ठित माना जाता है।
1: बिल्कुल
0: दूसरी तरफ देखिए कि इस 1 लाख से जोड़ते हुए सरकार ने अभी कुछ दिन पहले ही बजट में 12 लाख तक रुपए तक के ये जो है सो टैक्स फ्री
1: टैक्स
0: कर
1: फ्री किया
0: दिया।
1: था। बिल्कुल
0: ये देखिए, ये दोनों चीजें जोड़ती हैं कि 1 लाख रुपए वेतन पाने वाला एक युवा जिसकी कि समाज में एक प्रतिष्ठा होगी, लेकिन जिस तरीके से समाज बढ़ रहा है, जिस तरीके का आकांक्षी समाज है, उसमें 1 लाख रुपए में बहुत सारी चीजें उसे जुटानी होती हैं। तो उस पर सरकार की ओर से एक्स्ट्रा भार न पड़े तो उसको टैक्स फ्री किया गया। कंपनियों को ये राहत दी गई कि आपको हम मदद करते हैं इसमें। तो ये मुझे लगता है बहुत अच्छा स्ट्रक्चर हुआ है आज के।
1: बिल्कुल। जुड़े रहिए आशुतोष जी, एक लाभार्थी को हम शामिल करते हैं, अमन त्रिवेदी जो एक डेटा इंजीनियर हैं हमारे साथ जुड़े हैं। अमन जी स्वागत है आपका।
2: नमस्कार।
1: अमन जी अपना अनुभव बताएं, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना का आपको किस तरह से लाभ मिला है, और थोड़ा अपनी प्रोफाइल के बारे में भी बताएं, किस तरह से आप एक ईपीएफओ रजिस्टर्ड कंपनी में काम कर रहे हैं और कैसे आपको इस योजना का प्रोत्साहन मिला है?
2: तो अगर सबसे पहले बात करें कि मुझे लाभ कैसे मिला है, तो उसमें सबसे पहले बात करें तो कंपनीज जो है, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनको सबसे पहले तो इंसेंटिवाइज करा जा रहा है, कहा जा रहा है कि आप फ्रेशर्स जो होते हैं, जिनका पहली बार ईपीएफओ का अकाउंट खुला है, उन्हें
1: हाँ
2: हायर करिए।
1: बिल्कुल
2: तो मैं एक फ्रेशर हूं, मैं इंजीनियरिंग करा हूँ, राइट, मैं और अभी मैं एज ए डेटा इंजीनियर जॉब कर रहा हूँ। तो पहले क्या होता था कि इंटरव्यू से पहले ही आपसे पूछते थे एक्सपीरियंस है, नहीं है तो नहीं इंटरव्यू होगा, तो स्किल सेट पे बात ही नहीं आती थी। अब एज ए फ्रेशर भी मौका मिलेगा बहुत लाखों करोड़ों युवकों को कि एटलीस्ट इंटरव्यू तक जा तक इंटरव्यू में जाए और बता पाए कि उनकी प्रतिष्ठा कितनी है और उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में। और बात करें तो जैसे कि जो 15,000 रुपए की राशि जो इम्प्लॉयज को भी दी जा रही है, वो दो टाइप, या तो वो कुछ 6 महीने बाद जो 7,500 और उसके 6 महीने बाद वापस 7,500। सो मेरा मानना है कि वो कुछ के लिए रिवॉर्ड है और कुछ के लिए मोटिवेशन है, वो कि कॉरपोरेट में गए हैं जो इम्प्लॉय एज एन एम्प्लॉय 6 महीने में, उसके बाद जो ये राशि आती है वो एक रिवॉर्ड लगता है कि ये मेरे एक नया कदम था और इसके साथ एक रिवॉर्ड मिला है। तो और वर्कफोर्स में इसके बाद मैं जो हमारी यंग जनरेशन है वो ज्यादा दिख रही है और ज्यादा दिखेंगी। तो आई थिंक जॉब सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो भी ये योजना जो है ये बहुत मददगार साबित हुई है यंग जनरेशन के लिए। उस हिसाब से बहुत यंग एज के अंदर भी एक इस कॉरपोरेट के अंदर घुसने में भी बहुत मदद की है इस योजना ने मेरी और लाखों युवाओं की।
1: आशुतोष जी आपको मैं फिर से जोड़ना चाहूंगा, और कि इस योजना के तहत नए लोगों को सामने लाने का मौका मिलेगा जो रोजगार की तलाश में है, और इसमें जैसे कंपनी और नियोक्ताओं के लिए भी ये शर्त है कि अगर 50 कर्मचारियों से कम संख्या की कंपनी है तो उन्हें 2 नए लोगों को हायर करना होगा, और अगर 50 से ज्यादा बड़ी कंपनी है तो 5 नए लोगों को हायर करना होगा। यानी जो नियोक्ता हैं उन पर फोकस है कि वो नए लोगों को रोजगार दें। किस तरह से इस दिशा में ये एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है कि जो फ्रेशर्स हैं और जैसा कि अमन जी ने भी बात की, जो स्किलफुल लोग हैं वो सामने आए। हाँ
0: अब क्या है कि दो इसके पहलू देखिए इस योजना के। 1 लाख रुपए तक के लिए ये है जो किसी यूथ को मिलता है, उसमें सरकार इस योजना में लेकर के आई है। दूसरी तरफ जो फर्स्ट टाइम ईपीएफओ में एनरोल हो रहे हैं, अब आज के दिन आप थोड़ी सी अगर पीछे थोड़ा पीछे घूम कर देख लें तो आप देखेंगे कि इतनी कितनी संख्या है ऐसे लोगों की जो कि बिल्कुल फ्रेशर आ रहा हो और उसे सीधे 80,000, 90,000, 1 लाख रुपये मिल रहा नहीं। ये यहाँ पर आप जो है सो एक माहौल ऐसा क्रिएट करते हैं कि कंपनियां जो हैं, और उसमें आपने ये बात भी कही कि 50 से कम है तो 2 और उससे ऊपर है तो कम से कम 5 की जो बात है वो एक लिमिट भी डाल करके, क्योंकि कंपनियां भी दोनों चीजों से चलती है, एनर्जी के साथ भी चलती है, अनुभव के साथ भी चलती है, तो वो अपनी जरूरतों को पूरा करते हैं। लेकिन उस बीच में

0: टीचर्स के लिए जो नए युवा आ रहे हैं स्किल लेकर के, उनको कैसे एक मौका मिले उसके लिए माहौल बने।
1: बिल्कुल, तो यहाँ पर मैं नीलेश वर्मा जी को भी शामिल करना चाहूंगा, जिन्होंने रोजगार को लेकर एक अपनी कंपनी में भी इस योजना के तहत रोजगार देने में मदद की है। नीलेश जी, स्वागत है आपका, अपने बारे में बताएं, अपना परिचय दें पूरा, और साथ ही इस योजना को किस तरह से आपने इम्प्लीमेंट किया अपने लिए, इसके बारे में भी बताएं।
2: धन्यवाद। मेरा नाम नीलेश वर्मा है। आई एम वन ऑफ द को फाउंडर ऑफ इंटेलीडीबी एंटरप्राइज। वी आर वन ऑफ द प्रीमियम स्टार्टअप ऑर्गेनाइजेशन जो एआई के तहत एंटरप्राइज डेटाबेस में काम कर रही है। हम लोगों की सबसे बड़ी परेशानी हायरिंग थी, और हायरिंग के साथ साथ लोगों को रिटेन करना था, बिकॉज हायरिंग वॉज वन पार्ट एंड रिटेंशन वॉज द अनदर पार्ट। जितने भी न्यू ब्लड हैं आज की डेट में, नए लोग हैं जो कॉलेज पास आउट हैं, एंड इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेशर्स, द प्रॉब्लम विद दीज फ्रेशर्स वर देयर रिटेंशन इन द ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज दे ऑलवेज लुक एट मनी ओवर द करियर। मोस्ट ऑफ देम, आई वुड नॉट से ऑल ऑफ देम, बट मोस्ट ऑफ देम दे लुक एट हॉपिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, लुकिंग एट देयर करियर मोर रादर देन स्टिकिंग टू एनी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अभी रिसेंटली जब से ये प्रधानमंत्री रोजगार योजना लागू हुई है, इससे हमारे जैसे एम्प्लॉयर्स को काफी बेनिफिट मिला है इन टर्म्स ऑफ यू नो हायरिंग दी राइट सेट ऑफ रिसोर्सेज एंड मेकिंग देम स्टिक टू द ऑर्गेनाइजेशन। ये एक बहुत ही फोकस्ड अप्रोच है, और इसको मैं यू नो आई एम ग्रेटफुल टू दी ईपीएफओ एंड दी ईएम ऑर्गेनाइजेशन फॉर रोलिंग दिस आउट। हालांकि इस योजना के बारे में आज भी बहुत लोगों को पता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू नो आई बींग एन एम्प्लॉयर, आई गॉट टू नो अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन कपल ऑफ मंथ्स अगो, बट मैं इसके बारे में और डीप जानना चाहूंगा, अंडरस्टैंड करना चाहूंगा, एंड आई वुड ऑल्सो वॉन्ट टू अंडरस्टैंड हाउ कैन वी लेवरेज इट टूवर्ड्स दी यंग जनरेशन एम्प्लॉयमेंट।
1: बिल्कुल, तो आपको क्या उम्मीद है इस योजना से, जैसे आप जैसे जो एक तरह से मैं कहूं कि देश के विकास में भी आप जैसे जो एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं बिजनेसेस एंटरप्रेन्योर्स, तो कैसे इस योजना से आगे आने वाले समय में एक बहुत स्किलफुल वर्कफोर्स आपको मिलने वाली है, और जो इंसेंटिव्स मिल रहे हैं उससे भी कैसे अट्रैक्ट होंगे आजकल के जो यूथ हैं वो इस योजना के जरिए, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में टैलेंटेड पूल हमारे सामने आ पाए।
2: जी। मेरे लिए इनफैक्ट सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह योजना केवल एक फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है फॉर द एम्प्लॉई एंड एम्प्लॉयर, यह एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक्टिविटीज एंड मैकेनिज्म है, एंड इट एक्चुअली इनकरेजेस कंपनीज टू क्रिएट मोर जॉब, एंड इट इनकरेजेस यंग प्रोफेशनल टू एंटर इन टू द फॉर्मल वर्क फोर्स विथ कॉन्फिडेंस। जब सरकार रोजगार देने वाले संस्थानों को समर्थन देती है तो उसका प्रभाव केवल कंपनी तक सीमित नहीं रहता है, इट एक्चुअली क्रिएट्स अ मल्टीप्लायर इफेक्ट अक्रॉस फैमिलीज, कम्युनिटीज एंड द ब्रॉडर इकोनॉमी। एवरी न्यू एम्प्लॉय सपोर्ट्स अ हाउस होल्ड, एंड एवरी हाउस होल्ड कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स द कंजम्पशन, एंड एवरी सक्सेसफुल बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड्स अ नेशन बिल्डिंग। तो बेसिकली जितने भी नए रोजगार को हम प्रोत्साहन देते हैं, अलग अलग योजनाओं को के तहत सरकार हमें यू नो इंसेंटिव देती है एज एन एम्प्लॉय, एज एन एम्प्लॉयर, ये कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की, हमारी कंट्री की कॉन्ट्रीब्यूशन में बहुत महत्वपूर्ण योगदान देता है।
1: बिल्कुल आशुतोष जी, आपसे अब मैं जुड़ना चाहूंगा, कुछ आंकड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं इस योजना से संबंधित, जैसे जो कुल रजिस्ट्रेशन इस योजना के तहत अब तक हुआ है कर्मचारियों का, जो नए कर्मचारी जुड़े हैं लगभग 60 लाख के करीब नए कर्मचारी इससे जुड़े हैं, और युवाओं की संख्या अगर हम देखें तो 71% के आसपास है इसमें, और साथ में एक और महत्वपूर्ण तथ्य इस योजना के तहत निकल के आया है कि महिलाएं भी 30% के आसपास जुड़ी हैं, यानी विमेन वर्कफोर्स भी इस योजना से बढ़ता हुआ देश भर में देखा जा रहा है। और कैसे आप देखते हैं जिस तरह से ये आंकड़े हैं कि इतनी कम समय में और इतना अच्छा उत्साह है रोजगार के सृजन में, और साथ ही जैसा कि मैंने युवाओं की और विमेन वर्कफोर्स की तो बात की ही, क्या आपका कहना है?
0: दोनों चीजें हैं, एक तो इसकी जरूरत थी, और दूसरी बात कि सरकार की ओर से मदद तो कंपनियां भी आगे बढ़ी, तो ये रजिस्ट्रेशन तो आपको दिखना ही था, ये जो जोश है वो तो दिखना ही था। जैसे अभी नीलेश जी ने बात कही ना, इनके ऑर्गेनाइजेशन में 15 लोग हैं जो फ्रेशर हैं, बिल्कुल जो
1: बिल्कुल
0: जाकर के इन्होंने कॉलेज से पिक किया, कैंपस से उठाया और लेकर के आ गए। अब यही इस योजना की जो खूबी है वो यही है
1: बिल्कुल, तो
0: ये। और

0: तौर पर ये फोकस ही किया गया है उस एज ग्रुप पे, जो बात अभी शुरुआत में अमन जी ने भी कही ना कि 21 से 30 के बीच में जो सबसे ज्यादा फोकस भी वही है, क्योंकि वही जरूरत है, वही आने वाले दिनों में बदलेंगे विभाग को।
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल, निश्चित तौर पर जैसा कि नाम में ही है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना, तो विकसित भारत का
0: जी
1: एक रोड मैप ये योजना देती है, क्योंकि इसमें एक तरफ इंसेंटिव है नियोक्ताओं को और रोजगार पाने वालों को, दूसरी तरफ देश में एक स्किल्ड वर्कफोर्स को औपचारिक सेक्टर में लाने की इस योजना के तहत पूरी कवायद है, जिससे कि रोजगार बड़ी संख्या में बढ़े और एक पूरा स्किल सेट तैयार हो युवाओं का, जिससे कि देश के विकास में वो अपना योगदान दे सकें। बहुत धन्यवाद आप सभी का कार्यक्रम में जुड़े और इस योजना के जो फायदे हैं और आने वाले समय में जो एक बड़ा इसका आउटकम निकल कर सामने आएगा, इन सभी बातों पर आप सभी ने विस्तार से बात की, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे रोजगार के नए अवसरों को गति देती प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष झा और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: Countrywide.

आप सभी सुनने वालों को आज के इस कार्यक्रम में मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रोताओं, यदि आप भी अपने पसंद के गाने हमारे कार्यक्रम के माध्यम से सुनना चाहते हैं तो जल्दी से नोट कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर और लिख भेजिए कार्यक्रम का नाम, संदेश से आते हैं, फिल्म का नाम, गीत के बोल, अपना नाम व पता ज़रूर लिखें। तो जल्दी से नोट कीजिए हमारा व्हाट्सएप नंबर, हमारा नंबर है 9474234000। नंबर एक बार फिर 9474234000।

तो चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं आज का पहला व्हाट्सएप मैसेज, जिसे हमें भेजा है बीड शहर महाराष्ट्र से नंदकिशोर, संगीता, साक्षी, जयश्री, मेहत्रे, अंजलि, बाला साहेब, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय, पीबी कुलथे ने। और ये सुनना चाहते हैं वो कौन थी फिल्म का ये प्यारा सा गीत।

अगला गीत हमने लिया है फिल्म मोहरा से, और इस गीत को गाया है अलका याग्निक और उदित नारायण ने, और इस गीत की फरमाइश की है अमरावती से सिद्धार्थ गोडा ने, अर्चना ताई, हीरामन सेंडे, प्रणय प्रसिद्धि और प्रतिभा जी ने। तो चलिए सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।
1: श्रोताओं, कार्यक्रम में आइए अब सुनते हैं उजाला फिल्म का गाना। और इस गाने के लिए हमें व्हाट्सएप किया है गांव शोभापुर मेरठ कैंट से दिग्दर्शन गौड़, कविता राधा नामदेव, रानी संजय, अनिल, संदीप और दर्शन जी ने।

कार्यक्रम का अगला गीत जो हमने लिया है वो है फिल्म बॉम्बे टू गोवा से। इस गीत को हमने डेडिकेट किया है रघुवीर नगर से दिलावर खान, हसीना बानो, एलिजा नायाब और लड्डू को, क्योंकि ये हमारी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं। तो चलिए आप सभी सुनिए हमारी पसंद का ये गाना।

0: क्या करते हो?
1: क्या कर रहा हूँ?
0: भैया छोड़ो ना।
1: क्यों छोड़ू?
0: प्लीज समझो ना।
1: क्या समझू?
0: वो लोग देख रहे हैं।
1: अरे तो देखने दो और जलेंगे।
0: अच्छा तो ये बात है, तो मैं और पास आऊँ?
1: आओ ना।
0: नो।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 20 जून को हुगली पश्चिम बंगाल से प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 23वीं किश्त जारी करेंगे। इसके तहत 9 करोड़ 44 लाख से अधिक किसानों के खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की सम्मान राशि सीधे हस्तांतरित की जाएगी। पीएम किसान की इस किश्त के साथ ही किसानों को हस्तांतरित कुल राशि 4,46,000 करोड़ रुपए से अधिक हो जाएगी, जो करोड़ों किसान परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान कर रही है।

उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार, आदर्श, सार्थक, अलौकिक और पूरा चौंसलिया परिवार सुनना चाहते हैं दोस्ताना फिल्म का ये गाना। तो चलिए सुनते हैं आपके पसंद का ये गीत।

अभी आप व्हाट्सएप पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुन रहे थे। संदेश से आते हैं श्रोताओं, अब चलते चलते हम आपको बता दें मौसम का हाल। कोलकाता स्थित मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के कुछ भागों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। मछुआरों को मौसम संबंधी चेतावनी में बताया जाता है कि खराब मौसम के कारण वायु की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने की संभावना है, जो कि बढ़कर 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। अतः उत्तरी अंडमान सागर और अंडमान के तटीय भागों में मछुआरों को ना जाने की सलाह दी जाती है। कल तक के मौसम संबंधी पूर्वानुमान में बताया जाता है कि अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम वर्षा होने या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। ये थी मौसम की जानकारी। इस समय रात्रि के 10:31 हुए हैं। हमारी आज की दूसरी सभा अब यहीं पर संपन्न होती है। प्राइमरी चैनल पर कल प्रातः 5:23 पर हम अपनी पहली सभा में, जबकि 100.9 MHz विविध भारती FM पर कल सुबह 6 बजे फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।

0: हेलो माइक टेस्टिंग, देन माइक टू, देन
1: ओके डन। नेक्स्ट
0: 459 हो गया ना।
1: नेक्स्ट स्पीक।
0: हाँ।

0: बहुत चंचल है। वृक्ष की डालों पर कूदते हुए बंदर की भांति वह सुख की एक वस्तु से दूसरी फिर तीसरी से
1: भाषा है संपर्क।

Hello, mic testing. Then time is 4:59:41.

मीडियम वेव 438.6 मीटर अर्थात 684 किलोहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का श्री विजयपुरम केंद्र है। आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 27वीं तिथि तदनुसार 19 जून सन 2026 इस समय सवेरे के 5:28 और 35 सेकंड हुए हैं। अब हमारी आज की पहली सभा आरंभ होती है। इस सभा में हम सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिवादन करते हैं।

0: अब सुनिए आज का अनमोल विचार।
1: जीवन एक आईना है। आप जैसा सोचते हैं वैसा ही आपको दिखाई देता है। इसलिए नकारात्मक विचार को छोड़कर हमेशा सकारात्मक विचार ही अपनाइए।

ये था आज का अनमोल विचार और अब आरंभ होता है भक्ति गीतों का कार्यक्रम प्रभाती वंदना। कार्यक्रम की शुरुआत हम कर रहे हैं इस मातृ वंदना से।